अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज के मानस पाठ की इस कड़ी की कलाकार थी अनुराधा पौडवाल। मीडी वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए एक नजर डालते हैं आज केंद्र से प्रसारित प्रमुख कार्यक्रमों पर। संदेश टू सोल्जर्स सुनिएगा शाम 4 बजे से, जिसे रिले किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से। उर्दू कार्यक्रम का समय होगा सुबह 9:30 पर, प्रसारण होगा लखनऊ केंद्र से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर सुनेगा शिप्रा बोस का गायन। दिन 12:45 पर शुभांकर दे का गायन और सुबह 7:31 पर सुनेगा पंडित राजन साजन मिश्र का गायन। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन सुनेगा रात्रि 9:30 पर और कहकशा का समय होगा दिन में 2:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में चंदन दास की गजलों का लुत्फ उठाइएगा रात्रि 8 बजे से और दिन में 12:30 पर सुनेगा महुआ बैनर्जी के गाए गीत। संस्कृत कार्यक्रम सुनेगा शाम 7 बजे से। किसान भाई कृषि जगत सुनेंगे शाम 6:30 पर। कार्यक्रम में फोन इन कार्यक्रम हेलो कृषि जगत सुनेगा और गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं का प्रबंध विषय पर डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सिर अली की सुनेगा बातचीत। साथ ही मोहन सिंह यादव और साथी का गाया सुनेगा लोकगीत। इनके गाए लोकगीतों को आप दिन 1:45 पर सुबह 9:50 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुन सकेंगे। युवा साथी सुनेंगे युवाणी शाम 5:15 पर। कार्यक्रम में आज की बात होगी मेरी पसंद यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना के साथ

साथ सुनेगा फिल्म संगीत। धरती के गीत कार्यक्रम में कुमाऊनी गीत सुनेगा शाम 5 बजे से। बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम अंगनैया दिन 1:15 पर। कार्यक्रम में चर्चा के अलावा सुनिएगा दूषित खान पान से प्रभावित होता हमारा स्वास्थ्य, इस विषय पर डॉक्टर पूनम जायसवाल से शिखा श्रीवास्तव की बातचीत, और साथ ही साथ कार्यक्रम में होगा गीत संगीत। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा दिन में 12 बजे से। फिल्म संगीत के कार्यक्रमों में फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद सुनेगा रात्रि 10 बजे, रसमाद्री सुनेगा रात 8:15 पर, रसरंग शाम 7:31 पर, फिल्म संगीत सुनेगा शाम 6:10 पर, ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुनेगा दिन में 11 बजे से, झंकार का समय होगा सुबह 10 बजे और मधुरिमा सुनेगा सुबह 8:45 पर। और अब से थोड़ी ही देर में यानी सुबह 7 बजे से सुनेगा आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आज केंद्र से प्रसारित प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में सुनेंगे संस्कृत में समाचार। समाचार के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: हे बनारस, गुड वाला मॉर्निंग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ट्यून किया है आपने अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा के साथ। और आज हम बात करेंगे अपने शहर बनारस के मशहूर लंगड़ा आम की, जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर बिना पैरों वाला आम को लंगड़ा क्यों कहा जाता है। इसके पीछे छुपी सदियों पुरानी कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है। स्वाद, खुशबू और अनोखी पहचान इसे बाकी आमों से बिल्कुल अलग बनाती है। और गर्मी शुरू होते ही फलों के बाजार में आम की खुशबू हर तरफ फैलने लगती है। कोई दशहरी का दीवाना होता है तो किसी को चौसा और अल्फांजो पसंद आता है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा आम भी है जिसका नाम सुनते ही लोग ठिठक जाते हैं। ये है हमारे बनारस का मशहूर लंगड़ा आम। नाम थोड़ा अजीब जरूर लगता है क्योंकि आम का पैर तो होता नहीं, फिर भी इसे लंगड़ा क्यों कहा जाता है। दरअसल इस आम की पहचान सिर्फ उसके स्वाद से नहीं बल्कि उससे जुड़ी एक दिलचस्प कहानी से भी है। सदियों पुरानी ये कहानी आज भी लोगों की जुबान पर जिंदा है। यही वजह है कि लंगड़ा आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि बनारस की खास विरासत माना जाता है, जिसकी मिठास और रहस्य दोनों लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। कहते हैं कि बनारस के एक मंदिर में रहने वाले एक दिव्यांग साधु ने आम के कुछ पौधे लगाए थे। समय के साथ साथ जब उन पेड़ों पर फल आए तो उनका स्वाद लोगों को इतना पसंद आया कि पूरे इलाके में उनकी चर्चा होने लगी। क्योंकि उन पेड़ों की देखभाल एक लंगड़े साधु करते थे, इसलिए लोग इसे लंगड़े बाबा वाला आम कहने लगे और धीरे धीरे यही नाम छोटा होकर लंगड़ा आम बन गया। साधु भले आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनके लगाए पेड़ों की पहचान आज भी जिंदा है। लंगड़ा आम की सबसे खास बात इसका रंग है। आमतौर पर आम पकने के बाद पीले या हल्के

लाल हो जाते हैं, लेकिन हमारा लंगड़ा आम पूरी तरह से पकने के बाद भी हरा ही दिखाई देता है। यही वजह है कि कई लोग इसे पहली नजर में कच्चा समझ लेते हैं, लेकिन जैसे ही इसे काटा जाता है, ये अंदर से केसरिया रंग का मुलायम और रेशा रहित गूदा नजर आता है। इसकी मिठास न ज्यादा तेज होती है और ना ही फीकी, बल्कि एकदम संतुलित होती है, और स्वाद तो ऐसा होता है कि यह हर किसी का फेवरेट बन जाता है। और यही नहीं, शेक, आइसक्रीम, मिठाई और चटनी बनाने में भी इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है। इसके स्वाद में हल्की खुशबू और मिठास का ऐसा मेल होता है जो इसे बाकी आमों से अलग पहचान देता है। लंगड़ा आम का असली स्वाद बनारस की मिट्टी और यहाँ की जलवायु से जुड़ा माना जाता है। इसी खासियत के कारण इसे GI टैग भी मिल चुका है। ये टैग इस बात की पहचान है कि इस आम की गुणवत्ता और स्वाद खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और ये जुलाई महीने के आखिर तक लोगों की पहली पसंद बना रहता है। और हमारा लंगड़ा आम आज सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बिहार और पश्चिम बंगाल में भी इसकी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, और पिछले कुछ वर्षों में इसकी मांग विदेशों में भी तेजी से बढ़ी है, जिसके चलते इसका निर्यात लगातार बढ़ रहा है। और लंगड़ा आम सिर्फ स्वाद का नाम नहीं, बल्कि ये बनारस की संस्कृति, परंपरा और इतिहास का हिस्सा बन चुका है। एक साधु द्वारा लगाए गए पौधे से शुरू हुई ये कहानी आज दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। तो बनारस, इस रोचक कहानी के साथ आप भी एंजॉय कीजिए मैंगो सीजन, और साथ ही गुड मॉर्निंग बनारस से ब्यूटीफुल सा ट्रैक भी। आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक बनारस। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरी यानी आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा के साथ। बनारस, आज दिन है गुरुवार और तारीख है 14 मई। तो आइए जानते हैं क्या हो रहा है अपने शहर बनारस में खास। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बुधवार को चोलापुर और हरौआ विकासखंड परिसर में भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। मांगलिक गीतों, वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच 152 जोड़ों ने सात फेरे लेकर नए जीवन की शुरुआत की। इसमें चोलापुर विकासखंड के 84 और हरौआ विकासखंड के 68 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इसमें दो जोड़े का निकाह भी कराया गया। समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने वर वधु को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद और मंगलमय दाम्पत्य जीवन की कामना की। 10 मई रविवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत बड़ा गांव के 183 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे थे। चार दिन में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 335 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। योगी सरकार की ये योजना सामाजिक समरसता और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विवाह के बोझ से राहत दे रही है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि सामूहिक विवाह समारोह में विभिन्न वर्गों के जोड़ों ने भाग लिया, जिनमें अल्पसंख्यक वर्ग के 2, पिछड़ा वर्ग के 23, अनुसूचित जाति के 125 और अनुसूचित जनजाति के 2 जोड़े शामिल रहे। विवाह के बाद नव दंपति को विवाह प्रमाण पत्र भी दिया गया। समारोह के दौरान पूरे परिसर में उत्सव जैसा माहौल बना रहा। सरकार की ओर से नवविवाहित जोड़ों को उपहार स्वरूप चांदी की पायल, बिछिया, वर वधु के वस्त्र, दीवाल घड़ी, ट्रॉली बैग, डिनर सेट, श्रृंगार किट, सूटकेस और गद्दा सहित अन्य उपयोगी सामग्री भेंट की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की अपील अब जमीनी

स्तर पर असर दिखाने लगी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र ने इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग शुरू करके एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पहल की है। इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ग्रीन गवर्नेंस मॉडल को आगे बढ़ाने की दिशा में एक व्यवहारिक कदम माना जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में जारी निर्देशों के तहत मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिलों में वाहनों की संख्या 50% तक कटौती और ईंधन के विवेकपूर्ण उपयोग पर जोर दिया गया है। इसी नीति के अनुपालन में मंत्री डॉक्टर दयालु ने पर्यावरण हितैषी इलेक्ट्रिक कार अपनाकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। राज्य मंत्री ने कहा कि आज के समय में पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और ऊर्जा बचत केवल विकल्प नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीन इंडिया विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वच्छ एवं हरित प्रशासन के संकल्प से प्रेरित होकर उन्होंने ईवी वाहन का उपयोग शुरू किया है। उन्होंने आगे बताया कि भविष्य में वो अपने दैनिक जीवन में भी अधिक से अधिक पर्यावरण अनुकूल आदतों को अपनाने का प्रयास करेंगे ताकि ऊर्जा संरक्षण और स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े। उन्होंने जनता से भी अपील की कि अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहनों, सार्वजनिक परिवहन और ईंधन बचत के उपयोग को अपनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन की खपत कम करने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के आह्वान का असर अब काशी में दिखने लगा है। महापौर अशोक कुमार तिवारी और नगर निगम के पार्षदों ने बड़ा निर्णय लिया है। अब नगर निगम के जन प्रतिनिधि सप्ताह में एक दिन यानी हर शनिवार को पेट्रोल या डीजल से चलने वाले निजी वाहनों का त्याग करेंगे। शनिवार को नो फ्यूल डे के रूप में मनाया जाएगा। नगर निगम मुख्यालय स्थित महापौर कक्ष में बुधवार को पार्षदों के साथ हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में ये सर्वसम्मत निर्णय लिया गया। इस दौरान तय हुआ कि हर शनिवार को सभी पार्षद अपने घर से निगम कार्यालय तक आने के लिए पैदल, साइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करेंगे। बैठक के दौरान महापौर अशोक कुमार तिवारी ने स्वयं उदाहरण पेश करते हुए घोषणा की कि जब तक तेल का संकट बना हुआ है तब तक वो अपने घर से नगर निगम कार्यालय तक का सफर पैदल ही तय करेंगे। महापौर ने बताया कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशी मुद्रा बचाने के लिए ईंधन की खपत कम करने की अपील की है। निगम ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये कदम उठाया। हालांकि कूड़ा गाड़ियों और अन्य आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को इससे मुक्त रखा गया है क्योंकि निगम आवश्यक सेवा के दायरे में आता है। महापौर ने निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी अपील की है कि वो राष्ट्रहित में सप्ताह में कम से कम एक दिन पेट्रोल डीजल वाहनों का उपयोग न करें। इस पहल से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा बल्कि ईंधन की बचत से देश की अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलेगा। तो ये था अपने शहर बनारस का हाल समाचार और अब इसी के साथ बनारस मेरे भी जाने का वक्त हो चला है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताइए, आपको भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो अब गुड मॉर्निंग बनारस से दीजिए इजाजत। अपनी रेडियो दोस्त स्नेहा को छोड़े जा रही हूँ आपको इस ब्यूटीफुल से ट्रैक के साथ। तड़ा।

0: कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फैसले का स्वागत, कहा समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा यह निर्णय। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों से ईंधन बचत और अनावश्यक सोने की खरीद न करने के प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में भी ऊर्जा संरक्षण पर दिया जोर, कहा ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। और प्रदेश में आंधी पानी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत, प्रभावित लोगों की मदद करेगी सरकार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
4: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
3: श्री वैष्णव ने बताया कि अब ग्रेड ए धान के लिए 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य धान के लिए 2,441 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,009

0: 900 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का के लिए 2410 रुपये प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8450 रुपये प्रति क्विंटल तथा मूंग के लिए 8780 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के एमएसपी बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह निर्णय अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने व कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहन देने के साथ साथ समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा। खरीफ फसलों की एमएसपी वृद्धि पर प्रदेश के किसानों ने खुशी जताई है। वाराणसी के किसान दुर्गेश ने बताया कि इससे किसानों को फायदा होगा।
1: जो केंद्र सरकार ने हम जैसे किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है, ये एक तरह से अगर कहा जाए तो ये बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि जिस तरह से समर्थन मूल्य जो घट रहा था, हम किसानों को बड़ा ही घाटा हो रहा था, लेकिन एमएसपी बढ़ने के साथ साथ हम लोगों की आय में भी दुगुना होगी और इस सरकार के फैसले को हम बहुत ही सराहना पूर्वक उन्हें धन्यवाद देते हैं।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो, बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद न करें। उन्होंने 12 मई की शाम को एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों आदि की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी की जाए। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित अध्ययन भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। यह फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मितव्ययिता, ऊर्जा संरक्षण और उत्तरदायी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। मुख्यमंत्री ने सचिवालय एवं निदेशालयों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने, प्राकृतिक प्रकाश के अधिकतम उपयोग तथा आवश्यकता आधारित विद्युत उपभोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर में अंचल के पहले और प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए वहां के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ कल परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
3: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में तेजी लाने और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से आकार लेगा। निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 63.39 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश।

0: चौबे गोरखपुर।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कल कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। विद्यार्थी रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है। संशोधित दरें आज से पूरे देश में लागू हो रही हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश, धूल भरी आंधी और बिजली गिरने से 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: सबसे ज्यादा मौतें भदोही जिले में हुई हैं, जहां 15 लोगों की जान चली गई, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हुई है। ज्यादातर मौतें बिजली गिरने, दीवार गिरने और धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि के कारण लोगों और वाहनों पर पेड़ गिरने से हुई है। कल राज्य के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल गया और विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे उखड़ने और पेड़ उखड़ जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों में प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में 16 और 17 मई को लू चलने की संभावना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फैसले का स्वागत, कहा समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा यह निर्णय। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों से ईंधन बचत और अनावश्यक सोने की खरीद न करने के प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में भी ऊर्जा संरक्षण पर दिया जोर, कहा ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। और प्रदेश में आंधी पानी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत, प्रभावित लोगों की मदद करेगी सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
5: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
6: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित राजन और साजन मिश्र का गायन। राग है ललित, आपके साथ तबले पर संगत की है रमजान खान ने और हारमोनियम पर संगत की है महमूद धौलपुरी ने।

Sani da ma da da ni da ma ma.

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित राजन और साजन मिश्र का गायन। राग था ललित, आपके साथ संगत कलाकार थे तबले पर रमजान खां और हारमोनियम पर महमूद थौलपुरी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
2: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
3: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
4: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5

0: MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
1: MMTPA LNG टू इंडिया।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
3: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
3: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
5: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुँचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्य सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
8: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
3: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
9: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही

0: जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेकिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
2: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराइकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र, समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच, कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और 1 दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है। सीबीआई ने मारे

0: कई जगह छापे। एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, चार और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार, ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार, दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्य की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां। पत्र के अनुसार, सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस: 2-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grains and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. And now the news in detail. A 2-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Global leaders have arrived in the national capital ahead of the BRICS foreign ministers meeting. The leaders who arrived here yesterday include Foreign Minister of Iran, Syed Abbas Araghchi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand, Sihasak Phuangkhetkyo, Foreign Minister of Cuba, Bruno Rodriguez Perella, and Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Nguyen Minh Hang. Other leaders who arrived were Foreign Minister of Malaysia, Dato Seri Utama Muhammad bin Haji Hassan, and UAE's Minister of State, Ministry of Foreign Affairs, Khalifa Shaheen Al-Marar. A report.
3: During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. The BRICS foreign ministers held their last meeting on the margins of 88th session of the United Nations General Assembly on 26 September 2025. The meeting was chaired by India in its capacity as the incoming BRICS chair for 2026. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said, A special session of the Assam Assembly will be held

0: 26 मई तक मुनाकिद होगा, जिसके दौरान 9 मुंतखब अरकानी असेंबली हलफ लेंगे। उन्होंने कहा कि मुजव्वजा कानून साजी का मकसद शादी की कानूनी उम्र, एक से ज्यादा शादी, विरासत और बगैर शादी के साथ रहने जैसे मसाइल को हल करना है। उन्होंने वाजे किया कि मजहबी रसूमात और मजहबी मामलात इस बिल के दायरा कार से बाहर रहेंगे। इस इख्ताम के साथ आसाम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद यकसा सिविल कोड बिल पेश करने वाली तीसरी रियासत बनने जा रही है। हुकूमत ने चीनी की बरामदात पर फौरी तौर पर सितंबर 2026 तक या मजीद अहकाम जारी होने तक पाबंदी आयद कर दी है, जिसमें खाम चीनी, सफ़ेद चीनी और रिफाइंड चीनी शामिल है। एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर मुल्की तजारत के डायरेक्टरेट जनरल ने बरामदी पॉलिसी को महदूद के जुमरे से ममनू के जुमरे में तब्दील कर दिया है। ताहम ये पाबंदी CXL और TRQ कोटा और एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम के तहत यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को बरामद होने वाली चीनी पर नाफिज नहीं होगी, ताकि दीगर मुमालिक की खुराक की यकीनी फराहमी से मुतालिक जरूरियात को पूरा किया जा सके। वो खेप जो बरामद के लिए फिजिकल पाइपलाइन में है, उन्हें इस पाबंदी से मुस्तस्ना रखा गया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती नकलो हरकत पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। ये पाबंदियां साबिका TMC हुकूमत की जानिब से आयद की गई थीं। दूसरी जानिब एक अहम पेशरफ्त के तौर पर मगरबी बंगाल हुकूमत ने असातिज़ा के तकर्रुरात, म्यूनिसिपल तकर्रुरात और इमदाद बाहमी खिदमात तकर्रुरात घपलों से मुतालिक मामलों को CBI के सुपुर्द करने का फैसला किया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने उन सभी अफराद की खिदमात को खत्म कर दिया है, जिनका सबुकदोशी के बाद TMC हुकूमत की जानिब से दोबारा तकर्रुर किया गया था। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: किसानों और ताजिरों को बड़ी राहत देते हुए मगरबी बंगाल हुकूमत ने ज़रई अशिया की दीगर रियासतों में बरामदात पर आयद पाबंदियों को हटा लिया है। ज़रई मार्केटिंग के महकमे की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक आलू, प्याज, सब्जियां, फल, गजाई अजनास और तिलहन की अब रियासती सरहदों के पार बिला रुकावट हमलो नकल की जा सकती है। ज़िला इंतजामिया, पुलिस और ट्रांसपोर्ट हुकाम को इस हुक्मनामे के नफाज को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कल नबन्ना में बताया कि इस फैसले से छोटे और हाशिया बरदार किसानों और ताजिरों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों को अब उनकी पैदावार का वाजिब दाम मिलेगा। वजीर आला ने यह भी इंतबाह दिया कि ज़रई अशिया से लदी गाड़ियों को अगर बैन रियासती सरहदों पर गैर जरूरी तौर पर रोका गया या हिरासा किया गया तो अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से ज़रई बरामदात में आसानी पैदा होने और मगरबी बंगाल के किसानों और ताजिरों को पेश आ रही मुश्किलात में कमी आने का इम्कान है। कोलकाता से संदीप पौन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: हुकूमत ने मरकजी जांच ब्यूरो CBI के डायरेक्टर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी की है। अमले और तरबियत के महकमे की जानिब से जारी किए गए सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक काबीना की तकर्रुरात से मुतालिक कमेटी ने जनाब सूद की मुद्दतकार को जांच एजेंसी के डायरेक्टर के तौर पर इस महीने की 24 तारीख से आगे तौसी देने को मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल अबू ज़हबी का दौरा करेंगे, जो उनके 5 मुल्कों के दौरे का पहला मरहला होगा। इस दौरे के दौरान वो मुत्तहिदा अरब अमारात, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। वज़ीर आज़म का ये दौरा जुमे से इस महीने की 20 तारीख तक जारी रहेगा। वज़ारत ख़ारिजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने बताया कि 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद अन्नहयान से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमा दोतरफा उमूर, खासतौर पर तवानाई के शोबे में तआवुन और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक्वामी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। ये जनाब मोदी और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अन्नहयान की सिर्फ 5 महीनों में दूसरी बिलमुशाफा मुलाकात होगी। तवक्को है कि दोनों ममालिक कल जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद आगे बढ़ाएंगे, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम 40 लाख से ज्यादा भारतीयों की फलाह बहबूद भी इस बातचीत के एजेंडा में शामिल होगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात खित्ते की अहम तरीन तवानाई शराकत दारी रखते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात इस वक्त भारत को खाम तेल फराहम करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है, जो मुल्क की कुल ज़रूरत का तकरीबन 11% पूरा करता है। रकीक कुदरती गैस के मामले में भारतीय कंपनियों ने अबू धाबी की ADNOC गैस के साथ तवील मुद्दती सप्लाई मुआहदे किए हैं, जिनकी मजमू मकदार 4.5 मिलियन टन है। मुत्तहिदा इमारात گزشتہ 25 برسوں کے

0: दौरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा तजारती साझेदार और गैर मुल्की सरमायाकारी का सातवां बड़ा जरिया है। ऐसे में जबकि मगरबी एशिया मौजूदा वक्त में अपने सबसे हंगामा खेज दौर से गुजर रहा है, अबू धाबी में दोनों रहनुमाओं के दरमियान जुमे की मुलाकात को दोनों मुल्कों के लिए इस्तेहकाम और तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक आज़म के तौर पर देखा जा रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गुज़श्ता 24 घंटे में धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ होने वाली बारिश से 60 लोग हलाक हुए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इन मामलों का नोटिस लिया है और हुकाम को कहा है कि वो मुतासरा लोगों की मदद के लिए हर जरूरी इकदाम करें। पेश है हमारे नामा निगार की ये रिपोर्ट।
2: भदोही जिले में सबसे ज्यादा 15 हलाकतें हुई हैं, 12 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली में 4 अफराद हलाक हुए हैं। सबसे ज्यादा अमवात गरज चमक, दीवारों और पेड़ों के लोगों और गाड़ियों पर गिरने की वजह से हुई हैं। रियासत के कई इलाकों में कल अचानक मौसम में तब्दीली आ गई और मुतअद्दिद जिलों से बिजली के खंभों और पेड़ों के गिरने की खबरें मिलीं, जिसकी वजह से बिजली की फराहमी और रोड ट्रैफिक में रखना पड़ा। बारिश के साथ होने वाली झालाबारी से फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: भारतीय महकमाए मौसमियात IMD ने आज मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी राजस्थान के दूरदराज इलाकों में गर्म लहर से शदीद गर्म लहर रहने की पेशगोई की है। मशरकी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के दूरदराज इलाकों में भी गर्म लहर की सूरत हाल रहेगी। मौसमियाती महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश होने की पेशगोई की है, जबकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी रियासतों में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ दो रोजा मुजाकरात के लिए कल शाम बीजिंग पहुंच गए। मुजाकरात के दौरान ईरान जंग, तवानाई के आलमी बहरान, तजारती कशीदगी, ताइवान और मसनूई जहानत जैसे मौजूद एजेंडा में शामिल रहने की तवक्को है। ईरान के साथ जारी जंग के बीच इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू खुफिया तौर पर UAE पहुंचे और उन्होंने मुल्क के सदर से मुलाकात की। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक इसराइली वजीर आजम ने UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत की। इस बयान में मजकूरा मीटिंग को इसराइल और UAE के दरमियान ताल्लुकात में एक तारीखी कामयाबी बताया गया है, हालांकि कामयाबी से मुतालिक तफसीलात का जिक्र नहीं किया गया। दूसरी जानिब UAE ने इसराइली वजीर आजम के दौरे से मुतालिक रिपोर्टों को मुस्तरद किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में UAE की वजारत खारिजा ने कहा कि रिपोर्ट्स गलत हैं और इस बात पर जोर दिया कि इसराइल के साथ UAE के ताल्लुकात खुफिया नहीं बल्कि खुले हैं और सरकारी तौर पर ऐलान करदा इब्राहिम मुआहिदे पर मबनी है। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि कोई खुफिया मीटिंग नहीं हुई है। ईरान ने मजकूरा रिपोर्ट पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने खलीजी ममालिक को इसराइल के साथ तआवुन करने पर खबरदार किया और कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइल का तआवुन करने वाले किसी भी मुल्क को जवाबदेह ठहराया जाएगा। IPL क्रिकेट में कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट से जीत के दौरान विराट कोहली ने तारीख रकम करते हुए कई रिकॉर्ड तोड़े। कोहली ने 60 गेंदों में बगैर आउट हुए 105 रन बनाए। उन्होंने 11 चौके और 3 छक्के लगाए। ये उनकी नवीं IPL सेंचुरी थी, जो कि टूर्नामेंट की तारीख में किसी भी खिलाड़ी की सबसे ज्यादा सेंचुरी है। इस इनिंग्स के दौरान विराट कोहली ने T20 मैचों में 14,000 रन भी मुकम्मल किए। इस तरह वो इस संगे मील को हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। वो क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस संगे मील तक सबसे तेजी के साथ पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने इस IPL सीजन में 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पॉइंट्स टेबल में सरे फहरिस्त टीम बन गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 मैचों में जीत हासिल की है और वो प्ले ऑफ में पहुंचने के बेहद करीब है। आज धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
0: شکریہ نتیکا. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف.

0: मीडियो वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 8:45 हो रहे हैं, सुनेंगे कार्यक्रम मधुरिमा। पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं, खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें
6: 0542227658,
7: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी मधुरिमा मधुरिमा सुनने वाले सभी श्रोताओं को चित्रा का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आपको आज सुनवाते हैं बहुत मधुर गीत, उठो चलो आगे बढ़ो कि जिंदगी चलने का नाम है, हर ठोकर एक सबक है,

तेरी मोहब्बत में खुद को भुला बैठे हैं, रांझे हो गए हम, ये सबको बता बैठे हैं। अब तो बस यही आरजू है सनम, उम्र भर तेरे लिए ही हम बैठे हैं।

0: आप सुन रहे हैं मधुरिमा कार्यक्रम। कार्यक्रम में और भी गीत हम आपको सुनवाएंगे, पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। दिनांक 17 मई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है हार्ट अटैक का बढ़ता खतरा और CPR की उपयोगिता। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 14 मई को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 222-10-52, वाराणसी का STD कोड है 0542। तो हार्ट अटैक का बढ़ता खतरा और CPR की उपयोगिता विषय पर परामर्श के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं गुरुवार 14 मई को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। आपके फोन कॉल्स का रहेगा हमें इंतजार। फोन कीजिए और सुनते रहिए फोन इन प्रोग्राम आरोग्यम।

मेरी हसरत ना पूछ मुझसे, ये दिल तेरे ही तसव्वुर में बहलता है रात दिन। इन लाइनों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं इस खूबसूरत गीत के साथ। आज की मधुरिमा बस इतनी ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी मधुरिमा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मधुरिमा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। सुनेंगे जिले की हलचल बस कुछ ही पलों में।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल।
3: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए कुशीनगर और गोरखपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कुशीनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विवेक पांडे का।
4: भगवान बुद्ध की मां पर निर्माण स्थली कुशीनगर में त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम म्यांमार बौद्ध विहार में आयोजित किया गया, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित भारत में म्यांमार के राजदूत ऊ जाव ऊ तथा अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही विश्व में शांति संभव है। भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध का संदेश दिया है।
5: भगवान तथागत बुद्ध का सर्वकालिक महत्व है, आज भी है, कल भी था और आने वाले कल में भी रहेगा। और संसार के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र संघ से देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने संसार को भगवान तथागत बुद्ध दिया है, हमने युद्ध नहीं दिया है, हमने शांति दिया है।
4: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूरी दुनिया के लिए भगवान बुद्ध का संदेश आज भी प्रासंगिक है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर में विभिन्न बौद्ध विहारों के बौद्ध भिक्षुओं और स्थानीय लोगों ने आकर्षक शोभा यात्रा निकाली, जो नगर का परिभ्रमण कर माथा कुंवर स्तूप पर आकर संपन्न हुई। जनपद कुशीनगर में नगर पंचायत फाजिल नगर के अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन हेतु मतदान एवं मतगणना भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गयी। अध्यक्ष पद के लिए हुए इस उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्रीमती सुनीता शाही ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के अवधेश सिंह को 713 मतों से पराजित किया। यह सीट उनके पति शत्रुमर्दन प्रताप शाही के निधन के कारण रिक्त हुई थी, जिस पर भाजपा ने उनकी पत्नी सुनीता शाही को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया था। कुशीनगर जिले में मतगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के अंतर्गत स्वगणना की प्रक्रिया विगत 7 मई से शुरू हो गई है, जो 21 मई 2026 तक चलेगी। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने जनपद वासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में स्वगणना प्रक्रिया में सहभागिता करें तथा अपने परिवार, पड़ोस एवं परिचितों को भी इसके लिए प्रेरित करें। साथ ही प्रगणक एवं जनगणना कर्मियों का सम्मान करते हुए उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
6: पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है, जिसमें आप सभी की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और जन सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया 7 मई 2026 से लेकर 21 मई 2026 तक संचालित की जाएगी। मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण कार्य में अपनी भागीदारी आप सुनिश्चित करें।
4: कुशीनगर जिले के पूर्व विधायक डॉक्टर बीके मिश्र का विगत 6 मई को निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे और कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। स्वर्गीय मिश्र कुशीनगर जिले की पडरौना विधानसभा सीट से सन 1980 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए थे। बाद में वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ पडरौना के खिड़किया शमशान घाट पर किया गया, जहाँ भारी संख्या में लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी।
3: कुशीनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गिरीश नारायण चौबे का।
7: सार्वजनिक सड़क परिवहन के लिए जीवाश्म ईंधन पर

0: निर्भरता कम करने तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर विशेष जोर दे रही है। शहर के अंदर एक सीमित दूरी तक के लिए ई बसों के संचालन की कामयाबी के बाद अब उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम यूपी रोडवेज ने मध्यम और लंबी दूरी के लिए ई बसों के संचालन की कार्य योजना बनाई है। इस कार्य योजना के तहत गोरखपुर के दो प्रमुख स्टेशनों से 20 नई इलेक्ट्रिक बसें अयोध्या बनारस सुनौली सहित अलग अलग महत्वपूर्ण मार्गों पर दौड़ेगी। रोडवेज ने गोरखपुर से विभिन्न रूटों के लिए ई बसों का ट्रायल कर दिया है। यूपी रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह के अनुसार 9 बसें वाराणसी और 3 बसें अयोध्या के लिए चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बस के संचालन के लिए राप्ती नगर में हाईटेक चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। ट्रायल के बाद अब रोडवेज अगले 10 दिनों में बसों के विधिवत संचालन की समय सारणी भी जारी कर देगा। ईंधन की बचत होने के कारण परिवहन निगम इसका लाभ यात्रियों को कम किराए के रूप में देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तारामंडल क्षेत्र में वाटर बॉडी पर बने 2-लेन ब्रिज का लोकार्पण फीता काटकर जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तेजी से आगे बढ़ते देश प्रदेश के साथ ही गोरखपुर भी तीव्र प्रगति कर रहा है। 2017 के बाद गोरखपुर में विकास की विस्तृत श्रृंखला तैयार हुई है। विकास से बढ़ी सुविधाओं का लाभ लंबे समय तक प्राप्त होता रहे, इसके लिए नागरिकों को भी विकास कार्यों के संरक्षण की जिम्मेदारी उठानी होगी। सीएम ने कहा कि वर्तमान में 50,000 से अधिक नौजवानों को अकेले गोरखपुर के गीडा में उद्योगों के माध्यम से नौकरी और रोजगार प्राप्त हुआ है। गोरखपुर में चारों ओर 4-लेन 6-लेन की कनेक्टिविटी है। यहाँ एम्स बन गया है। खाद कारखाना और पिपराइच में चीनी मिल फिर से चल रही है। उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान आयुष विश्वविद्यालय चिड़ियाघर बेहतरीन पर्यटन स्थल रामगढ़ताल कई होटल सहित अनेक सुविधाओं का यहाँ विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि वाटर बॉडी पर 2-लेन ब्रिज बनने से इस समूचे क्षेत्र में इंटरनल कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी। सीएम ने GDA के अफसरों से कहा कि वाटर बॉडी को रामगढ़ताल के समकक्ष जोड़ने का प्रयास करें। उन्होंने स्वच्छता और सुंदरता को लेकर मोहल्ले स्तर पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि
1: गीडा में जो उद्योग लगे हैं उन उद्योगों के माध्यम से नौकरी मिली है या रोजगार की सुविधा अकेले गीडा में प्राप्त हुई है। ये गोरखपुर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को प्राप्त हुआ। फर्टिलाइजर अलग है, एम्स अलग है, पिपराइच की चीनी मिल अलग है, आयुष विश्वविद्यालय अलग है, अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ अच्छे अच्छे होटल खुल रहे हैं, उन होटलों में अलग है। हर एक सेक्टर में कुछ न कुछ नया हुआ है।
0: पूरी दुनिया को योग का पाठ पढ़ाने वाले योग गुरु परमहंस योगानंद के गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी की जयंती 10 मई रविवार को उनके अनुयायियों की ओर से धूमधाम से मनाई गई। योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से कार्यक्रम का आयोजन राजेंद्र नगर स्थित ध्यान केंद्र पर किया गया। अनुयायियों ने सबसे पहले गुरु के भजन गाए और फिर पुष्पांजलि आरती कर गुरु को याद किया। गुरु युक्तेश्वर गिरी से लोक कल्याण की कामना की। इस दौरान पूरा परिसर गुरु की भक्ति में सराबोर दिखाई दिया। गोरखपुर जिले में ज्येष्ठ मास का दूसरा बड़ा मंगल 12 मई को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शहर के बेतिया हाता मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, तारामंडल स्थित बालाजी मंदिर के साथ विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना कर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बड़े ही आस्था भाव के साथ बजरंग बली का प्रसाद ग्रहण किया।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
3: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
4: तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया।
3: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड

0: Waves OTT app now and watch for free.
1: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।

पुलिस अधीक्षक चंदौली से प्राप्त जानकारी के अनुसार अरमान पुत्र विनोद सोनकर उर्फ गुड्डू निवासी हनुमानपुर काली महाल थाना मुगलसराय जनपद चंदौली। अरमान दिनांक 29 मार्च 2021 को घर से बाहर अपने कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे और फिर वहीं पर खो गए हैं। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 6 वर्ष, रंगोरा। लापता होने के समय इन्होंने मेहंदी कलर का लोअर और पीला सफेद धारीदार शर्ट और हरे रंग का जूता पहन रखा था। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष या जिला चंदौली पुलिस अधीक्षक को सूचित करें।

थाना चकर घट्टा जनपद चंदौली से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रभावती पत्नी लाल बरत निवासी मझगावां थाना चकरघट्टा जनपद चंदौली। प्रभावती दिनांक 24 अप्रैल 2026 तेंदुआ से लापता है। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 45 वर्ष, रंगे हुआ, चेहरा सामान्य है। लापता होने के समय इन्होंने हरे रंग की साड़ी और काले रंग का ब्लाउज पहन रखा था। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष या जनपद चंदौली थाना चकरघट्टा को सूचित करें। थाना सकलडीहा से प्राप्त जानकारी के अनुसार संध्या पुत्री राजेश कुमार सेठ निवासी खोर थाना सकलडीहा जनपद चंदौली। संध्या दिनांक 23 अप्रैल 2026 से लापता है। संध्या के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। उम्र 19 वर्ष, रंगोरा, चेहरा गोल, बालों का रंग इनका काला है। लापता होने के समय इन्होंने लाल रंग का सूट पहन रखा था। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष या थाना सकलडीहा को सूचित करें। थाना कोतवाली अली नगर से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिल्पा कुमारी पुत्री प्रदीप कुमार निवासी तारनपुर थाना अली नगर जनपद चंदौली। शिल्पा दिनांक 8 अप्रैल 2026 से लापता है। शिल्पा के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। उम्र 36 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, शरीर इनका दुबला पतला है। लापता होने के समय इन्होंने नीले रंग का छीटदार सूट और दुपट्टा काला सफेद छीटदार ले रखा था। इनके

0: दाहिने नाक पर काला तिल है। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष, थाना कोतवाली अनिल नगर को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। दिनांक 17 मई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है हार्ट अटैक का बढ़ता खतरा और CPR की उपयोगिता। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 14 मई को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 222-10-52, वाराणसी का STD कोड है 0542। तो हार्ट अटैक का बढ़ता खतरा और CPR की उपयोगिता विषय पर परामर्श के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं गुरुवार 14 मई को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच।
0: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।

उखड़ गया। मारते वक्त उसकी जबान से यही जुमला निकल रहा था कि तेरे भेजे में पढ़ने की बात किसने डाली है। वो चाह रहा था कि एक बार ये माँ का नाम ले ले तो उसे पिटाई का बहाना मिल जाए। हालांकि ये सच नहीं था, और अगर वाकई में माँ ने तालीम के लिए रगबत दिलाई भी होती तो वो अम्मी का नाम तो कभी नहीं लेता। मुजीब को इस बात पर अलबत्ता हैरानी हुई कि अब्बा को पढ़ाई से इतनी चिढ़ क्यों है। कितनी बार वो मुजीब की कॉपी किताबें फाड़ चुका है, मुजीब के हौसले उसके बाद भी पस्त नहीं हुए। हर बार नए अज़्म के साथ वो घंटों लगाकर किताबें फिर से जोड़ देता, और उसके बाद मुजीब को जो खुशी मिलती वो कोई दूसरा महसूस नहीं कर सकता। किताब की कदर कीमत घर में मुजीब के अलावा कोई जानता भी नहीं, और वो माँ अपने मालिकान से भीख की तरह मांग कर लाते और बाप इस तरह फाड़ कर फेंक देता। वर्क से वर्क मिलाना और तमाम सफात के टुकड़े सलीके से जोड़ देना, फिर इस डर और एहतियात से कहीं छुपाना कि अब्बा के हाथ न लगे। एक कमजोर सी अम्मी जिसकी दस्तरस में कुछ भी नहीं था, तालीम की अहमियत से वो भी वाकिफ नहीं थी, मगर वो मुजीब की राह का रोड़ा नहीं बन रही थी। उसके अंदर ये ख्वाहिश पर अपने लगी थी कि पढ़ लिख कर कहीं बाबू साहब जैसा बन जाए तो उसके दरिद्र दूर हो जाएं। इस एहसास के साथ चेहरे पर चमक सी आ जाती, उसकी खुशियों में बहुत इजाफा हो जाता। बहुत जल्द वो वक्त आ गया जब वो रवानी से पढ़ने और इमला लिखने भी लगा। अपनी इर्तका के बारे में वो माँ को बताता रहा। अम्मी को आंखों में कुछ ख्वाबों के अक्स तैरते दिखाई देने लगे। बच्चों को पालने में अम्मी जिस अजियत से गुजर रही थी मुजीब को बखूबी अंदाजा था। वो अपनी माँ की हिम्मत अफजाई करता रहा, जल्द ही इस मुश्किल से जिंदगी से छुटकारा दिलवा देगा। कमरे में दो घंटे से मुजीब अब्बा के खर्राटे मुसलसल सुन रहा था। माँ इतना थक जाती है कि पढ़ने के बाद उसे कुछ होश ही ना रहता। इतनी गुर्बत थी कि वो कुछ भी खरीदने के लिए सोचते रहते। अम्मी को किसी ने नई रजाई दी थी जो उन्होंने मुजीब के हवाले कर दी। बहुत शदीद ठंड पड़ रही थी, इस नई रजाई में उसके दो भाई और एक बहन भी आसानी से सो जाते थे। माँ काम करने वाले घरों से खाने की चीजों के अलावा कुछ और दीगर अशिया भी लेकर आती, ये सब उसके बच्चों के लिए खुश होने के बहाने बन जाते। दो पहले मुजीब के नाप की एक जैकेट ले आई थी जिसे वो सोते वक्त भी नहीं उतारता कि मुबादा कहीं गायब ना हो जाए। दो दिन से मुजीब के जहन में कुछ चल रहा था जिसकी वजह से वो कुछ फिक्रमंद था और अफसरदा भी। अगर कुछ बनना है तो उसे घर छोड़कर कहीं जाना होगा, वरना यहाँ उसका कोई ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सकेगा। लेकिन अम्मी और छोटे भाई बहनों को छोड़कर जाना क्या उसके लिए मुमकिन है? वो इसी बात को लेकर तजब्जुब में था। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचा कि शहर से बाहर जाने से पहले एक दिन के लिए घर से गायब होकर देखे आगे क्या करना है। ये एक दिन की फरारी के रद्द अमल के बाद तय किया जाएगा। निसफ रात गुजर चुकी थी। मुजीब ने लिहाब से सर बाहर निकाला। घर में घड़ी या मोबाइल नहीं था कि वक्त का अंदाजा लगाया जा सके। ये तो उसे मालूम था कि उसका वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। मुजीब बहुत एहतियात और खामोशी से उठा। डब्बे में कुछ पैसे पड़े हुए थे, उसने अपनी जेब के हवाले किए। फूंक फूंक कर कदम रखना इसी को कहते हैं। बहुत आहिस्तगी से कुंडी खोली और बाहर निकलकर दरवाजे बंद किए और गली में आते ही कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। चलते वक्त अब्बा का मफलर भी उठा लाया था। लैंप पोस्ट की रोशनी छन कर गली के नुक्कड़ तक आ रही थी। पीछे वाली गली से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। जल्दी उसे सवारी मिल गई जो स्टेशन जा रही थी। हालांकि मुजीब ने यह तय नहीं किया था कि उसे जाना कहां है। फिलहाल उसे यहां से निकलना था और इस वक्त स्टेशन पर रोशनी और भीड़ भाड़ होगी। वहां पहुंचकर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। सन्नाटे की वजह से 10 मिनट में वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। वहां की चकाचौंध और शोर शराबे में वो खो सा गया। उसे ये आजादी बहुत अच्छी लग रही थी। वो प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर बैठ गया और ये तमाशा देखने लगा। काफी देर बाद उसका ध्यान घर की तरफ गया। अभी तो सब सो ही रहे होंगे, वो सोच रहा था। उसके आने से सिर्फ अम्मी परेशान होंगी और भाई बहन भी, अब्बा को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अचानक हफ्ते भर पहले की गई अब्बा से बात उसे याद आ गई, जब उन्होंने पूछा था कि ये बता कि पढ़ाई का भूत क्यों सवार हुआ है, पढ़ लिख कर आखिर तू क्या करेगा, तेरे भेजे में चल क्या रहा है। चंद लम्हों तक वो अब्बा के सवालों पर गौर करता रहा, फिर बोला कि अगर सच में कुछ पढ़ लिख गया तो आपको एक दिन हैरान कर दूंगा। ये क्या बात हुई, हैरान तो तू अभी भी किए हुए, उस दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा और गुस्सा भी खत्म हो जाएगा शायद। आखिरी लफ्ज होंठों में दबकर रह गया। एक आदमी उसके सामने अखबार का बंडल पटक गया जिससे उसके ख्यालों का तसलसल टूटा। दो लोग आ गए और उन्होंने पैकेट खोल कर अखबार बेचना शुरू कर दिया। मुजीब ने सिक्का निकाल कर उस आदमी की तरफ बढ़ाया। उसने मुजीब को ज्यादा गौर से देखा, फिर सिक्के की तरफ। पढ़ लेता है, उसने सवाल किया। हाँ सुनाऊं, मुजीब की आवाज में बला का एतमाद था। उसके अंदर खुशी और फख्र के अनार फूट रहे थे।
پورا اخبار اس نے وہیں بیٹھ کر ختم کیا۔ ایک نئی صبح اس کے سامنے تھی۔ وہ اٹھ کر باہر آ گیا، ایک چائے اور دو بسکٹ لیے۔ اتنی دیر میں یہ سوچ لیا تھا کہ اب کہاں جانا ہے۔ وہاں سے جاگرز پارک زیادہ دور نہیں تھی، وہ اسی طرف نکل آیا۔ 3 گھنٹے بعد وہ پارک سے باہر نکلا تو باہر دائیں طرف ایک آدمی چٹائی پر کتابیں رکھ کر بیچ رہا تھا۔ یہ

0: है। बहुत शुक्रिया।
1: सामीन, अभी आप मोहतरमा शगुफ्ता अंजुम साहिबा से उनका ये शेरी उम्दा कलाम समात फरमा रहे थे। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। अपने मेजबान दोस्त सैयद मोहम्मद उमेर को दीजिए इजाजत। आदाब।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम, पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें
3: 0542227658,
4: 0542227658।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं लोक संगीत। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं मोहन सिंह यादव और साथी। इनके स्वर में आइए सबसे पहले सुनते हैं गंगा गीत।

कहरवा के साथ ही समाप्त होता है लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार थे मोहन सिंह यादव और साथी। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम जंकार, बस कुछ ही पलों में।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। दिनांक 17 मई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है हार्ट अटैक का बढ़ता खतरा और CPR की उपयोगिता। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 14 मई को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052। वाराणसी का STD कोड है 0542। तो हार्ट अटैक का बढ़ता खतरा और CPR की उपयोगिता विषय पर परामर्श के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं गुरुवार 14 मई को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। आपके फोन कॉल्स का रहेगा हमें इंतजार। फोन कीजिए और सुनते रहिए फोन इन प्रोग्राम आरोग्यम।
1: हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं जंकार। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शिकारी से। आवाज है उषा मंगेशकर और लता मंगेशकर की। इस गीत को लिखा है फ्रॉक कैसर ने और संगीत से सजाया है जी एस कोहली ने। तो आइए सुनते हैं शिकारी फिल्म से ये गीत।

फारूक कैसर का लिखा गीत अभी आपने सुना फिल्म शिकारी से। इन्हीं का लिखा एक और गीत हम आपको सुनवाते हैं पारस मणि फिल्म से। लता मंगेशकर की इसमें आवाज़ है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आज और कल इस फिल्म का आइए सुनते हैं अगला प्रोग्राम में अगला गीत आशा भोसले की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है रवि ने।

कार्यक्रम में अगली पेशकश फिल्म आए दिन बहार कैसे है, आशा भोसले और लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म आरजू से लता मंगेशकर की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के बोल हैं और संगीत है शंकर जयकिशन का।

कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म अधिकार से किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल आवाजों में। गीत है रमेश पंत का और संगीत है आर डी बर्मन का।

अधिकार फिल्म से अभी आपने सुना इस गीत को किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। आप सुन रहे हैं झंकार। कार्यक्रम में और भी गीत हम आपको सुनवाएंगे, बस कुछ ही पलों में।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। दिनांक 17 मई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है हार्ट अटैक का बढ़ता खतरा और CPR की उपयोगिता। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 14 मई को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052। वाराणसी का STD कोड है 0542। तो हार्ट अटैक का बढ़ता खतरा और CPR की उपयोगिता विषय पर परामर्श के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं गुरुवार 14 मई को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। आपके फोन कॉल्स का रहेगा हमें इंतजार। फोन कीजिए और सुनते रहिए फोन इन प्रोग्राम आरोग्यम।
1: मुझे याद कर कभी श्रद्धा से झुक जाए अगर तुम्हारा सर, तो मान लेना तुम्हारे भीतर ही है मेरा होना। कभी मेरी राह पर चलते हुए चोट खाओ, रुक जाओ, फिर भी चलो, तो मान लेना मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा।

0: हमने तो शराफत से अपनी आजादी ली, ऐसा सारी दुनिया कहती है। तब मैं कहूँगा कि जो शराफत से चीज मिली है उस चीज को रखने के लिए भी हमारे शरीफ होना चाहिए।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक शुक्रवार गांधी चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:25 पर सुनिए बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ।

प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।

हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

आज का पंछी फिल्म से अभी आपने सुना इस गीत को लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाज़ में। शैलेंद्र के बोल थे और संगीत था शंकर जयकिशन का।

आई मिलन की बेला, अभी आपने सुना इस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के इस गीत को लिखा था और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अकेली मत जइयो से। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और संगीत है मदन मोहन का।

श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। दिनांक 17 मई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है हार्ट अटैक का बढ़ता खतरा और CPR की उपयोगिता। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 14 मई को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052। वाराणसी का STD कोड है 0542। तो हार्ट अटैक का बढ़ता खतरा और CPR की उपयोगिता विषय पर परामर्श के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं गुरुवार 14 मई को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। आपके फोन कॉल्स का रहेगा हमें इंतजार। फोन कीजिए और सुनते रहिए फोन इन प्रोग्राम आरोग्यम।

बहू बेगम फिल्म से अब सुना आपने इस गीत को, आशा भोसले की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी के बोल थे और संगीत था रोशन का। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म तलाश से। लता मंगेशकर की आवाज़ है मजरूह सुल्तानपुरी के, बोल है और संगीत है SD बर्मन का।

गए क्या तुम। कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाते हैं हम दोनों फिल्म से ये गीत, आशा भोसले की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल और संगीत जयदेव का। इसी के साथ झंकार कार्यक्रम अब समाप्त होता है, दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आपको हम छोड़े जा रहे हैं इस गीत के साथ।

अभी आप सुन रही थी फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़। मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दोस्तों, सुबह के 11 बज चुके हैं और हमारे श्रोताओं को इंतजार होगा अपने खास प्रोग्राम का, यानी फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का।

तो लीजिए, हाजिर हैं हम लेकर आपका अपना खास प्रोग्राम जो आधारित है हमारे श्रोताओं यानी आपके भेजे हुए ईमेल संदेशों पर, फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। इस प्रोग्राम में आज आपकी फरमाइशों को शामिल करेगी आपकी रेडियो दोस्त अंजू तिवारी। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस दुनिया में एक चीज है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि स्थाई है, यानी हमारा आपका रेडियो के माध्यम से जो संबंध है ये स्थाई है। हालांकि दुनिया में हर चीज अस्थाई है, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो सुख दुख हो, चाहे कोई भी हो, वक्त बदलता रहता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। कभी कोई चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, कभी कोई चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो वक्त के साथ साथ हर चीज़ में परिवर्तन होता है, लेकिन एक चीज़ है जो पहले से बनी हुई है और हम यही उम्मीद करेंगे कि ये आगे भी बनी रहे, यानी हमारा हमारे श्रोताओं के साथ ये जो खूबसूरत सा रिश्ता है, अदृश्य रिश्ता जो रेडियो के माध्यम से बना है और काफ़ी पहले से बना है, और यही उम्मीद है कि आगे बरसों बरस तक ऐसे ही बना रहेगा।

बातें हमारी आपकी होती रहेंगी, लेकिन हमारे दोस्तों को यानी हमारे श्रोताओं को इंतज़ार होगा अपनी पसंद के गाने सुनने का। तो ये सिलसिला हम शुरू करते हैं आज इस प्रोग्राम में इस प्यारे से गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म आनंद आश्रम से। इस गीत के लिए फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और हीरामन शेंडे। रजईपुर पोस्ट उगापुर भदोही से बबलू यादव, पप्पी यादव, सुनील यादव और रोहित यादव। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे और परी खर्चे के साथ ही स्वाति प्रयाग चौधरी। सिंधी बुजरुक महाराष्ट्र से किशोर वडतकर, शुभम वडतकर और पुन्नू वडतकर। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।

उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी और अनु गोस्वामी। रूहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू, नंदिनी साहू, मनीष साहू, मयंक साहू और जानकी साहू। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोना मदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य। और सारिमपुर बक्सर से हैं राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। तो अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की युगल आवाज में ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म आनंद आश्रम से। इस गीत को लिखा है इंदीवर ने और तर्ज बनाई है श्यामल मित्रा ने। और अब ये गीत जा रहा है आपके रेडियो सेट पर और हमारे जितने भी श्रोताओं ने फरमाइश भेजी उनका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।

किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल आवाज़ में आपने सुना आनंद आश्रम फिल्म का ये गीत, और कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे फिल्म मेरे हमसफर से। और इस गीत के लिए हमें जिन श्रोताओं ने फरमाइश भेजी है वो हैं जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक और स्वाति जायसवाल, गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिम्पल आशुतोष और अभिनव जायसवाल। पटेल नगर मुगलसराय से हैं सुनील कुमार सिंह, मुक्कम पोस्ट फुल चिंचोली तालुका पंढरपुर से हमारे श्रोता हैं जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर मुलानी और इनके चाचा चाची के साथ ही परिवार के बाकी के सदस्यों की तरफ से ये मेल आया है। और ये मेल हमें भेजा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से हैं अक्रम हुसैन प्रिंस, डाक बाबू, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। और कुआत बिहार से हैं शेख जफर हसन और नरगिस जफर। राज पैलेस मौनाज भंजन उत्तर प्रदेश से हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हैं मुन्ना स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। ग्राम पजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसौलिया। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से हैं गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अवंतिका येले। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी।

लोरमी चचेरी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी। दंतरेंगे भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और निशा अजीम। दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना। पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेरॉय। सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से किशोर वडतकर, शुभम और पुनु वडतकर। और अब आपको सुनवा रहे हैं

वो गीत जिसके लिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं, मेरे हमसफर फिल्म का ये गीत है, लता मंगेशकर और मुकेश के युगल आवाज़ में आप सुनेंगे ये गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

मुकेश और लता मंगेशकर के युगल आवाज में आपने सुना मेरी हमसफर फिल्म का ये गीत। और अब कार्यक्रम के अगले गीत की बारी है और वो गीत है फिल्म प्यार ही प्यार से। और इसके लिए हमारे जिन श्रोताओं ने हमें फरमाइश भेजी है उनके नाम है जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु और मुकेश जगताप। पोटिया कला दुर्ग से ही संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं उदयभान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और परिवार के सदस्य।

पोटिया कला दुर्ग से हैं संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। पटना बिहार से वसीम अकरम, सालिहा खातून और गुड़िया खातून। बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीम, पलक लुबना और यश मंसूरी।

ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निहत परवीन अब्बासी और इनके परिवार के सभी सदस्य शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी,

एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोध। हनुमानगढ़ राजस्थान से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जीशान खान। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु खुराना। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा।

बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। और अब आपको हम सुनवा रहे हैं वो गीत जिसके लिए हमारे इन श्रोताओं ने फरमाइश भेजी थी। ये गीत है फिल्म प्यार ही प्यार से। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने और आवाज मोहम्मद रफी की।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत आप सुन रही थे और कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएंगे फिल्म दिल एक मंदिर से, जिसके लिए हमारे पास फरमाइश आई है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू का। भटिंडा रोड मर्डी डबवाली से राजेंद्र सारंग, अंजू नारंग, राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा।

गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली से इनका संदेश आया है। मखदूम नगर बजडीहा वाराणसी से है एस शम्स तबरेज शाहिद परवेज अकील अहमद हबीब अंसारी। क्षमा कीजिएगा अगर किसी के नाम पढ़ने में थोड़ी सी भी त्रुटि होती है तो अच्छा नहीं लगता है। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से है नारायण गायकवाड़ दयानंद गायकवाड़ ओंकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत कीसुतासु अर्णव आनंद और सत्यमानंद। बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज बेगम इमराना नाज नवाजे शेख दानिश शेख अमन आफरीदी और राधा नामदेव। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान आयशा सबीहा अनस और रेहान। पारसमणी गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार डैनी पवार मनीष पवार। रामदेवरा से दिनेश चौहान डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफा की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। गांव और डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा जतिंदर कौर गुरप्रीत सिंह लवप्रीत कौर करमजीत कौर। डुमराव बिहार से आसमा परवीन सदफ आरजू और वली भाई अंसारी। राजकोट से प्रभा रानी डॉली पूजा राधिका अजीता पासवान। रघुवीर नगर दिल्ली से जफर मुअज्जम शेख और फिरदौस शेख। कापसहेड़ा दिल्ली से फिरोज खान अहमद इकबाल और जालंधर से संदीप जाटव सुरेश जाटव। मेहर पटेल कॉलोनी राजकोट से अजीता पाल हेमा और प्रमिला पाल। कबीरनगर वाराणसी से देव जाटव बेलदार शंकर बेलदार सरिता बेलदार और पूजा टुनटुन बेलदार। मेहर रोड वेस्ट बंगाल से अभिजीत प्रसाद मेहरा मिथुन सांगा और राधिका जाटव। डोंडिया खेड़ा से देवशंकर और प्रभा। और अब आपको सुनवा रहे हैं वो गीत जिसके लिए हमारे पास ये संदेश आए थे। ये गीत है फिल्म दिल एक मंदिर से लता मंगेशकर की आवाज़ है।

श्रोतों, इस वक्त अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को और सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। और कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाएंगे फिल्म गोरा और काला से। इस गीत के लिए हमारे पास जिन श्रोताओं की फरमाइश आई है, पहले उनके नाम सुन लेते हैं और उसके बाद आपको सुनवाएंगे इस फिल्म का गीत। गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल।

बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मोराहो और देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर और सुमन जायसवाल।

काशी नगरी बनारस से हमारे इन श्रोताओं ने संदेश भेजा है। ये हैं आसिफ खान, आरिफ खान, सैफ खान, कैफ खान, अमीन खान, अयान खान।

नागाचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जिया उल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, कुड़ी सेक्टर 5 सूरी नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी बेबी बॉय हिमाक्ष। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से हैं कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज और आयुषी गुप्ता। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर। छत्रपति संभाजी नगर सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद विराज, स्वीट अंशुमन, बेबी ओवी। एयरपोर्ट रोड छत्रपति संभाजी नगर से प्राजक्ता, दत्त प्रसाद भाग्यवान। ग्राम बाघामुड़ा कोमा खान छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन और यहीं से हैं गायत्री, यशवर्धन और यशस्वी देवांगन।

मधुबनी बिहार से मोहम्मद साबिर परवाना साजिद अली और रुखसाना खातून, जेल रोड झांसी से अभिजीत सांगा और सुरेश आशु सांगा। पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्ला बख्श, बेगम राविया शेख और शेख रहीम मुन्ना। बुनकर अख्तर खान, अमजद खान, अफजल खान, आसिफ खान, आरिफ खान, सैफ खान, कैफ खान, अमीन खान, अयान खान। नगर पंचायत गंगापुर वार्ड नंबर 3 जवाहर नगर से।

हटौत बाजार लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल और राजू कुमारी पटेल। और अब आपको सुनवा रहे हैं वो गीत जिसके लिए हमारे इन श्रोताओं ने संदेश भेजा था। ये है फिल्म गोरा और काला से ये गीत। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और मुकेश ने। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत आनंद बख्शी का।

गोरा और काला, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रही थी और कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएंगे कर्तव्य फिल्म से, जिसके लिए हमारे पास संदेश आए हैं। बड़ी कैबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय दर्द श्री त्रिभुवन नाथ मालवीय एवं मालवीय परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोर्ड, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा।

संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी।

गवांडकर और लाडला टुक टुक गवांडकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवांडकर, एकांश सुमित गवांडकर और कुमारी ध्वनि गवांडकर परी। फजिलका पंजाब से खेड़ा परिवार के सदस्य हैं। भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, दिवांशी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन जीवन सिंह बूक और इनके परिवार के बाकी के सदस्य। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से व्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर, कनीज सकीना और हसीना दिलशाद। गढ़नोखा लालगंज बिहार से राजकिशोर चौहान, संदेश कुमार चौहान, अनुराग कुमार चौहान, अनिल कुमार अकेला, बड़क चौहान। पठान टोली कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निर्गत परवीन, सदफ आरजू, साहिल अरमान और शमा परवीन। कुम्भार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश चंदन और पांडुरंग कुम्भार। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। ग्राम लसूड़िया तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी।

दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी तनुश्री गुप्ता और पेहरा बाजार झुमरी तलैया गिरिडीह से शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू। ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनुसुईया जाधव और पवन राजे जाधव। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा परवीन और डब्लू अंसारी। डोंडी लोहारा से प्रभा और शंकर देव। गाजीपुर गांव नारी पचदेवरा डी बाबा चौराहा से अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके मम्मी पापा। कार्यक्रम का ये आखिरी गीत हो सकता है, इसीलिए हमारे जितने भी श्रोता इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं उन सभी को शामिल करने की कोशिश है। सनावत से शेख मूसा मोहसिन। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीता भाटिया। आरीनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। उच्च भट्टी बिलासपुर से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी और अनु गोस्वामी। मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवीद इरशाद, अजरा तबस्सुम। रायपुर अनई जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी और आफिया परवीन।

प्रिया और राघव कुमार। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी नीरा वर्मा, ज्योति और प्रहलाद वर्मा। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कर्तव्य फिल्म से। इस गीत को लिखा है कफील अजहर ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आवाज लता मंगेशकर की।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के ईमेल संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। मीडियावेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरखराम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
0: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
0: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
0: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
0: जी श्रोताओ, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
0: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी। जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
0: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी,
0: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
0: इसके मुख्य लक्षण हैं चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
2: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
0: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
2: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
0: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
2: ठंडा करने के लिए उसे कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
0: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वह सांस भी ठीक से ले पाएगा।
2: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें, लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
0: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें, उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
2: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप

0: आईआईटी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं
0: जी।
1: तो भाई मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के टर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी
0: जी।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
0: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारु और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।

0: घास थोड़ी सी घास ले ले।
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
0: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
2: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
0: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
1: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
4: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
5: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
1: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।

0: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों, जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ बरसात और मेंढक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
2: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें, तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे

0: ऊंची चोटी जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
1: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
2: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
3: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। पर ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
2: आजा खेलते हैं।
3: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
4: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
3: अच्छा वो क्या?
4: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
5: हाँ दूसरा क्या?
4: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
2: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कड्याल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे, शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

0: बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि यह भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: देखो चुन्नीलाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
1: हाँ।
3: ये देखो, पास आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ। ये देखो, यदि इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते से।
3: बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूँ।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
4: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
3: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
4: जी।
1: अच्छा।
0: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।

0: Bobby.
1: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैन गन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
2: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
2: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
3: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
2: थैंक यू सर जी, थैंक यू।
1: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वनियांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने

0: का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे महुआ बनर्जी के गाए गीत।

महुआ बनर्जी के स्वर में आप सुन रहे थे ये गीत, रचना मधुर शास्त्री की थी। और अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं इन्हीं के स्वर में एक और गीत, रचना माता प्रसाद त्रिपाठी की है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महुआ बैनर्जी के गायक गीत। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शुभंकर दे का गायन। राग है मधमाद सारंग। आपके साथ तबले पर संगत की है सौम्यकांत मुखर्जी ने और हारमोनियम पर है इंद्रदेव चौधरी।

0: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शुभंकर दे का गायन, राग था मदमात सारंग। तबले पर आपके साथ संगत की सौम्यकांति मुखर्जी ने और हारमोनियम पर थे इंद्रदेव चौधरी। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन का 1 बजने वाला है। अब सुनिए हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: Our discussions must advance.
3: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के

0: ये प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। कांग्रेस विधायक बीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान उनके नाम की घोषणा की। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 3 दिन की यात्रा पर सिक्किम पहुंच रहे हैं। श्री सिंधिया कल टेमी तारको में सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे और भालेतुंगा में स्काईवॉक परियोजना तथा गंगटोक में ऑर्किडेरियम सहित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर उन पर निशाना साधा। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि श्री गांधी पिछले 22 वर्ष से सार्वजनिक जीवन में हैं और इस दौरान उन्होंने 54 यात्राएं की हैं। श्री पात्रा ने आरोप लगाया कि उनकी विदेश यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रुपये व्यक्तिगत रूप से खर्च किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जैग्रेटेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जैग्रेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। ये फेमा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चीन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा के लिए बेहद उत्सुक हैं। श्री जिनफिंग ने ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना। ग्राम रुस्तमपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी निवासी रामू यादव ने सूचित किया है कि उनके पुत्र विशाल यादव दिनांक 25 मई 2025 से रुस्तमपुर से लापता है। इनकी उम्र है 24 वर्ष, कद 5 फुट 5 इंच, रंग गेहुआ और चेहरा लंबा है। आखिरी बार इन्हें चेकदार शर्ट और नीले रंग की पैंट में देखा गया था। वाराणसी से ही प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार त्रिदेव अपार्टमेंट थाना लंका वाराणसी निवासी अभिषेक डिडवानिया दिनांक 1 मार्च 2025 से लापता है। इनकी उम्र है 40 वर्ष, कद 5 फुट 6 इंच, रंग सांवला और चेहरा गोल है। इनके माथे पर काला निशान है।

0: वाराणसी से ही प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार ग्राम मड़ौली थाना मंडुआडी जनपद वाराणसी निवासी बनारसी ने सूचित किया है कि उनकी पुत्री रूमी दिनांक 22 जून 2024 से लापता है। इनकी उम्र 20 वर्ष, कद 4 फुट 5 इंच, रंग गेहुआ और पतला दुबला एक गहरा बदन है। इनके बाल छोटे हैं और ये मानसिक रूप से कमजोर हैं। आखिरी बार इन्हें हरे रंग की सलवार कमीज और दुपट्टे में देखा गया था। इन सभी के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी मिले तो कृपया निकटतम थाने पर शीघ्र सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से शाम 4 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे शिप्रा बोस का गायन। रात 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा चंदन दास की गायी चंद गजलें। संस्कृत कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 7 बजे। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई चर्चा और मोहन सिंह यादव और साथियों के गाय लोकगीत के अलावा सुनेंगे गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं का प्रबंधन, इस विषय पर मोहम्मद मुदस्सिर अली से की गई बातचीत। मोहन सिंह यादव और साथियों के गाय लोकगीत आप दिन में 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। युवावाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 5:15 पर, जिसमें युवा साथी सुनेंगे आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। धरती के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 5 बजे सुनिएगा कुमाऊनी लोकगीत। दिन में 1:15 पर अंगनैया कार्यक्रम में ग्रामीण बहने चर्चा और गीत संगीत के साथ ही सुनेंगी दूषित खान पान से प्रभावित होता हमारा स्वास्थ्य, इस विषय पर डॉक्टर पूनम जायसवाल से शिखा श्रीवास्तव की बातचीत। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम कहकशा हम लेकर आएंगे दिन में 2:30 पर, प्रस्तुति होगी स्नेहा सिंह की। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद सुनिएगा रात्रि 10 बजे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग सुनिएगा शाम 7:31 पर और रसमाधुरी रात 8:15 पर। अलावा इसके फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 6:10 पर। ये था संक्षिप्त विवरण हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 1:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से इलाकाई खबरें, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मुनक़्क़दा तब्दीली हिंद के नवे साल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आज हमारे पास 7 मेट्रो शहर है। हिंदुस्तान की पहली रैपिड ट्रेन दिल्ली और मेरठ के दरमियान चली। अमन व अमान के हवाले से उत्तर प्रदेश के मुकर्रर करदा अहदाफ सबके सामने हैं। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि आप उत्तर प्रदेश में जहां भी जाएं आपको तरक्की, सलामती, रोजगार और ज़रई तरक्की का एक नया मॉडल नजर आएगा। तमाम 75 अज़ला में बैक वक्त तरक्की हो रही है।
2: भारत का पहला MRO वहां हम बना रहे हैं। लॉजिस्टिक का भारत का सबसे बड़ा हब वहां बनने जा रहा है। क्या नहीं है आज वहां पे कर सकती। 7 सिटी हमारी ऐसी है जहां आज के दिन पे मेट्रो का चलन हो। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच, इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ का है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन, चाहे वह नेपाल के साथ हो, बिहार के साथ हो, झारखंड के साथ हो, छत्तीसगढ़ के साथ हो, मध्य प्रदेश के साथ हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो।

0: उत्तराखंड हो या दिल्ली, सबकी कनेक्टिविटी ये अब।
1: गाजी आबाद में मुनाकिदा प्रोग्राम में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के प्रेसिडेंट कलर अवार्ड तकरीब में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। प्रोग्राम को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज एनडीआरएफ की खिदमत के लिए जो अलामत दी गई है वो एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ पंचायत से लेकर रियासत तक पूरी रियासती मशीनरी एनसीसी एनएसएस और हजारों की तादाद में खिदमत में लगे हुए लोगों को दी गई है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ के जवानों को देखकर लोग खुद को महफूज महसूस करते हैं। मरकजी काबिना ने 2026-27 के लिए मार्केटिंग सीजन के लिए खरीफ की 14 फसलों के लिए कम अज कम सहारा कीमत में इजाफे को मंजूरी दे दी है। इत्तलात और नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में काबिना की मीटिंग के बाद कहा कि हुकूमत ने किसानों के लिए मुनाफा बख्श कीमतों को यकीनी बनाने के लिए खरीफ की फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कम अज कम सहारा कीमत में इजाफा करने के मरकजी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस से न सिर्फ किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और जरई तनु की हौसला अफजाई होगी बल्कि खुशहाल किसान मजबूत हिंदुस्तान के अज़्म को भी तकवियत मिलेगी। रियासत भर के किसानों ने खरीफ के फसलों के लिए एमएसपी में इजाफे पर खुशी का इजहार किया है। मगरबी एशियाई तनाजा से पैदा होने वाले तनाई के आलमी बुहरान के तनाजुर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मरकजी और रियासती हुकूमत ने ईंधन की बचत के इकदाम को तेज कर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईंधन के अलामती कीमतों में इजाफे की वजह से हालिया घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले के साइज में नुमाया कमी की। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी अपने काफिले के साइज नेस से कम कर दिया है। इस तनाजुर में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के लोगों से वजीर आजम की कॉल में शामिल होने की अपील की। वजीर आला ने उन पर जोर कि वो ईंधन की खपत को कम करें और सोने की गैर जरूरी खरीदारी से गुरेज करें। उन्होंने 12 मई की शाम को एक आला सतही मीटिंग में हिदायत दी कि वजीर आला और वुजरा वगैरह के बेड़े में फौरी तौर पर 50% की कमी की जाए। दरअसल असेंबली स्पीकर सतीश महाना ने असेंबली के पार्लिमानी कमेटियों के पहले से तयशुदा तमाम मुतालती दौरे के प्रोग्रामों को अगले अहकाम तक मुलतवी कर दिया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अपनी तौसी शुदा काबिना की पहली मीटिंग की। मीटिंग के दौरान वजीर आला ने किफायत शारी तवानाई के तहफ़ और जिम्मेदाराना वर्क कल्चर को फरोग देने के लिए अहम हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि मौजूदा आलमी सूरत हाल के पेश नज़र ईंधन की बचत न सिर्फ एक मुआशी ज़रूरत है बल्कि कौमी जिम्मेदारी भी है। वजीर आला ने हिदायत दी कि सेक्रेटरीट और डायरेक्ट्रेट में एयर कंडीशनर के दर्ज हरारत 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के दरमियान बरकरार रखा जाए। कुदरती रोशनी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और बिजली का इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक किया जाए। डेयरी कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर के इजाफे का ऐलान किया। तरमीम शुदा कीमतें आज से पूरे मुल्क में नाफिज हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिश आंधी और बिजली गिरने के हादसात में तकरीबन 89 अफराद हलाक हो गए। बाकी तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कल 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के नतायज का ऐलान किया। तलबा सरकारी वेबसाइट डीजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना रोल नंबर दर्ज करके अपने नतायज दे सकते हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से लाकर खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे एफएम पर नशर किया जाएगा। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 1:15 हो चुके हैं और प्रस्तुत है ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम अंगनैया।

0: सुनिया कार्यक्रम सुना ओली साहब बहन लोगन के नमस्ते आ साथे साथे जौन हमीना तो हो की नमस्ते हो
1: नमस्ते हो मुनक्का बहन और बहन लोगन के भी नमस्ते।
0: और हो मीना का होत हो?
1: अरे देखा हो का बताई ये मुनक्का बहन कि का होत हो पूछा मत भाई। देखते बाड़ू कि कब मौसम का जौन है कि इतना घाम हो जात बा बिहान ही उठा तो सूरज नारायण एकदम कपारे पर आ जात हो कि पूछा मत। जैसे बुझा था कितना उचाट और जेठ के दोपहरिया का जौन घाम लगत हो ना कि भाई गर्मी बर्दाश्त ना होते।
0: एकर मतलब ई है बहिन लोगन की देखा मीना न तान के सुतत थी सूर्य नारायण ऊपर से चल जाओ तो पहली बात ही देखा स्वास्थ्य खातिर जियान करी आ यही से देखा घरे में बड़ पुरनिया हो न जवन की ई चेतावन न कि समय से उठा समय से हर काम करा है।
1: भाई मुनक्का बहन तू ई बात तो एकदम सही कथ हो कि घरे में बड़ बुजुर्गन का रहल बहुत जरूरी है। काहे से कि ऊ जवन है कि का सही है का गलत है ई बतावे ना चेतावे ना हरदम जवन है कि ध्यान धरावत रहे ना।
0: ध्यान धरावत रहना सही कहत हो तो यही से कहल गल ना कि परिवार में देखा मुखिया का होना बहुत जरूरी है। भाई वो बड़ा भाग्यशाली है जेकरे परिवार में मुखिया हुआ आ अब तो देखा परिवार का रूप जवन है ना छोट हो चलल चल जात है। परिवार का रूप छोट हो चलल चल जात है और लोग अपने अपने में इतना बिजी हो चलल चल जात हुआ ना कि ई बात भुलायल चल जात हुआ। देखा अभी तोहरे घरे छोटकी बहनी के बियाह रल है ना आ तोहार बड़का परिवार है ना आ देखा सब केहू जुटे रल है तो कितना निक लगत रहा घर एकदम भरल भरल हो पता नहीं चलल कि मतलब आधा बराती तो अपने परिवार में रहल है।
1: एकदम सही बात कहत हो मुनक्का बहन कि जब घर भरल रहे ना तो बड़ा निक लगे ला। आ जवन लड़कन बच्चन हुआ ना तो भाई देखा उहो जवन देखे ना तो सीखे ना। आ घरे में जब सब केहू रहे ना कि बाबा आजी चाचा चाची सब केहू रहे ला तो देखा का है कि केहू एक आदमी के ऊपर भार नहीं आवेला। भाई कौनो चीज का हो कौनो काम मिल बांट के हो जाला लड़कन बच्चन के देखभाल करे के उनके अंदर एक अलग तरह का संस्कार आवेला।
0: एकदम ई बात तू बहुत बड़ कह देलू कि संस्कार अनुशासन यानी बड़न का जौन है सम्मान ई सब उनके अंदर आवला। आ यही के साथे देखा परिवार में हमन के बचपन में देखले है जा कि अगर केहू एक सदस्य कमजोर बा आर्थिक रूप से शारीरिक रूप से तो ओहू का देखभाल जवन ओकरे परिवार का देखभाल ये बड़का परिवार में हो जात रहा है ना। लेकिन आज के समय में लोगन अपने अपने स्वार्थ में कि हम जौन है कि आगे बढ़ी ए चल जात हो बाहरे कमाए और परिवार के जौन रूप है ना वो कम हो जात हो। यही का कारण है कि कबो कबो बच्चन में देखे के मिलला कि उनके अंदर अनुशासन का कमी हो जात हो।
1: एकदम सही बात कहलू हो। देखा भाई घरे में मतारी बाप हुन कहत हु जौन की बाहरे चल जात हुन तो बाहरे अगर दोनों लोग कमाए चल गई ना तो उनके कोई देखे वाला ना हो कोई संस्कार सिखावे वाला ना हो न कोई बतावे वाला तो वो कौने रास्ता पर जात हुन के देखी। अगर यह बड़ परिवार में हुआ तो कौनो बातें नहीं है भाई सब उनके संभार ले बता दही सही गलत संस्कार सब दे दही। आ एकरे साथे साथे जौन हम कहत रहिए ना कि भाई गर्मी बहुत है और देखा छने छन पियास लगत है तो पानी के देखा इस समय बड़ा महत्व हो मुनक्का बहन।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह तू पानी के ये समय नहीं हम कहीं हर मौसम में बहुत महत्व है बाकी गर्मी है तो गर्मी भाई पानी है एकर तो जुड़ाव ज़्यादा हो जाला। यही से कहल गया ना कि देखा ई ऐसन चीज हो अपने धरती पर जानकार लोग भी कहे ना कि जौन पिए वाला पानी है ना ओकर मात्रा कम हो है ना तो जरूरत है बचा के रख का भाई जितना जरूरत हो उतने जौन के उपयोग में लिए। अब तो अपने गाँव में भी देखत हो ना मीना कि लोगन के साधन ऐसा हो गल साधे साथे में जौन है कि बिजली भी मिल जात है पहले ऐसा नहीं रह पानी खींचे के हो नारा से आ कल से दबावे के हो तो मेहनत लगा तो एक बाल्टी भर ले तो के बचा के रखा कि के जाई है ना
1: एकदम सही बात
0: दूरे से लियावे के हो। अब तो घरे घरे हो गल बटन दबावा समरसेबुल चले लगा था है ना पानी भरा जाता ऊपर से टंकियों रखा जाता छते पर माने सुविधा तो कुल हो लेकिन ई सुविधा हमने तक न खत्म हो जाए जवन आवे वाली पीढ़ी है ना मीना ओहू के ई सुविधा मिलत रहे एकरे लिए चेते के जरूरत हो बहिन लोगन।
1: एकदम सही बात कथू हो मुनक्का बहन। देखा पानी का जब तू बात करत हूँ ना अज्ञानी लोग का तो एक पर हमके एक बात याद आता है कि भाई रहीम दास जी कहे ना कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन अ पानी गए न उबरे।

0: मोती मानस चून। तो
1: देखा
0: भाई देखा बिना पानी का कुल सुन हा, आ तनी से अगर शरीर में पानी का कमी हो जा रहा तो डॉक्टर भैया लोगन पानी चढ़ावे लगन है तुरंत है। तब
1: हाँ तो सही कह तो वो पनिया तब बे चढ़ियाँ जब
0: हाँ पनिया
1: पनिया बचल
0: रही
1: रही, तो यही से कहल गया है। और हम लोग भी हमेशा आप लोगन से ये विनती करीला कि हाथ जुहा जुहा के कि बहन लोगन चेत जाए, भविष्य सुरक्षित हो जाए, आपन जवन है ना पशु पक्षी जानवर सब ये धरती पर बनल रहें, एकरे लिए जरूरत है पानी के बचा के रखे के, ओकरे शुद्धता के भी बचा के रखे। ई नहीं कि चल गई अपने गांव के नदी में तो खूब खूब पखारा लगली अपने जौन घरे का जितना भी है, और साथे में पशुन के भी वही में नहवावे लगली, तो ऐसे ऊ पानी दूषित होता, जरूरत हो जितना उतने गिरावे, नहीं तो जलस्तर देखा नीचे चलल चल जाता, पानी मिलत नहीं हो, फिर ऊह होई कि भाई खरीदले पर भी पानी न मिली।
0: सही बात कहलू है बहिनी। तो देखा अब हमन देखा जानकारी के बात तू बड़ी कैलू, लेकिन अब देखा संदेश से भी बड़ी जानकारी मिले ला हो तो बहिन लोगन के संदेश सुनवा देते ही।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए, 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: सुनो ना।
9: हाँ?
8: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
9: तो रोका किसने है? हाँ?
8: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
9: मुझसे?
8: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
9: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
8: पर उससे मेरा क्या फायदा?
9: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
8: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
9: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ, नंबर नोट करो।
10: 0542227658।
8: 0542227658। लो अभी फोन लगाता हूँ। 0542227658।
11: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
0: तो देखा वो मुनक्का बहिन, तू बतियावत रहलू कहत रहलू हो कि दूषित पानी पिए मतलब कि ना करे। भाई देखा दूषित पानी पियले से बड़ा तरह तरह का बेरामी होला, आ चाहे पानी हो चाहे खाए का चीज हो। भाई जब अगर दूषित अपन खान पान रही तो बेरामी तो होइबे करी।
12: बिल्कुल।
0: तो देखा यही विषय पर हम जो ना कि बड़ी नीक बात कही लेके आ रही हो।
12: अच्छा।
0: कि दूषित खान पान से प्रभावित होता है हमारा स्वास्थ्य, यही विषय पर पूनम जायसवाल से बतियाई है शिखा श्रीवास्तव बहिन। तो बहिन लोगन बात कही सुने।
12: बहिन लोगन सुने।
13: श्रोता बहनी, आज हमारे साथ एक कार्यक्रम में आई है पूनम जायसवाल जी, ये शिक्षिका है और आप लोगन के जानकारी दी है कि दूषित खान पान से हमन का स्वास्थ्य कैसे प्रभावित होता। तो बहनी आपका अपने कार्यक्रम में हम स्वागत कर रहे थे।
14: बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बहनों को मेरा नमस्कार।
13: अब बहनी लोगन के यह बता दें कि ये दूषित खान पान का मतलब?
14: दूषित खान पान से मतलब वह है जो वह खाना जो स्वच्छ नहीं है, बासी है, जिसमें बैक्टीरिया है या जो किसी भी तरह से स्वच्छता से नहीं बनाया हुआ है।
13: अच्छा।
14: वही दूषित भोजन होता है जिसका हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए।
13: अच्छा, बासी का बात कहली ना तो दिमाग में एक बात आ गई कि बहुत लोगन कहलन कि बासी रोटी खैले से उमन जौन रोग प्रतिरोधक क्षमता होले उ बढ़ जाएले, तो का उ दूषित है कि उ बढ़िया है फायदेमंद?
14: देखिए कोई भी चीज अगर तरीके से रखी जाएगी, जैसे अगर बासी खाना अगर उसको स्वच्छता से नहीं रखा जाएगा या फिर उसको खुले में रखा जाएगा तो वो किसी भी तरह से लाभदायक नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो हमें हमेशा ताजा भोजन ही करना चाहिए जिसको हम पूरी सफाई से बनाएं और अच्छे तरीके से बना के ही

0: उसको गरम गरम ही खाएं। हमारे हिसाब से तो बासी खाने में ऐसा कोई कहने की बातें हैं, जब जो चीज आपको ताजे खाने से जो पोषण मिलेगा वो बासी खाने से तो नहीं मिलेगा।
1: अच्छा, जब दूषित खान पान का बात कर रही थी तो आप ये बताएं कि दूषित खान पान का सेवन, जैसे आप कहली ना कि बासी है चाहे खुलल है चाहे कोनो भी तरह का, तो ओकर पाचन पर हमरे का असर पड़ा था, कौने तरह से उ प्रभावित करा था, कौने कौने तरह का समस्या हमन के सामने आवा था।
0: सबसे ज्यादा प्रभावित हमारा पाचन तंत्र ही होता है दूषित भोजन से, क्योंकि उसमें बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं जिससे हमें उल्टी, दस्त, पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द होना, हमारे लीवर की समस्या, बहुत सारी चीजें हम जो दूषित भोजन है वो हमको प्रभावित करता है बहुत तरह से। तो इसीलिए हमें कोई भी ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जो गंदगी से बना हो। जो हम कभी कभी देखते हैं रास्ते में ठेले पे जो खाना लगा होता है वो खाने में तो बहुत स्वादिष्ट लगता है पर वो दूषित होता है। उसको खाने से क्या होता है, कभी कभी अचानक से उल्टियां शुरू हो जाती हैं, अचानक से पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमें इस दूषित खाने से बचना चाहिए, जहां तक हो सके हमें स्वच्छ और घर का बना खाना ही खाना चाहिए।
1: अच्छा, जब खाए पिए का बात होता तो देखी ना, आजकल बहनी लोग हाट बाजार जाए लीन तो मोमोज भी खाए लायक थे, हाँ चाहे पिज्जा मिलेला चाहे वो बर्गर है, इकुल जोन जेके फास्ट फूड जंक फूड लोगन कहत हुए, तो एक कैसन भोजन आपका।
0: क्योंकि मैदा सबसे, ये सारी चीजें जितने भी फास्ट फूड हैं ये सब मैदे से ही बनते हैं और मैदे से हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। कभी कभार के लिए तो ठीक है, लेकिन आजकल बच्चे जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, निकलते समय जरूर से कुछ न कुछ फास्ट फूड खा के ही घर पे आते हैं, तो उसका धीरे धीरे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मैं बहुत दूर तो नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की बात बता रही हूँ। मेरे अपने भाई को ही, वो इतना मोमोज खाता था, इतना मोमोज खाता था, मतलब वो रोज कोचिंग से निकल के मोमोज ही खाता था उस, और घर पे आने के बाद पेट भरा हुआ है, खाना नहीं खाना है। अब उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उसका जो पेट का, पेट में अंतड़ियां जाम होने लगी, तो उसके बाद जब उसको डॉक्टर को दिखाया गया तो वो मैदे से उसकी अंतड़ियां चिपक गई थी। कम से कम 2-2.5 महीने तक उसको सिर्फ इतना, कब कितने दिन तक तो उसको लिक्विड पे रखा गया ताकि वो इस फ्लो एकदम सही हो जाए। तो अब हम खुद अपने घर में देखे हैं कि ये हो गया कि उसकी अतड़ियां चिपक गई हैं, उससे कुछ खाया नहीं जा रहा है, पेट हमेशा हैवी हैवी लगेगा थोड़ी देर के लिए, और शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन इसका जो लंबे समय का नुकसान है वो बहुत भारी पड़ता है। तो इसलिए इन सब चीजों से खुद को भी और बच्चों को भी दूर रखना चाहिए।
1: बहुत सही बात आप बतावत हैं। और जाना थी खाली लेकिन बच्चन का बात ना है, जोन घरे का घर आई लोगन है, गवई में से निकली है जब संध्या के हाटे बाजारे,
0: बाजार हाँ।
1: तो दुकान पर चटले बिना, चाट फुलौरी खैले बिना, मोमोज और पिज्जा खैले बिना घर
0: वही सबको
1: आई।
0: स्वादिष्ट लगता है।
1: तो आप ऐसे बहनी लोगन के का सलाह दे?
0: यही सलाह देंगे कि अगर आपको खाना है तो आप स्वयं घर पे बनाइए, या फिर अगर खाइए तो ऐसे अच्छी जगह से खाइए जहां पे सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। ये नहीं कि आप जा रहे हो और ठेले पे लगा रहे हो, उसी हाथ से वो पसीना पोंछ रहा है, उसी हाथ से गोलगप्पा खिला रहा है, तो फिर वो तो दूषित ही हो गया। उससे हमें बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं, हैजा भी इसका एक उदाहरण है। दूषित खाने से हमको हैजा भी हो जाता है, लीवर की समस्या, दिल की समस्या, बहुत कुछ है जो ये सब लॉन्ग टर्म में होती है, जो तुरंत नहीं पता चलती है। अगर हम लंबे समय तक दूषित भोजन का प्रयोग करते रहते हैं तो इस तरह की बीमारियां हमें हो जाती हैं।
1: अच्छा, खाए का बात तो करा थी लेकिन पानी का भी अमन बहुत योगदान है, तो
0: बहुत बहुत।
1: पानी के गंदगी से कौने कौने तरह का समस्या का सामना करे के पड़ सकत है?
0: देखिए, पानी से भी हमें हैजा हो सकता है, पानी से भी हमारा जो सिस्टम है, लीवर सिस्टम है, वो भी गड़बड़ हो सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी कम हो जाती है, उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमेशा हमें पानी को साफ जगह से, या फिर उसको आप उबाल कर पीजिए या फिर फिल्टर करके, मतलब पानी भी हमेशा साफ ही प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि अगर प्यास लगी तो कहीं भी नल है, हैंडपंप है, कहीं भी पानी खुला हुआ रखा है तो आप लेके पी लीजिए, उससे भी लंबे समय में हमें बहुत सारा नुकसान होता है, तो हमको उसको अवॉइड करना चाहिए।
1: तो खाए पिए का कैसन नियम बनावे, कैसन तालिका बनावे, और कौन कौन चीज के अपने भोजन में शामिल करें जैसे वो स्वस्थ रह सके और उमन संतुलित पौष्टिकता और संतुलन का समावेश हो सके।
0: हमें हमेशा ऐसा भोजन प्रयोग करना चाहिए जो आप घर पे बना रहे हो, जो ताजा हो और जिनसे हमें पोषक तत्व मिले। हमेशा चटपटा भोजन हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद नहीं होता है, ये सबको पता है कि अच्छी चीजें जो होती हैं वो स्वादिष्ट नहीं होती हैं, लेकिन अगर हम घर पे चाहेंगे तो उसको स्वादिष्ट बना सकते हैं। हमेशा मोमोज या फिर जो भी बाहर का फास्ट फूड है वो खाना हमको अवॉइड करना चाहिए। घर का दाल रोटी या फिर आप सब्जी को भी अच्छे से बना के उसको चटपटा बना सकते हैं, लेकिन बाहर का खाना खुद भी अवॉइड करना चाहिए और अपने घर वालों को भी समझाना चाहिए

0: खास तौर से स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले बच्चों को। और हमको ये खुद भी समझने की जरूरत है, अगर हम बाजार निकले तो हम बिना खाए वापस घर नहीं जाएंगे। तो इससे हमको, जब हम खुद बचेंगे तभी हम दूसरों को भी बचा पाएंगे।
1: बिल्कुल सही बात कहते हैं। और अपने भोजन में दही है, दूध है,
0: दही, दूध,
1: और
0: फल है, फल, सब्जियां, हरी सब्जियां खाइए, ये जूस पीजिए, लेकिन ये बाहर का ना खाएं।
1: सही बात कहथिन। बहुत बहनी लोगन फल खैले पर इतना जोर दी है, कटल फल रखल रही बाजारे में खूब
0: हाँ, तो
1: खइए।
0: वो कटा हुआ
1: अब
0: फल कोई फायदेमंद नहीं है, वो
1: हाँ
0: हमारे लिए
1: अब
0: नुकसानदेह ही है।
1: आ जब दुख जई है डॉक्टर की है तो कहलिन कहिए कि हम तो फले खात रहली है लेकिन बीमार पड़ गई है।
0: हाँ, हम जूस ही पीते हैं लेकिन बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि वो जूस भी कैसा है, वो कब का जूस है, क्या है, कैसे फल काट के रखे हुए हैं, उसका कोई वो नहीं है।
1: सही बात है।
0: और इससे हमें लगातार दूषित भोजन करने से हमें मोटापा और डायबिटीज भी हो सकता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दूषित भोजन से बच के ही रहें।
1: अच्छा, डिब्बा बंद जौन खाए वाला पदार्थ होला,
0: प्रोसेस्ड फूड।
1: हाँ, और चाहे वो पैकेट में रहेला, फूलल फूलल रहेला, ओमन हवा भरल रहेला, हाँ, मैं खाए में तो इतना निक लगेला, चटपटा लगेला, लेकिन डॉक्टर भैया बहनी लोगन मना करेलन कि एके
0: बिल्कुल,
1: ना खाए के चाहिए, तो
0: हमें
1: एकरे
0: उसको
1: बारे में
0: बिल्कुल
1: बताई।
0: नजरअंदाज करना चाहिए, वो कब बना है, उसमें कौन से केमिकल पेस्टिसाइड्स पड़े हुए हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब अगर आप अभी ताजा फल लाके काट कर खाएं, और वही फल काट करके आजकल पैक मिलता है, तो आप कौन सा खाना चाहेंगी, आप ही
1: भाई
0: बताइए।
1: भाई ताजा रही तो वो
0: ताजा
1: खाए
0: रहेगा
1: में।
0: तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा, अब वो
1: लेकिन
0: डिब्बे में कब का काट के भरा हुआ, उसके ऊपर जरूर कोई ना कोई केमिकल होगा, तभी तो वो अभी तक सही है।
1: तो बहनी लोग अगर ध्यान से सुना थे ना, तो ये जौन भी पैकेट में बंद चीज खाए लीन लोगन, चिप्स पापड़ जौन भी खाए वाला चटपटा चीज है, ओके तनी नजरअंदाज करी, ओके अपने खाए पिए के सामान से बाहरे निकाली, हाँ, एक खाए ठीक नहीं रहेला, बहुत नुकसानदायक ये चीज
0: इसमें
1: होला।
0: चीनी, नमक बहुत ज्यादा होता है,
1: अब पीले
0: जितने
1: वाला
0: भी
1: जौन
0: पैक्ड फूड होते हैं उसमें चीनी भी बहुत ज्यादा होता है और नमक भी बहुत ज्यादा होता है, जो दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। तो इसलिए हमें इन सब चीजों को नजरअंदाज करके अपने घर का ही खाना खाना चाहिए।
1: आ जब केहू भी आवे ला घरे में तो सबसे पहले गर्मी के दिन में लोगन कहीं अरे ठंडा मंगावा मेहमान आ
0: ठंडा
1: गेला।
0: तो सबसे ज्यादा नुकसान करता है, उसमें कितनी चीनी की मात्रा होती है, क्या हम लोग ऐसे, आप नींबू का शरबत बना के दे दीजिए या कोई भी शरबत घर में बना के दे दीजिए, लेकिन अब क्या हो गया, सब कुछ बाहर से आना है, पैकेट फूड आएगा, ले आइए भाई ठंडा कोल्ड ड्रिंक दीजिए, एक गिलास में आप 4 चम्मच चीनी ही पी गए उसमें।
1: भाई यही से तो बहनी लोगन के चेतावे बदे हम लोगन ये विषय पर ध्यान केंद्रित करे के कोशिश कैली हजा कि दूषित खान पान खाली ई नहीं है कि घरे में बनल है बासी तिरासी उहे दूषित है, ई जितना भी चीज का हमन जिक्र कैली है उस सब कुछ दूषित खान पान के श्रेणी में आवेला। अच्छा, इतना हम लोगन बतकही कैली है, आप जौन है ए विषय में जानकारी देथिन तो बहनी लोगन बदे चलत चलत का संदेश देव ऊ जनतनी बता दें।
0: चलते चलते तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि शुभ आहार ही स्वस्थ विचार। अगर हम अच्छा भोजन करेंगे तभी हमारा विचार भी शुद्ध होगा और हम अपने समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। और हमें इसीलिए हमेशा स्वच्छ और सादा भोजन जहाँ तक हो सके वही करना चाहिए। हमें पैकेट फूड और बाहर के ये फास्ट फूड दोनों से बचना चाहिए।
1: बहुत अच्छी जानकारी आप देली ना पूनम जायसवाल जी, आप हमारे कार्यक्रम में लीन, और बहनी लोगन के दूषित खान पान से प्रभावित कैसे हमन का स्वास्थ्य होता है ये विषय पर इतनी बढ़िया बढ़िया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देलीन, ये जानकारी देवे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: मीना, अब यही देखा बहन लोगन सुननी है कि दूषित खान पान से हमन के स्वास्थ्य कितना प्रभावित होला, ये विषय पर पूनम जायसवाल से शिखा श्रीवास्तव के बतकही होत रहा और बहुत निक बतकही भर। लेकिन एक बात कहनी है कि अगर अच्छा खान पान रहे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रही। आ देखा हूँ मीना, जब स्वास्थ्य अच्छा हो के बात कईला जाना तो ओमन एक चीज के बात सबसे पहले आवेला, बुझ
0: कौनी
1: गईलू तो
0: चीज का हो?
1: बताई तू नाही बुझलू। देखा जब गीत संगीत होवे लगला ना तो अगर भूख भी लगल है ना तो कुछ देरी के लिए मन ही भुलाए जाला भूख है ना। तो देखा हमहन के बहन लोगन भी जो हथैन कि हमहन अपने कार्यक्रम में गीत गौनई कब सुनवावल जाई।
0: तो गीत ला तो तोहर मन करत था, बहिन लोगन का भी मन करत था, तो ला है निके के गीत सुन ला।
1: बहन लोगन सुना, हमहू सुनी।

0: बाहरे मीना बड़ा नीक का गाना सुनवैलू हो, सही में का बताई। और सही बात है, देखा मनई स्वस्थ रह, बढ़िया रह हर मौसम में। एकरे लिए हम कही कि खाए पिए पर भी ध्यान देना जरूरी है।
1: भाई देखा थी तू खाए।

0: एक बातों करत हो मारे झोरा में भर के खाए पिए कर लेके चल लो हो या बेल इतना का करे लेके चल हो मुनक्का
1: अच्छा
0: बहिन।
1: केतनो मतलब छिपा के कौनो चीज लेके आवा, लेकिन तोहार नजर ऐसा है ना कि तीर के तरे ओके ढूंढी ले वाला। तो देखा लेके आयल ही सिल्फर माने बेल। आ चलत है गर्मी, आ ये गर्मी में देखा बेल अगर उपयोग में लियावल जाए मीना ना, तो एकर तासीर पहली बात तो ठंडा होला है ना। आ
0: अच्छा
1: बिल्कुल, आ ये जवन है कि पौष्टिक से भरल फल है, औषधि वाला फल है। कहे से देखा एमन कैल्शियम है, फाइबर है, आयरन है, विटामिन ए, विटामिन सी, ई कुल देखा बड़ा भरपूर मिलेला। और यही के साथे साथे जेके कब्ज का दिक्कत बा, या जेके लीवर से जुड़ल कुछ थोड़ी मोड़ी समस्या बा, या शारीरिक कमजोरी बा, तो ओहू से ओके निजात मिलेला। अब कहबो कि कितना तू जौन है कि बतावत
0: हम
1: हो।
0: देखा थे कि तू एकर इतना कुल बतावा तू फायदा आ लेके यही से चल रहे हो तो देखा एक एक खैले से ना और चाहे एकर शरबत बना के पीले से भाई बड़ा फायदा होला कि डायरिया या पेचिस का समस्या है ना तो उसे जुड़ल समस्या से जल्दी आराम मिल जाला। या जेके बार बार शौच का समस्या है तो वो भी अगर बेल का शरबत बना के पिए ना तब देखा आराम भी मिलेला आ पेटे में ठंडा भी रहेला। हाँ और देखा बेल के नियमित सेवन से ना खून साफ होला हो और लू से देखा इसमें लुआर का समय चलत है ना तो अब बेल का अगर शरबत पियल जाए चाहे ओके खायल जाए जैसे भी एक मतलब कि अपने सेवन में लेवल जाए तो लू से भी बचल जा सकत
1: ए
0: हो।
1: मीना देखाओ, हम तो शरबत बनाओ में हमके बड़ा टिटिम्मा देखाला। हम तो बस फोरीला, चम्मच उठाईला, वही तरह खाईला, बड़ा निक लगला है ना। आ हम कहीं कि भाई जेके जैसे पसंद हो वैसे खाए, लेकिन खाए तो ठीक है, बाकी कुछ लोगन के सावधानी भी रखे के चाहिए। जैसे मान ला जौन बहन लोगन गर्भवती हैं या फिर बच्चन के दूध पियावत हैं, तो उनके एके जौन है ना कि अपने डॉक्टर से मिल के समझ के अगर वो कहें तब खाए के चाहिए। वैसे देखा अगर जेके एलर्जी का समस्या हो, तो ओहू के अपने डॉक्टर भैया से पूछ के तब जो है कि एके खाए के चाहिए। काहे से कि ऐसे उनके दिक्कत हो सकेला हो।
0: अच्छा तो देखा हम कही ना कि भाई निकुल के साथे साथे स्वच्छता का भी बहुत ध्यान रखे के चाही हर चीज में खाए पिए के देखा इन बात बात कही होत रहल हो कि साफ सफाई से जवन चीज बनल हो और जवन चीज ओके अच्छा से रख रखाव और अपने अगल बगल घरे में हर जगह पर भाई साफ सफाई का बहुत ध्यान रखे के चाही।
1: बिल्कुल ध्यान रखे के चाहिए। देखा कहल गया है कि स्वच्छता का सीधा जुड़ाव मीना स्वास्थ्य से होला। तो भाई खाए पिए का बात हो, चाहे हम कहें कि बहुत से लोगन के ई आदत देख ले ना कि अपने अगवारे पिछवारे तो साफ कर लिहन, बाकी आस पड़ोस में गंदगी रही तो उनके बड़ा अच्छा लगला, बड़ा खुश होना। तो देखा एक बात बता दें कि खुशी तब दिक्कत में बदली। काहे से कौनो समस्या अगर पड़ोस में हो तो कौनो तरह का बिरामी अगर आ जाता तो ई नहीं है कि तोहके छोड़ दही चीन चीन के जौन है कि दिक्कत फैलाई। तो
0: सही
1: इसलिए
0: बात कहत
1: जरूरी है
0: हुआ
1: ना मीना कि अपने आस पड़ोस का भी सफाई रखें, खान पियन में साफ सफाई रखें, और सबसे बड़ी बात है ना मीना कि अपने विचार में सफाई रखें हो।
0: आ देखा जैसे हमन समय से आई लेना भाई तो अब घड़ी इशारा करत है कि अब जाए का समय हो था तो चला
1: चले का तो
0: चला
1: समय
0: जाए।
1: होते है, तो बहिन लोगन से कहल जी कि भाई जो है ना मौसम से बच के रह, अचला चलल जा।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।

ग्रामीण बहनें सुन रही थी अभी अपना कार्यक्रम अंगनैया। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है लोक संगीत। कलाकार हैं मोहन सिंह यादव और साथी। इनके स्वर में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं पीड़िया गीत।

आकाशवाणी वाराणसी से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार है मोहन सिंह यादव और साथी। कार्यक्रम के अंत में आइए आपको सुनवाते हैं इन्हीं का गाया विदेशिया।

0: on a rotational basis. The crucial talks between U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping is underway in Beijing. Iran war, global energy crisis, tariffs, trade tensions, Taiwan, and artificial intelligence are likely to dominate the agenda. Earlier in his opening remarks, President Xi called for China and the U.S. to be partners, not rivals. In his opening remarks, U.S. President Trump described his Chinese counterpart as a great leader and said the relationship between the two superpowers will be better than ever before. The U.S. President arrived in Beijing last evening for the high-stakes summit with Chinese President. The U.S. President has brought along several top business and technology executives on his visit to China. Among the prominent executives accompanying the President are NVIDIA CEO Jensen Huang, Apple CEO Tim Cook, Tesla and SpaceX chief Elon Musk. In badminton, India's PV Sindhu and top men's doubles pair of Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the quarterfinals of Thailand Open with impressive victories today. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Denmark's Amalie Schultz in women's singles. World number 12 Sindhu will now face reigning world champion Akane Yamaguchi of Japan in the quarterfinals. In men's singles, 7th seed Lakshya Sen defeated Chinese Taipei Su Li Yang to enter the last eight. Meanwhile, top-seeded Indian men's doubles pair Satvik and Chirag defeated Malaysia's Brian Jeremy Gunting and Mohammad Zahekal to book their place in the last eight. News just in. Election Commission today announced Special Intensive Revision SIR Phase 3, which will be conducted in a phased manner in 16 states and 3 union territories. The states are Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Sikkim, Tripura, Telangana and Uttarakhand. The UTs are NCT of Delhi, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli, Andaman and Diu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India asserts BRICS expected to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. Two-day BRICS foreign ministers meeting begins in New Delhi. India and UAE set to take bilateral ties to next level during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi tomorrow. Congress leader V.D. Satishan to be Chief Minister of Kerala. Home Minister Amit Shah says India has emerged as a global leader and first responder in disaster management. U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping hold crucial talks in Beijing. And in badminton, India's PV Sindhu and men's doubles pair of Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter quarterfinals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanak Lata. भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश

0: मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुँचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज वीडी सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण

0: विभाग दिए गए हैं अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजय नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम कहकशा। आज की प्रस्तुति है स्नेहा सिंह की। प्रस्तुत है कार्यक्रम कहकशा। गैर फिल्मी और गजलों के इस कार्यक्रम में मैं आपकी रेडियो दोस्त स्नेहा सिंह करती हूं आप सभी का स्वागत और नमस्कार। महक अपने रिश्तों की फूलों से भी गहरी है, इसलिए तो अपनी मोहब्बत सांसों पे ठहरी है। न टूटे ये सांसों का रिश्ता जिंदगी से, वरना समझेंगे दुनिया में हर मोहब्बत अधूरी है।

माना मिले मुद्दत हुआ पर तू याद आज भी है, थोड़ी धुंधली ही सही मगर इन आंखों में तेरी तस्वीर आज भी है।

नजर में शोखियां लब पर मोहब्बत का तराना है, मेरी उम्मीद की जिद में अभी सारा जमाना है। और अब इसी के साथ कार्यक्रम कहकशां को यहीं समाप्त करने की लूंगी मैं इजाजत आपकी रेडियो दोस्त स्नेहा सिंह। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम कहकशा। आज की प्रस्तुति थी स्नेहा सिंह की। मिनी वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

0: जी हाँ श्रोताओं, सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी और हमसे जुड़े रहिए। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार हम तक पहुंचाएं, उन्हें हम पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है pkld@varanasi.gmail.com। हमारा फेसबुक पेज है ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी। ट्विटर हैंडल है @aarvaranasi।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्ज और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 3:24 हो रहे हैं। अब संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। शाम 4 बजे सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, वेब्स ओटीटी और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 4 बजने वाले हैं आरंभ होती हमारी सांध्यकालीन सभा। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी। और दोस्तों, हर हफ्ते हमें रहता है इंतजार एक ऐसी शख्सियत से मिलने का इस कार्यक्रम में, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर उन्होंने अपना जीवन सेना के लिए समर्पित कर दिया और साथ ही साथ हम सबके लिए अनुभवों की एक मिसाल बन गए। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हमारी अतिथि हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे, जिन्होंने लगभग डेढ़ दशक तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दी है। रिटायरमेंट के बाद वे कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रही हैं, साथ ही साइबर सुरक्षा, इंफोसेक से जुड़े कार्यों में भी आप योगदान दे रही हैं। प्रतीक्षा ठाकरे का नाम विशेष रूप से उन महिला सैन्य अधिकारियों में लिया जाता है जिन्होंने भारतीय वायुसेना में नेतृत्व, अनुशासन और तकनीकी दक्षता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपकी विशिष्टता और विशेषज्ञता रक्षा सेवाओं, नेतृत्व, सुरक्षा और तकनीकी प्रबंधन में रही है। हम आपका स्वागत करते हैं।

0: प्रतीक्षा जी, और संदेश टू सोल्जर्स में आज आपने समय निकालकर जो यहाँ शिरकत की इस कार्यक्रम में, उसके लिए आपके हृदय से आभारी हैं।
1: धन्यवाद विनीता जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस
0: जी
1: मंच का हिस्सा बनना वास्तव में मेरे लिए सम्मान और गर्व की बात है, जहाँ मुझे पूरे भारत के सैनिकों तक अपना संदेश पहुँचाने का अवसर मिल रहा है।
0: जी शुक्रिया। इसलिए भी कि आपने आकाशवाणी में ना केवल आकर हम लोगों को अनुभवों का खजाना सौंपा है, बल्कि इसलिए भी कि आप इसके लिए हमारे ही आभार जता रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही आपसे कहना चाहती हूँ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, आप इतनी यंग हैं, और ऐसे में जब हम आपके साथ रिटायर्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आता, क्योंकि रिटायर्ड तो आमतौर पे व्यक्ति 60 साल की उम्र के बाद होता है, तो आप इतनी छोटी सी उम्र में रिटायर्ड कैसे हैं?
1: बात आपकी सही है,
0: जी
1: क्योंकि मैं भी रिटायर्ड ये शब्द थोड़े से बुजुर्ग लोगों के साथ एसोसिएट करती थी,
0: जी
1: बट क्योंकि मैंने अपने लाइफ के प्राइम 14 साल एयरफोर्स को समर्पित किए हैं और उसके बाद मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ, इसी
0: जी
1: वजह से वो रिटायर्ड शब्द है, और वो मेरे लिए है पक्का। और डेफिनेटली इट इज़ नॉट फॉर द रैंक, बट इट इज़ फॉर मी फ्रॉम द एयरफोर्स।
0: दैट्स सो सो ब्यूटीफुल। अच्छा एक बात बताएं, आपको कैसे लगा कि आपको एयरफोर्स में आना है? कौन था इसके पीछे, या किससे आपको प्रेरणा मिली?
1: विनीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, बट ये ऐसी एक चीज़ है जो मुझे विरासत में मिली है।
0: जी
1: क्योंकि अगर मैं शुरुआत करूँ तो मेरे दादाजी स्वतंत्र सेनानी थे जो भारत के आज़ादी के लिए लड़े। उसके बाद परंपरा बढ़ाई गई मेरे फादर ने, जो इंडियन आर्मी में भर्ती हुए और 25 साल की सेवा जो उन्होंने देश के लिए की, उसके बाद वो रिटायर्ड हुए एज कर्नल। और परिवार की मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जिसने सिर्फ यूनिफॉर्म वर्दी पहनने का सपना ही नहीं देखा, बल्कि उसको जीने का सपना भी देखा।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसीलिए दोस्तों मैंने आप सभी से ये बात कही कि आज की हमारी अतिथि अनुभवों का खजाना है, और इतना कुछ है इनके पास हमें बताने के लिए, क्योंकि आपके परिवार में प्रारंभ से ही फोर्सेस के लिए बहुत रुझान रहा है ना। तो
1: जी
0: भारतीय वायुसेना में, यानी इंडियन एयरफोर्स में जब आप आई, तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था?
1: अच्छा विनीता जी, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी
0: जी
1: मेरे बचपन की तरफ, जहाँ पे मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था। सो जैसे उस टाइम पे जब मैं छोटी थी, उस टाइम मेजरली दो प्रोफेशन ज्यादा नामचीन हुआ करते थे, एक था डॉक्टर, दूसरा था इंजीनियर। की ये दो प्रोफेशन है, तो आपने जिंदगी में कुछ पा लिया है, नहीं तो नहीं। जो मैं अभी सोचती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, और भी बहुत अच्छे प्रोफेशंस हैं। बट हालांकि उस टाइम मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने घर पे एक ही प्रोफेशन देखा था, वो था देश सेवा का।
0: जी
1: तो तब मैंने ठाना कि अच्छा डॉक्टर बनूंगी तो डिफेंस फोर्सेस में ही डॉक्टर बनूंगी, ताकि मेरे दो सपने पूरे हो सके, एक तो देश की सेवा और देश के नागरिकों की सेवा। तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ाई करती चली गई, अच्छा किया। बायो में मेरा काफी रुझान था, काफी इंटरेस्ट था, तो बायो लिया। जब मैंने प्री मेडिकल एग्जाम दिया तब मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए कि मैं MBBS कर पाऊँ। हालांकि इतने नंबर थे कि मुझे डेंटल में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन उस टाइम ऐसा लगा कि नहीं, करना है तो MBBS ही करना है। तो जब मैं कॉलेज में एंटर होने वाली थी, उस टाइम मेरा 12th होने के बाद, मेरे फादर तब तक रिटायर्ड हो चुके थे और वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे।
0: अच्छा
1: हालांकि उन्होंने और मेरी मम्मी ने कभी भी मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला कि तुमने ये करना है या वो प्रोफेशन चुनना है, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे फादर के मन में था कि मेरी बेटी भी इंजीनियर बने उन्हीं की तरह। तो उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, तो उन्होंने बोला मेडिकल की तरफ अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंजीनियरिंग कर लो, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, वहां से
0: बिल्कुल
1: भी तुम कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लोगी। इतना विश्वास उनको मेरे ऊपर था। सो वहां से शुरुआत हुई कि ठीक है, इंजीनियरिंग की एग्जाम दी, मुझे एडमिशन मिला नागपुर यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिला, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच उस टाइम की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मुझे एडमिशन ली। एंड फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इन इंजीनियरिंग। तब तक लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता था कि आधा

0: सपना तो मेरा रह गया है जो है डॉक्टर बनने का,
1: हाँ
0: लेकिन जो बचा आधा था शायद वो भी कहीं छूटता नजर आ रहा था मुझे। लेकिन एक और बात बताना चाहूंगी विनीता जी कि ये हम जो कहते हैं कि हमने सपना छोड़ दिया, वो बात नहीं होती, सपना हमें नहीं छोड़ता है, ये बात होती है।
1: सो ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी बात कही है आपने।
0: सो कहीं ना कहीं वो सपना मुझे ही चेस कर रहा था कि नहीं, तुम अगर डॉक्टर नहीं बनी हो तो डिफेंस फोर्सेस में तो पक्का जाओगी। सो दैट वॉज द पॉइंट जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे एयरफोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर में रिक्रूटमेंट के लिए आए। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे थे तो मैं भी गई उनके साथ कि चलो जाते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर तक हमारा प्लेसमेंट हो चुका था वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनीज में। सो लाइफ तो सेट थी। एज अ यंग पर्सन मुझे लगता था लाइफ में और क्या चाहिए, आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आपकी नौकरी लग चुकी है, पैसे कमाना है एंड लाइफ में मजे ही मजे हैं, ये होता था उस टाइम। एंड अभी भी काफी यंग लोगों का दिमाग में माइंडसेट ये होता है, बट स्टिल जैसे मैंने आपको बताया कि वो सपना था मेरे मन में कि वर्दी तो पहननी है, यूनिफॉर्म वॉज माई ड्रीम। सो वैसे करके देन रिक्रूटमेंट के लिए हम गए, एयरफोर्स ने एग्जाम्स कंडक्ट की, उस टाइम फास्ट ट्रैक एग्जाम एक होता था, उसमें एग्जाम हुई, क्लियर किया। एंड द नेक्स्ट थिंग जो मेरे ध्यान में है, मेरे जहन में है कि हम मैसूर पहुंचे, मैं और मेरे फ्रेंड्स एसएसबी देने के लिए। और आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, एसएसबी के जो वो 5 दिन होते हैं, मतलब वो लाइफ के आर द बेस्ट डेज, दैट इज द गोल्डन पीरियड। और एक संदेश जो मैं अभी देना चाहूंगी देश के सब यंग बच्चों को कि रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन यू शुड एंजॉय, यू शुड एक्सपीरियंस दोज 5 डेज ऑफ एसएसबी। वो आपको आपके खुद के बारे में इतना सिखाता है जो और कहीं आपको सीखने नहीं मिलेगा।
1: अमेजिंग। और ना सिर्फ सीखने को बहुत कुछ मिलता है बल्कि ये आपका वो सपना पूरा करता है कि आपके तन पर यूनिफॉर्म हो, मन में जज्बा हो और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कदम उठें।
0: जी बिल्कुल।
1: और साथ के साथ आपके कदम तो जमीन पर नहीं, आपके कदम तो आसमान के लिए है ना। तो आपने डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का सपना ही नहीं देखा बल्कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन भी की। इसके आगे की यात्रा की बात आपसे बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके इस आसमानी यात्रा की शुरुआत के लिए ये गाना विशेष रूप से आपके लिए समर्पित है।

0: जी दोस्तों, संदेश टू सोल्जर्स में स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और प्रतीक्षा जी, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूं इस गाने के बाद पर्टिकुलरली, कि क्या कभी कोई ऐसा है जिसने ये गाना आपको डेडिकेट किया है या कोई आपके लिए ये गाना गाता है?
1: जी हाँ बिल्कुल, ये है मेरे हस्बैंड जो खुद एयरफोर्स में है।
0: ओह नाइस, अच्छा, वो भी एयरफोर्स में?
1: जी हाँ, वो अभी सर्विंग है, विंग कमांडर अभिषेक लूथरा मेरे हस्बैंड है। एंड बिल्कुल, ये गाना वो कभी हमारे लिए गाते हैं, कभी हम उनके लिए गाते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बात बताएं, आप एयरफोर्स ने आपकी पर्सनालिटी को कैसे बदल दिया? क्या उसका क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव तो नहीं ही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आपकी पर्सनालिटी पे आया? क्योंकि आपने अभी तक जो कुछ भी अपने बारे में बताया प्रतीक्षा जी, मुझे लगता है कि आप तो पहले से ही काफी फोकस्ड और डेडिकेटेड रही, तो एयरफोर्स ने भी कुछ आप में बदला?
1: बिल्कुल, लेकिन एयरफोर्स जाने से पहले जो एक एडवाइस मेरे फादर ने मुझे दिया था, मतलब जस्ट मैं निकल रही थी एयरफोर्स एकेडमी डुंडिगल के लिए, और एक चीज जो आखिरी में उन्होंने मुझे जाते वक्त कही थी कि बेटा ये वर्दी है, ये कोई कपड़ा नहीं है, इसकी इज्जत करना, बिकॉज ये तुम्हें सम्मान और एक पहचान देगी। और उस लास्ट थॉट्स, लास्ट सेंटेंसेस के बाद जब मैं एयरफोर्स एकेडमी पहुंची, सो एक वो अलग दुनिया थी। जैसे मैंने आपको बताया मेरे फादर आर्मी में थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि ट्रेनिंग में होता क्या है। और जब मैंने उनको वापस जाके पूछा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला वो एक्सपीरियंस तुम्हारा खुद का था और मैं चाहता था कि वो एक्सपीरियंस तुम लो और उसको अपनी तरीके से ढालो, ना कि कोई पहले से दिमाग में कोई चीज लेके चलना, वो ठीक बात नहीं है।
0: सो अमेजिंग। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपने ये जो बात कही है ना, ये उन सभी फादर्स को सुनना चाहिए जो अपने बच्चों के स्कूल बैग्स अपने कंधों में रखकर उनको बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आते हैं। दे शुड लर्न कि प्रतीक्षा जी के फादर ने कहा था कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग खुद अपनी नजरों से अपने एक्सपीरियंस के साथ समझनी है, वही तुम्हारे काम आएगी। ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा, अब ट्रेनिंग की बात आपने कही है, तो ट्रेनिंग के दौरान सबसे कठिन चुनौती, सबसे मुश्किल घड़ी आपके लिए कौन सी रही?
1: वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एज एक्स फौजी अगर मैं ये बोलूँ तो कुछ लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम जो सबसे मुश्किल चीज थी मेरे लिए थी, वो थी रनिंग।
0: रनिंग?
1: जी हाँ, ऑल्दो मैं स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलती थी, मैं बास्केटबॉल खेलती थी, लेकिन जो अकेडमी में जिस लेवल की रनिंग होती है, क्रॉस कंट्री होती है, उससे मैं डर जाती थी शुरुआत में। बहरहाल ट्रेनिंग होती ही इसके लिए कि आपको पहले ट्रेनिंग में मेंटली टफ बनाया जाता है, उसके बाद आप फिजिकली टफ तो बन ही जाते हो। सो वो एक शुरुआत की चुनौती थी जो मैंने कर ली थी, वो पार कर ली थी मैंने। लेकिन हाँ जी, अगर आप पूछेंगे तो एक रनिंग एक मेरा बहुत बड़ा खौफ था।
0: इसीलिए आपने जमीन छोड़कर आसमान चुना।
1: हो सकता है।
0: अच्छा एक बात और बताइए, विंग कमांडर बनने की जो आपकी जर्नी थी, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन्स रहे आपके लिए?
1: जी, विंग कमांडर की जर्नी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, बिल्कुल भी आसान नहीं है। डिफेंस फोर्सेस में जाना ही आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये एक और चीज बताना देश के सैनिकों को और जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं।

0: कि डिफेंस केवल एक नौकरी नहीं है, ये एक जीवन शैली है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. तो आपको पूरी तरह अपने में ढालनी पड़ती है. बिल्कुल आपको आपकी पास्ट लाइफ, जो आप एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले जो चल रही थी, जो आपको लाइफ, आपको पूरी तरह छोड़नी पड़ती है. क्योंकि एक वे ऑफ लाइफ का कहने का मतलब ही ये है कि एक डिसिप्लिन लाना, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट जो आपको आपके काम की तरफ देनी पड़ती है. तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं उस जर्नी में टू बिकम अ विंग कमांडर. स्टार्टिंग विथ पोस्टिंग्स, आपको अलग अलग जगह पोस्टिंग जाना होता है, आपके फ्रेंड्स छूट जाते हैं और आपको एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करना होता है, आपको बंदूक चलानी होती है, आपको फिजिकल फिट रहना पड़ता है. तो सारी चीजें आपके लाइफ में एक साथ हो रही होती है. सो दैट इज, दैट कम्स फ्रॉम योर मेंटल फिटनेस एज वेल एज फिजिकल फिटनेस. तो ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में ही आपको तैयार किया जाता है ताकि आगे के लाइफ में आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें.
1: अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, हम डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस में डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है आपकी नज़र में क्या है? वैसे तो मुझे लगता है कि हमारी सबकी जिंदगी में, चाहे वो फोर्सेस में हों या सिविलियंस हों, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन तो सबकी लाइफ में होना ही चाहिए. लेकिन जब हम फोर्सेस की बात करते हैं तब हम इसे बहुत हाईलाइटेड रूप में देखते हैं, तो एज पर यू इसकी क्या इम्पोर्टेंस है?
0: जी देखिए, डिसिप्लिन, आपने जैसा बोला कि डिसिप्लिन हर एक के लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है. विदाउट डिसिप्लिन आप, मुझे नहीं लगता आप कभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं. एंड सक्सेस का पैरामीटर हर एक के लाइफ का अलग होता है. सो डिसिप्लिन आर्म फोर्सेस में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए आर्म फोर्सेस बना ही इसलिए ताकि वॉर टाइम में हम काम कर सके और देश को प्रोटेक्ट कर सके. सो उसके लिए पहला स्टेप ही, पहला कदम ही डिसिप्लिन है. अगर आप अपने काम में, आप अपने लाइफ में हर एक चीज को लेके डिसिप्लिन है तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी आएगा. और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. सेकंड सेकंड का भी बहुत फर्क पड़ता है. अगर आप वॉर टाइम सिनेरियो देखेंगे तो हर एक सेकंड का बहुत बहुत मेजर इंपॉर्टेंस होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन, ऑन ग्राउंड, इन एयर, फ्लाइंग, एवरीथिंग. हर एक जगह पे टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. सो इसीलिए जैसे आपने कहा बहुत हाईलाइट किया जाता है क्योंकि डिफेंस फोर्सेस चलती ही इन दो चक्कों पे है, वो है डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट. कोई भी एक चीज अगर खराब हुई तो आपकी गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाएगी.
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने. अच्छा, आप उन खास लोगों में से हैं, या कहना चाहिए कि उन महिला सैन्य अधिकारियों में से हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में लीडरशिप, डिसिप्लिन और टेक्निकल एक्सीलेंस का एग्जाम्पल दिया है. तो इस नज़रिए से मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने लीडरशिप का सबसे बड़ा पार्ट खुद क्या सीखा है, मतलब आपकी नज़र में लीडरशिप की कौन सा ऐसा लेसन है जिसने आपकी पर्सनालिटी को वो बनाया है जो आज आप हैं और बड़े फक्र से सब आपका नाम लेते हैं?
0: जी, लीडरशिप में मैं तीन चीजें आपको बताना चाहूंगी. एक है पेशेंस एंड पेशेंटली लिसनिंग, खुद धैर्य रखना और धैर्य के साथ सामने वाले की बात सुनना, ये बहुत जरूरी है. दूसरी बात आती है ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल. आप अपनी टीम को अगर आप बोल रहे कुछ करने के लिए, पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा. अगर आप बोल रहे इंटेग्रिटी होनी चाहिए तो आपको इंटेग्रिटी दिखानी होगी, आपको एथिकली एक्ट करना पड़ेगा. वो होता है लीड बाय एग्जांपल. और तीसरी चीज है आपकी टीम. आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, तो आपकी टीम का ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी होती है. दैट इज व्हाट इज लीडरशिप फॉर मी.
1: अमेजिंग, इतनी खूबसूरत डेफिनेशन आपने लीडरशिप की दी है. तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी लीडर ना सिर्फ डिफेंस फोर्सेस में या इंडियन एयरफोर्स में रही हैं, बल्कि अब जो आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं आपने वहाँ भी लीडरशिप की एक मिसाल कायम की होगी, मैं ऐसा मान के चलती हूँ. तो ये तो खैर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई आपने, ये कहकर कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की क्या इम्पोर्टेंस रही है. बट अदरवाइज अगर आपसे ये कहा जाए कि डिफेंस की फील्ड में महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखती हैं, ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि ना सिर्फ एक महिला होने का गौरव आप रखती हैं बल्कि एक बेहतरीन ऑफिसर के रूप में आप

0: जानी जाती हैं, आप रिटायर्ड हुई हैं, लेकिन आज भी लोग आपका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की क्या भूमिका है इस फील्ड में, रक्षा सेवाओं में खासकर?
1: जी देखिए, महिला या मर्द, मुझे लगता है दोनों में कोई फर्क नहीं है। फॉर दैट मैटर, इवन डिफेंस फोर्सेस में कोई जेंडर बायस नहीं है, क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर मैं आपको मेरी ट्रेनिंग के डेज में लेके जाऊं, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक महिला होके मैंने नहीं की है, या किसी और मेल ऑफिसर ने हमारे साथ जो थे ट्रेनिंग में उन्होंने ज्यादा की है या हमने कम की है। तो अगर ट्रेनिंग में भेदभाव नहीं है, तो आगे भी कोई भेदभाव नहीं होता है। सो एज अ वुमेन, अगर आप मुझे पूछे, तो बहुत जरूरी है कि आप आपके मेल काउंटर पार्ट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो बंधन होता है वो हमारे दिमाग में होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। वो जो एक सेल्फ डाउट होता है वो हमारे अंदर होता है, ना कि बाहर। बाहर सब को दुनिया एक समान देख रही है, और स्पेशली डिफेंस फोर्सेस सबको एक समान ही देख रही है। तो एज अ वुमेन, मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए। आप उतनी ही केपेबल हो जितना एक मेल ऑफिसर होते हैं।
0: जी बेहतरीन, मुझे लगता है कि कोई जेंडर बायस एटलीस्ट डिफेंस फोर्सेस में नहीं है। ये बात आपकी इस स्टेटमेंट ने तो साबित कर ही दी है। तो अगर किसी के मन में ये वहम हो कि औरत है ये कैसे कर पाएगी, या महिलाएं कैसे इस फील्ड में जा सकती हैं, या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये औरतों के लिए नहीं है, उन सब की बात का एक बहुत ही करारा जवाब आपने अपने इस स्टेटमेंट के द्वारा दिया है। हैट्स ऑफ टू यू, आई रियली गिव यू अप्लॉज फॉर दिस आंसर। और मुझे लगता है कि जिस तरह आपने इंडियन एयरफोर्स को अपनी भूमिका से बहुत गौरवान्वित किया है, तो ये बादलों का गाना तो आपके लिए बनता ही है।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी। मैं बहुत सारी बातें कर रही हूं प्रतीक्षा जी से, बहुत कुछ अच्छा जानने को भी मिल रहा है और काफी कुछ आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो एक बात जो मैं आप सबकी तरफ से प्रतीक्षा जी से पूछना चाहती हूँ वो ये है कि आपके लिए अब तक अगर पूछा जाए तो आपकी जिंदगी का सबसे गौरव भरा पल कौन सा था, आपका प्राउडेस्ट मोमेंट ऐसा कौन सा था जिस पर आपको लगे कि ये वो पल है जो मैं सपना देख रही थी जिसका।
1: विनीता जी, वैसे तो काफी है। पहला तो था और अभी भी है, जो जिस दिन मैंने यूनिफॉर्म पहली बार पहनी वो पक्का मेरा एक प्राउडेस्ट मोमेंट था। बट उसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि हर सैनिक के जीवन में एक ऐसा पल होता है जो सिर्फ याद नहीं रहता लेकिन उनके रूह में बस जाता है। और मेरे जीवन में एक ऐसा पल आया था 26 जनवरी 2015 में। 26 जनवरी 2015 में जो आरडी परेड हुई थी, रिपब्लिक डे परेड,
0: हाँ जी,
1: उसमें आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स का इंडिविजुअल ऑल वुमेन कंटिंजेंट बना था। और मैं उस कंटिंजेंट का पार्ट थी एयरफोर्स की तरफ से।
0: ओह वंडरफुल।
1: अब आप सोचिए, एक लड़की जिसका बचपन का सपना था यूनिफॉर्म पहनना, देश सेवा करना, अब वो देश के सबसे बड़े मंच पे खड़ी थी, वो था राजपथ। और पहले तो उसका सिलेक्शन हुआ, पहले तो 2 महीने की उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर, क्योंकि जनवरी एंड में होता है, 26 जनवरी को होता है पूरा परेड। तो पहले तो जैसे मैंने आपको बताया वो मेंटल टफनेस से स्टार्ट होती है, फिर फिजिकल टफनेस पे जाती है, बिकॉज वो आसान नहीं होता है। वो परेड होती है लगभग 14 किलोमीटर लंबी परेड, जो आपको पूरे कंटिंजेंट के साथ ताल में ताल मिला के रिदम में आपको मार्च करते हुए जाना होता है
0: पूरे 14 किलोमीटर।
1: बिल्कुल। तो वो सिर्फ एक मार्च नहीं होती, वो एक गौरव होता है और एक अनुशासन होता है कि आप आपकी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चले। और वो भारत की एक शक्ति का प्रदर्शन होता है पूरे विश्व के सामने।
0: ट्रू।
1: सो जब हम राजपथ पे चले, तब मार्च किया कंटिंजेंट के साथ, और फिर वो पल आया जहां हमने भारत के सुप्रीम कमांडर जो राष्ट्रपति थे उस समय के, श्री प्रणब मुखर्जी जी, और उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी थे श्री नरेंद्र मोदी जी, और भारत के इतिहास में पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में एज चीफ गेस्ट फॉर दैट ईयर, मिस्टर बराक ओबामा। सो एक वो जो सलामी थी
0: जी,
1: वो सिर्फ हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक हर लड़की की मेहनत थी, हर महिला का सपना था, और उसके साथ हमको पता था पूरे देश का विश्वास है हमारे साथ। बट आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि वो एक सिर्फ पल नहीं था, बट वो एक हर महिला, हर लड़की, इस देश की हर लड़की का एक वो सपना था कि उस राजपथ पे मैं चलूं। क्योंकि उस दिन मैंने एक और बात सीखी थी कि सीमाएं बाहर नहीं होती, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो हमारे दिमाग में होती है। और जब आप वर्दी पहनते हैं

0: तो आप खुद को प्रूव नहीं करते, लेकिन आप आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं। तो मुझे लगा वो उस तरफ हमने एक छोटा सा योगदान दिया था।
1: कितनी सुंदर बात आपने कही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक मिसाल बनते हैं, आप उनके लिए एक रास्ता तैयार करते हैं जिस पर चलकर वो आपसे भी आगे निकल पाएं, आपके सपनों को और अधिक बुलंदियों पे पहुंचा सकें। बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत सुंदर विचार हैं आपके। प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, ये जब आपने अपना अनुभव बताया रिपब्लिक डे परेड पर, तो उस वक्त जब आप राजपथ पर थी, आपको अपने बचपन के उस सपने को पूरा होते देखने की खुशी तो होगी ही, साथ में ये भी फीलिंग थी कि आपने अपने पापा को प्राउड किया है आज।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं फिर से उस चीज़ पे जाना चाहूँगी जहाँ मैंने बोला कि आप सपना छोड़ सकते हो लेकिन सपना आपको नहीं छोड़ता है।
1: हाँ, कितनी
0: क्योंकि
1: सुंदर बात।
0: एक और चीज़ मैं बताती हूँ आपको, जब मैं स्कूल में थी तब मैं एनसीसी में थी और तब भी मुझे मौका मिला था रिपब्लिक डे परेड पे जाने का,
1: हाँ,
0: लेकिन तब दिमाग में था कि मेरी स्टडीज मिस हो जाएंगी, मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी, क्योंकि तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तब मैंने दिल पे पत्थर रख के अपनी मैम को बोला था कि मैम मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी। तो वो सपना मेरा शायद अधूरा रह गया था जो एयरफोर्स ने पूरा किया है।
1: हाउ स्वीट, कितनी प्यारी बात है ये कि आपने बचपन के सपने को बड़े होकर जिया, और ना सिर्फ जिया बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बना दिया। बहुत ही सुंदर। अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात बताइए, आप तो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा रही हैं, तो बहुत थ्रिल माना जाता है इस डिफेंस फोर्स को, तो आपका भी कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा जो आज आप हमारे साथ बांटना चाहेंगी?
0: जी बिल्कुल। और थ्रिलिंग तो डेफिनेटली है, एयरफोर्स इज फुल ऑफ थ्रिल। और उस थ्रिल में मैंने एक जो काम किया था वो था पैरा जंपिंग का। पैरा
1: वाह।
0: जंपिंग एक ऐसा अनुभव रहा है मेरी लाइफ में जिसने मुझे बाहर से तो बदला ही है, जैसे एयरफोर्स ने मुझे बाहर से बदला है, लेकिन पैरा जंपिंग ने मुझे अंदर से बदल दिया।
1: क्या बात है।
0: उसका अनुभव ऐसा रहा कि Mi-17 हेलीकॉप्टर से आपको 5 जंप्स करनी होती है तब आप ट्रेन पैरा जंपर बनते हैं।
1: और ये जो 5 जंप करनी होती हैं, ये किसी टाइम पीरियड में करनी होती हैं?
0: जी ये 2-3 दिन के पीरियड में करनी होती है क्योंकि मॉर्निंग जंप्स होती है, आपकी नाइट जंप्स होती है। सो वो सब मिला के 2-3 दिन में आपको कंप्लीट करनी होती
1: सिर्फ
0: है।
1: 2-3 दिन में?
0: जी हाँ।
1: माय गॉड।
0: और उसके पहले अगेन हर एक चीज़ की ट्रेनिंग तो होती ही है, तो वो ट्रेनिंग के बाद फिर आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप जंप करें। और वो लगभग 3,000 से 5,000 फीट की ऊंचाई से जंप की जाती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वो सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं होता है, वो अपने अंदर का जो डर है वो निकालने के लिए होता है। और आपको मैं एक और चीज़ बताऊंगी, उस टाइम तक मुझे ऊंचाई का डर था, थोड़ा सा तो डर रहता था मुझे। और जब मेरी पहली जंप थी मैं इतनी एक्साइटेड थी उस पहले जंप के लिए, क्योंकि वो होता है ना, इट्स एन अननोन टेरिटरी, आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। तो पहली जंप तो बहुत मज़ेदार थी और इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस, इतना खूबसूरत अनुभव था वो, कि आपको पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है। बस एक एड्रेनलिन रश होता है, एक एक्साइटमेंट होती है,
1: जी
0: क्योंकि जैसे कहते हैं कभी कभी अनजानी चीज भी डराती नहीं है लेकिन आपको उड़ना सिखाती है। लेकिन दूसरा जंप जो था वो थोड़ा अलग था क्योंकि तब तक मुझे पता चल चुका था कि पहली जंप में हुआ क्या था। तो दूसरी जंप में मुझे ऑनेस्टली बताओ डर लगा था और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी सुसाइड मिशन पे निकली
1: ओह माय गॉड।
0: हूँ। तीसरे जंप के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी और एक मैजिकल फीलिंग थी उस टाइम पे, क्योंकि आप जब जंप कर जाते हो आप वहां पे होते हो जहां पे और कोई शोर नहीं है, कोई नहीं है आपके आसपास, सिर्फ आप हो, चारों तरफ सन्नाटा है और आपकी अपनी सांस से आप सुन पा रहे हो,
1: इनर स्ट्रेंथ
0: इनर
1: बेसिकली।
0: स्ट्रेंथ। वो एक ऐसा पल है जब आपको लगता है कि एक पक्षी होना कैसे लगता है, दैट इज एक्चुअल फ्रीडम। एंड वो एक पॉइंट होता है जहां आप खुद से कनेक्ट करते हो।
1: ऑसम, कितना सुंदर एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, और सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं अगर आप देख सकें तो। मतलब ऐसा जब आप ये अभी एक्सप्लेन कर रही थी, ये बता रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम आपके साथ खड़े हुए और आपके साथ ही जंप करने के लिए नीचे झांक रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन तो बहुत ही खूबसूरत है। आई मस्ट से कि आप बताती बहुत अच्छा है अपने अनुभव। और एक और बात बताइए, देखिए अभी आपने अभी तक जो भी बात बताई वो आपकी सक्सेस स्टोरीज थी,
0: जी
1: क्या ऐसा कभी हुआ कि आपको किसी असफलता का सामना करना पड़ा हो? और अगर ऐसा हुआ तो फेलियर का डर और फेलियर से उबरना, मतलब उस डर को पीछे छोड़ना या उस डर से बाहर निकलना, ये आपका तरीका क्या है इसके लिए?
0: एक कहीं मैंने ये बड़ी अच्छी चीज़ पढ़ी थी कि असफलता अंत नहीं होता, ये बस एक नया रास्ता दिखाना और उसका दिखाने का तरीका होता है।
1: जी
0: सो फेलियर्स तो बिल्कुल आए हैं लाइफ में, बहुत फेलियर्स है और वो ज़िंदगी ही क्या जहाँ पे फेलियर्स ना हो।
1: हाँ
0: लेकिन
1: बिल्कुल
0: आपको लाइफ सिखाती है कि आप गिरिए, आप उठिए, आप अपने कपड़े झाड़िए, साफ कीजिए और आगे बढ़िए, ये जिंदगी है।
1: बहुत सुंदर।
0: तो आप जैसे बता पूछ रही हैं कि फेलियर्स काफी आए हैं, लेकिन हाँ इनिशियली एक जो सेटबैक लगता है आपको, एक थोड़ा सा धक्का सा लगता है, आपने उस पीरियड से जल्दी उबर जाना चाहिए। अगर आप उस फेज में ज्यादा दिन तक रहे या ज्यादा टाइम तक रहे, फिर वो फेलियर आपको खा जाएगा। एंड वही मेंटल टफनेस डिफेंस फोर्सेस हर एक इंसान को सिखाती है, रादर डिफेंस फोर्सेस तो सिखाती है, लेकिन एक संदेश जो मैं सबको देना चाहूंगी कि ये आपने खुद में भी डेवलप करना चाहिए कि फेलियर्स तो आएंगे, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबके लाइफ में फेलियर्स तो आए हैं, लेकिन कितनी जल्दी आप उन फेलियर्स से उबर के आगे बढ़ना सीख लेते हैं वो एक्चुअल लाइफ है।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मुझे लगता है कि जो भी आपके साथ थोड़ी देर भी बैठ जाता होगा ना प्रतीक्षा जी, वो एक बेहतर इंसान बनकर ही बाहर निकलता होगा। आई एम श्योर फॉर दैट, बिकॉज यू हैव सच पॉजिटिव वाइब्स, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है आप में जो हर किसी को जो भी आपके संपर्क में आता है उसको प्रेरित ही करता है, मोटिवेट ही करता है। अच्छा, आपकी इस जब भी हम आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो आपकी सेवा काल के दौरान ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा जिसने आपको बहुत इमोशनल किया हो और मोटिवेट किया हो?
0: इमोशनल किया हो,
1: जी
0: ऐसे तो काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूँगी कि कुछ चीज़ें, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, जो स्टार्ट किए हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके, और फिर कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अलग अलग उसके रीजंस हैं, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। बिकॉज देखिए, एक गवर्नमेंट सर्विस है, आपका बजट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो किसी भी रीज़न के वजह से शायद वो आगे ना बढ़े, तो तब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपने, मतलब मेरे मेरे नज़रिए से मैंने उसमें अपनी लाइफ झोंक दी थी, लेकिन अगर उसका जो आउटकम मैंने एक्सपेक्ट किया था वो अगर नहीं मिला तो बुरा तो लगता है,
1: जी
0: लेकिन ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड वही सेटबैक्स है जिसको आपको पीछे छोड़ देना है और आगे बढ़ते चले जाना है।
1: इसी बात पर हम एक गाना सुनते हैं जो मोटिवेट भी करता है और इमोशनल भी कर देता है। केसरी फिल्म का गाना जो आपको बेहद पसंद है, संदेश टू सोल्जर्स में आज आप हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी के साथ।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ, और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी, जिनकी बातें ना केवल मोटिवेट करती हैं बल्कि सुनकर ऐसा लग रहा है, ऐसा जज्बा पैदा हो रहा है कि आज ही एयरफोर्स ज्वाइन कर ली जाए। तो मेरे मन में जब ये विचार आ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि जितने युवा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनके मन में किस तरह के विचार आ रहे होंगे। तो मैं अब आपसे यही पूछना चाहती हूँ प्रतीक्षा जी कि अगर युवा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, पहली बात, और दूसरा एफ कैट और सी डी एस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपकी क्या सजेशन है युवाओं के लिए।
1: जी विनीता जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम, ये मंच उसी के लिए है ताकि हम जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो फौज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हम उनको अच्छा संदेश दें ताकि वो ज्वाइन कर सके। सो तैयारी के हिसाब से देखिए, मैं एक चीज़ शुरुआत में कहना चाहूँगी कि अगर आपका लक्ष्य नौकरी है तो डिफेंस फोर्सेस आपके लिए सही जगह नहीं है, लेकिन अगर आपका सपना देश सेवा है तो इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। सो तैयारी के हिसाब से पहले तो पक्का आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, पढ़ाई में मन लगाइए, क्योंकि आपने ये चीजें सुनी होंगी कि फौज में पढ़ाई नहीं है, जबकि मैं बताना चाहूंगी फौज में बहुत ज्यादा पढ़ाई है, और जो सीनियर ऑफिसर्स भी हैं जो जनरल ब्रिगेडियर बन जाते हैं वो भी पढ़ाई करते रहते हैं। तो पढ़ाई का कोई पीछा नहीं छूटता है अगर आपने फौज ज्वाइन कर लिया, तो ये एक दिमाग में जरूर रखिए कि पढ़ाई तो रहेगी रहेगी। तो आप पहले से खुद को प्रिपेयर कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अच्छे से आप अपना ट्वेल्थ पास कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ग्रेजुएशन में भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आजकल जो अलग अलग तरीके के एग्जाम्स हैं, एफ कैट है, जैसे एयरफोर्स के लिए एफ कैट है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, और तो इसमें इनिशियली आपके जो ग्रेजुएशन है उसके बेसिस पे एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं या इंजीनियरिंग ब्रांच में आप आना चाहते हैं एयरफोर्स में, सो आपके इंजीनियरिंग का जो बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे आपको सवाल पूछे जाते हैं, प्लस थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान होता है उसके बारे में भी आपने थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप डिफेंस फोर्सेज में जा रहे हैं एंड उसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पेपर होता है, एक एग्जाम होता है। तो ऑल एंड ऑल पूरी तरीके से आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, उससे आपका कोई निजात नहीं है। उसके अलावा एक आपको मेंटल टफनेस आपको खुद में

0: करना पड़ेगा, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इमोशनल लोगों की जगह नहीं है, नहीं, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं, आप इमोशनल हो सकते हैं लेकिन आपको मेंटली टफ रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ है तभी आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे जो मोस्टली फिजिकल होती है, जो इनिशियल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वो ज्यादातर फिजिकल और कम पढ़ाई, और उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तब उसमें ज्यादा पढ़ाई होती है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपकी कभी नहीं रुकती। मेरे लास्ट डे तक भी, जहां मैंने 14 साल कंप्लीट किए एयरफोर्स में, आखिरी दिन तक फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी, पीटी, परेड, रनिंग, जिससे मैं बहुत डरती थी, वो मैंने आखिरी दम तक किया है एयरफोर्स के, और अभी भी करती हूँ, और इसीलिए फिजिकली फिट रहती हूँ। तो ये कुछ प्रिपरेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको अगेन डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपकी लाइफ में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको खुद को कमिट करना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे करना है। अगर आपने वो सपना देखा है तो आप वो सपना जिएंगे, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
1: वाह, कलाम साहब ने ये बात कही थी,
0: जी
1: बहुत सुंदर। और ये जो आपने एक संदेश दिया है सभी युवाओं को, मुझे लगता है कि हालांकि अभी बहुत कुछ मुझे आपसे बात करनी है, जानना है, लेकिन एक ये छोटा सा गाना मैं जरूर चलाना चाहूंगी आपकी इस बात पर
0: जी
1: कि जब आप कह रही हैं कि मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है एंड वाइस वर्सा, तो ये एक गीत सभी युवाओं के लिए प्रतीक्षा जी की तरफ से।

संदेश टू सोल्जर्स का लास्ट सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए, आपका यहां पर होना प्रतीक्षा जी। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे

0: आज हमसे संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रही हैं। बहुत कुछ सजेशंस उन्होंने दी, बहुत कुछ मोटिवेशन दिया, लेकिन एक बात जाने बगैर भला हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं। आप स्वयं एक महिला हैं और महिला होने के नाते आपने विशेष प्रयास किए हैं अपनी जगह बनाने के लिए। तो सेना में करियर बनाने के लिए युवतियों के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं को तो सभी संदेश देते हैं, बट विशेष रूप से युवतियों को आप क्या कहना चाहती हैं?
1: युवतियों को मैं एक चीज़ जो मेरे जहन में बसी है और जो मैंने भी सीखी है, ऐसा नहीं है कि मैं सीख के आई थी, लेकिन मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या वो लड़का कर रहा है, वो

0: कर पाऊंगी? क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी? नहीं, आप सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। आप अभी देखिए, हर दुनिया में हर फील्ड में लड़की है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पे लड़की नहीं है, नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वैसे ही मिलिट्री में भी, डिफेंस फोर्सेस में भी सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आप में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि हाँ, ये मैं करूंगी। देखिए, फेलियर्स तो आएंगे, वो
1: बिल्कुल.
0: सबके लाइफ में आते हैं, वो जेंडर देख के नहीं आते हैं। सो फेलियर आते हैं, फेस इट, गिरिए, उठिए, कपड़े झाड़िए और चलते बनिए।
1: मुझे आपकी ये वाली बात तो बहुत ही पसंद आई है कि अगर कभी ऐसा कुछ होता भी है, गिर भी पड़ते हैं तो भी रुकना नहीं है, कपड़े झाड़िए और आगे चलिए. तो सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को जो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हैं, इस बात से डेफिनेटली प्रेरणा मिलेगी. अच्छा, आप अब क्योंकि रिटायर हो चुकी हैं, क्या आपके लाइफ में रिटायरमेंट के बाद कोई चेंजेस आए हैं क्या?
0: जी, सबसे बड़ा चेंज तो वो है, जो सुबह उठते से ही जो मैं यूनिफॉर्म पहनती थी, वो एक बहुत बड़ा चेंज है, और वो मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि रोज वो यूनिफॉर्म पहन के यूनिट जाते हैं, तो वो एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। उसके अलावा देखिए, वर्क वाइज तो अभी भी मैं वर्किंग हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है आर्म फोर्सेस से, जितना मैं वहाँ अप्लाई कर सकती हूँ करती हूँ, तो कमिटमेंट में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन एक जो ऑरा होता है, और आजकल की जो जेंजी लैंग्वेज में कहते हैं वाइब, वो थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगती है, क्योंकि बाहर कॉरपोरेट में काफी लोग अकेले अकेले से काम करते हैं, जबकि डिफेंस फोर्सेस में इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। सो आई जेन्युइनली मिस दैट टीम वर्क एंड द वाइब ऑफ डिफेंस फोर्सेस।
1: ओह स्वीट, ये जो वाइब आपने बताई है ना, मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में जब सब मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं तो अपने आप वो काम भी बहुत अच्छा होता है, और एक वाइब तो पॉजिटिविटी की रहती ही है. अच्छा, महिला अधिकारियों के लिए इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या ऐसे अवसर हैं कि वो भी आपकी तरह अपने आप को एक प्राउड ऑफिसर कह सकती हैं?
0: पहली बात होगी, किसी चीज़ के लिए मना मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अनकंफर्टेबल हो किसी चीज़, कोई काम करने के लिए और तब भी आप हाँ बोल रहे हैं, नहीं। लेकिन आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटी को भापे,
1: जी
0: और किसी भी चीज़ के लिए मना मत कीजिए, किसी भी चीज़ से डरिए मत कि ये होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलिए आप काम करिए, और आप में वो कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। तो वही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो बाधाएं होती है, जो जो हम बाउंड्रीज बनाते हैं, वो हमारे दिमाग में होती है, बाहर कोई नहीं बना रहा हमारे लिए वो बाउंड्रीज, हम खुद ही बनाते हैं। तो अगर आपने वो बाउंड्रीज पार कर ली, आपने वो जो लक्ष्मण रेखा आपने पार कर ली, तो वर्ल्ड इज ऑन योर फिंगर टिप्स, आप दुनिया, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं।
1: क्या
0: वो
1: बात.
0: कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत छोड़िए अपना।
1: तो आपको ये लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी, स्पेशली जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, वो अगर कॉन्फिडेंस का गहना पहन ले तो उन्हें फिर किसी और गहने की जरूरत नहीं पड़ेगी?
0: बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल वही गहना पहनना है हमने, और कोई पहने ना पहने, लेकिन कॉन्फिडेंस का गहना हमेशा होना चाहिए हमारे पास।
1: थैंक यू सो मच प्रतीक्षा ठाकरे जी. आज आप संदेश सोल्जर्स में आई हैं और आपने अपने इतने खूबसूरत अनुभव और उससे भी बढ़कर प्रेरक विचार हम सबके साथ बांटे हैं. मुझे लगता है कि डिफेंस फोर्सेस का इससे खूबसूरत उपहार हमारे श्रोताओं के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता. तो समय निकालने के लिए आपका आभार, अपनी पॉजिटिविटी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका आभार, और चलते चलते एक सल्यूट तो आपके लिए बनता ही है. तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सभी को प्रेरित करने के लिए. आई होप आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा आज यहाँ.
0: धन्यवाद विनीता जी, यहाँ पहली बात तो मुझे बुलाने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। और आखिरी में बस एक लाइन कहूँगी कि देश सेवा सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, ये एक ऑनर है, और जो ये ऑनर पा लेता है वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका. और दोस्तों, सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स. हम सभी दिल से सलाम करते हैं अपने सोल्जर्स का. बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से प्रतीक्षा ठाकरे जी का.

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5:16 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती के गीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं कुमाऊनी गीत। आज की कलाकार हैं विमला बोरा और साथी।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम धरती के गीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुमाऊनी गीत आप सुन रहे हैं। आज की कलाकार हैं विमला बोरा और साथी।

अभी आप सुन रहे थे धरती के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत कुमाऊनी गीत। आज की कलाकार थी विमला बोरा और साथी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के पाँच बजकर 15 मिनट होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

0: राह पर चलते रहो, मंजिल खुद एक दिन कदमों में होगी।
1: रखो खुद पर भरोसा इतना कि हर मुश्किल राह भी आसान होगी।
0: नमस्कार दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युमवाणी में, जहां मैं आपकी रेडियो दोस्त मोनी
1: और मैं निशा करेंगे आपसे ढेर सारी बातें और देंगे आपको कुछ रोचक जानकारी। साथ ही साथ आकाशवाणी के 90 वर्षों की बीत जाने पर करेंगे आपसे बातचीत। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

0: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
3: 0542227658।
1: ओ
0: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
0: 0542227658।
4: दोस्तों सुबह उठते ही सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपना स्मार्टफोन चेक करते हैं। हमारी सुबह सोशल मीडिया की रील्स और पोस्ट से होती है। इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान और खूबसूरत बना दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी चमकती डिजिटल दुनिया के पीछे एक अंधेरा कोना भी है, एक ऐसा खतरा जो चिपके से हमारे घरों में दाखिल हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ साइबर बुलिंग और ऑनलाइन असुरक्षा की।
5: आजकल इंटरनेट पर किसी को चढ़ाना, उसके लुक्स का मजाक उड़ाना, भद्दे कमेंट्स करना या बिना मर्जी के किसी की तस्वीर और निजी जानकारी वायरल कर देना बहुत आम बात हो गई है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक मजाक समझते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये कोई मजाक नहीं होता है, बल्कि सामने वाले को मानसिक रूप से पूरी तरह से तोड़ देने वाला एक खतरनाक हथियार होता है।
4: बिल्कुल, तो सवाल ये है कि इस अदृश्य दुश्मन से खुद को कैसे बचाएं? घबराइए मत, डरना इसका कोई समाधान नहीं है, बल्कि सतर्क रहना ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। वर्चुअल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए आज ही कुछ आदतें बदल डालिए। सबसे पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड को इतना मजबूत बनाइए कि कोई उसका अंदाजा भी न लगा सके। अपनी प्राइवेसी सेटिंग को हमेशा चेक करें और उन्हें प्राइवेट या ओनली फ्रेंड पर ही रखें।
5: अक्सर हम अनजाने में इंटरनेट पर मिलने वाले हर अजनबी को अपना दोस्त बना लेते हैं। याद रखिए कि हर डिजिटल चेहरा सच्चा नहीं होता है, इसीलिए अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट को बिना सोचे समझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अपनी बेहद निजी जानकारी जैसे घर का पता, फोन नंबर या अपनी डेली रूटीन की कोई भी लाइव लोकेशन सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से बचिए।
4: और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर कोई आपको ऑनलाइन परेशान करने की या डराने की या ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो उससे बहस करने में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। ऐसे लोगों को तुरंत ब्लॉक कीजिए और उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसकी रिपोर्ट कीजिए।
5: तो दोस्तों, आकाशवाणी के गौरवशाली इतिहास के 90 वर्ष पूरे होने पर भारतीय प्रसारण जगत और राष्ट्र के सामाजिक सांस्कृतिक विकास की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। वर्ष 1936 में अपनी आधिकारिक शुरुआत के बाद से आकाशवाणी ने देश के सबसे विश्वसनीय और सुंदर क्षेत्रों में तक पहुंचने वाले सार्वजनिक सेवा प्रसारक के रूप में अपनी अमिट पहचान बनाई है।
4: बिल्कुल, स्वतंत्रता संग्राम की घोषणाओं से लेकर स्वतंत्र भारत के निर्माण, हरित क्रांति की सफलता, आपातकालीन

0: सूचनाओं और खेल जगत के रोमांचक आंखों देखे हाल तक यह माध्यम हर ऐतिहासिक मोड़ पर देशवासियों की धड़कन बना रहा है। विविधता से भरे भारत में दर्जनों भाषा और सैकड़ों बोलियों में प्रसारण कर इसने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने ध्येय वाक्य को पूरी तरह चरितार्थ किया है दोस्तों।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में हमने गगन मेमोरियल स्कूल वाराणसी में एक क्विज कंपटीशन रखी थी, जिसके प्रसारककर्ता थे आशुतोष कुमार जी और उनकी सहयोगी थी मोनिशा राय और सौरभ कुमार। तो आइए सुनते हैं।
2: कभी कभी गांव की चौपाल में तो कभी शहरों की भागती जिंदगी के बीच एक आवाज ऐसी भी रही है जिसने देश को जोड़े रखा है।
3: एक ऐसा माध्यम जिसने खबरें दी, गीत सुनाए, कहानियां सुनाई और अनगिनत भावनाओं को अपनी तरंगों पर सहेज लिया।
2: जी हां, हम बात कर रहे हैं उस आवाज की जो पिछले 90 वर्षों से देश की धड़कनों के साथ चलती रही है, हमारी अपनी आकाशवाणी।
3: 90 वर्षों के इस गौरवशाली यात्रा में आकाशवाणी ने केवल प्रसारण नहीं किया बल्कि संस्कृति, साहित्य, संगीत, शिक्षा और जन जागरूकता को घर घर तक पहुंचाया।
2: और इसी ऐतिहासिक अवसर को याद बनाने के लिए आज आयोजित की जा रही है एक विशेष विद्यालय स्तरीय क्विज प्रतियोगिता।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ जयशालिनी।
2: और मैं हूँ सौरभ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आकाशवाणी एट 90 इयर्स विशेष क्विज प्रतियोगिता में।
3: और आज की इस प्रतियोगिता में गगन मेमोरियल स्कूल वाराणसी की प्रतिभाशाली टीमें भाग ले रही हैं। तो आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं सभी प्रतिभागियों का। और इसी के साथ सभी टीमें अपना परिचय देंगी। सबसे पहले टीम ए।
4: माय नेम इज आलोक विश्वकर्मा।
5: माय नेम इज अंशिका पांडे।
6: माय नेम इज सोनाक्षी सिंह।
7: माय नेम इज श्वेता विश्वकर्मा।
8: माय नेम इज अनन्या सिंह।
3: और अब बारी टीम बी की।
9: माय नेम इज कनक केशव।
10: माय नेम इज अक्षा मौर्य।
11: माय नेम इज संगीता भाट।
12: माय नेम इज आयल सहवास।
13: माय नेम इज आदित्य त्रिपाठी।
2: टीम सी अब अपना परिचय दे।
14: माय नेम इज शांभवी दुबे।
15: माय नेम इज शिक्षा जैस।
16: माय नेम इज आकाश विश्वकर्मा।
17: माय नेम इज सृष्टि मौर्य।
18: माय नेम इज नैन्सी सिंह।
2: प्रतियोगिता प्रारंभ करने से पहले आइए नियमों पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रतियोगिता के कुल 3 चरण होंगे। पहला चरण ऑप्शन राउंड है, इसमें कुल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के साथ कुल 4 विकल्प दिए जाएंगे, सही उत्तर पर आपको 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। वहीं दूसरा चरण डायरेक्ट आंसर राउंड होगा, इस चरण में भी कुल 6 प्रश्न होंगे, कोई विकल्प इसमें नहीं दिए जाएंगे और सही उत्तर पर आपको 3 अंक मिलेंगे, ठीक है।
3: इसी के साथ हमारा तीसरा चरण होगा बजर राउंड का, इसमें कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, टीम को बजर दबाकर उत्तर देना होगा, सही उत्तर पर आपको मिलेंगे 3 अंक। और प्रतिभागियों कृपया ध्यान दें, यहाँ गलत उत्तर पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी।
2: तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो शुरू होने जा रहा है पहला राउंड, आप लोग तैयार हैं?
3: ज्ञान की इस यात्रा का पहला कदम, जहां हर सवाल के साथ होंगे 4 विकल्प, लेकिन सही जवाब चुनने के लिए चाहिए होगी तेज सोच और आत्मविश्वास। तो हमारा पहला प्रश्न है टीम ए से, भारत में रेडियो का जनक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन बी वीर सावरकर, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी आइजैक न्यूटन। अफसोस टीम ए, आपका ये जवाब गलत है। ऑडियंस, आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा? प्रश्न मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, भारत में रेडियो का जनक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन बी है वीर सावरकर, ऑप्शन सी है अब्दुल कलाम और ऑप्शन डी है आइजैक न्यूटन।
17: ऑप्शन ए।
3: गुड। भारत में रेडियो तकनीक के प्रारंभिक विकास का श्रेय मुख्य रूप से महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस को दिया जाता है। अब इसी के साथ हमारा दूसरा प्रश्न है टीम बी से।

0: भारत में पहली बार डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015 या ऑप्शन डी 2016। अफसोस टीम बी, आपका जवाब गलत है। अब ऑडियंस कोई ट्राई करना चाहेगा इस क्वेश्चन को, भारत में पहली बार डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था?
1: ऑप्शन बी
0: 2014। आपका जवाब गलत है। इसका सही जवाब है दोस्तों 2015। साथियों, डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है।
2: इसी के साथ साथियों, हम आ गए हैं अब तीसरे प्रश्न पर। हमारा ये सवाल है टीम सी से। तैयार है टीम सी? सवाल ये है कि वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म का संबंध किस संस्था से है? आपके ऑप्शंस हैं प्रसार भारती, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी इसरो।
3: ऑप्शन सी।
2: अफसोस, आपका उत्तर गलत है टीम सी। इस प्रश्न को कोई और ट्राई करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस में?
3: ए।
2: बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, हाल ही में प्रसार भारती ने भारत में डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपना ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म वेब्स लॉन्च किया है। हम फिर से आ रहे हैं टीम ए के पास अगले सवाल के लिए। आप लोग तैयार हैं? हमारा सवाल आपसे ये है टीम ए, आकाशवाणी वाराणसी में कितनी भाषाओं में समाचार का प्रसारण होता है? आपके ऑप्शंस हैं 12, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 या फिर ऑप्शन डी 25।
4: ऑप्शन 8।
2: नहीं, अफसोस, आपका जवाब गलत है। और कोई हमारे ऑडियंस में?
3: ऑप्शन बी।
2: बिल्कुल सही जवाब, 4 सही है। आपको बता दें कि आकाशवाणी वाराणसी से समाचार बुलेटिनों का प्रसारण मुख्यतः 4 भाषाओं में किया जाता है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और भोजपुरी।
0: अगला प्रश्न टीम बी से है, बिस्मिल्ला खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपके ऑप्शंस है बांसुरी, शहनाई, माउथ ऑर्गन या अलगोजा। बिल्कुल सही जवाब है आपका टीम बी, ऑप्शन बी सहनाई बिल्कुल सही जवाब है इसका। भारत की स्वतंत्रता के ऐतिहासिक अवसर पर 15 अगस्त 1947 को लाल किले से उनकी शहनाई की प्रस्तुति विशेष रूप से प्रसिद्ध है। संगीत के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इसी के साथ अब हमारा अगला प्रश्न टीम सी से है, किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? आपके ऑप्शंस हैं दूरदर्शन, बीबीसी, पीआईबी या फिर आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी।
0: बिल्कुल सही जवाब है आपका टीम सी। आकाशवाणी के प्रतीक चिन्ह पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है। यह संस्कृत वाक्यांश बौद्ध धर्म से प्रेरित है, जिसका अर्थ होता है बहुसंख्य लोगों के हित और बहुसंख्य लोगों के सुख के लिए।
2: तो दोस्तों, पहले चरण यानी कि ऑप्शन राउंड का रोमांचक सफर यही समाप्त होता है। सभी टीमों ने बेहतर शानदार प्रदर्शन किया।

0: किया है। अब एक नजर डालते हैं स्कोर बोर्ड पर। टीम ए ने अर्जित किए हैं 0 अंक, टीम बी 3 अंक और टीम सी ने 3 अंक प्राप्त किए हैं। क्या कहती हो जयशालिनी, स्कोर बोर्ड देख के तो लग रहा है कि मुकाबला अभी पूरी तरह खुला हुआ है और आने वाले राउंड्स में कोई भी टीम बढ़त बना सकती है। तो साथियों, अभी उत्साहित या निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है,
1: तो इसी उत्साह के साथ बढ़ते हैं अगले चरण की ओर। आप सभी तैयार हैं?
2: यस मैम।
0: प्रतियोगिता अब और रोचक होती जा रही है और समय है दूसरे चरण का, डायरेक्ट आंसर राउंड का। इसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेंगे। साथियों, आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ज्ञान, समझ और तुरंत जवाब देने की क्षमता ही आपको अंक दिला सकती है।
1: तो इस राउंड का हमारा पहला सवाल है, बिना का गीत माला रेडियो कार्यक्रम किसके द्वारा होस्ट किया जाता था?
3: रविंद्रनाथ टैगोर।
1: अफसोस, टीम सी आपका जवाब गलत है। ऑडियंस में से कोई ट्राई करना चाहता है? इसका सही जवाब है अमीन सयानी। बिना का गीत माला शुरुआत में रेडियो सिलोन का कार्यक्रम था जो कि श्रीलंका में है, लेकिन बाद के वर्षों में यह आकाशवाणी के विविध भारती सेवा पर प्रसारित हुआ था। और आपको ये भी बता दें कि अमीन सयानी द्वारा होस्ट किए जाने वाला यह हिंदी फिल्मों गीतों का पहला और बेहद लोकप्रिय काउंटडाउन शो था। ठीक है, आपसे हमारा प्रश्न है, भारतीय हिंदी कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब मिला है हमें ऑडियंस से। और दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय हिंदी पंचांग अथवा पारंपरिक हिंदू कैलेंडर का पहला महीना चैत्र माना जाता है और यह माह सामान्यतः मार्च अप्रैल के बीच आता है और भारतीय नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है।
0: अगला सवाल टीम सी के लिए, आप तैयार हैं सभी? टीम सी तैयार हैं आप?
4: यस सर।
0: सवाल ये है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था?
3: बोस।
0: सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा आजाद हिंद फौज यानी कि INA के सैनिकों का उत्साह बढ़ाने और उन्हें भारत की आजादी के लिए संगठित करने के उद्देश्य से दिया था। अब ये सवाल टीम ए से। टीम ए, आप लोग तैयार हैं? सवाल ये है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है?
5: हॉकी।
0: बिल्कुल सही जवाब है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अब टीम बी के नाम ये सवाल, तैयार हैं टीम बी आप?
6: सर।
0: कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब टीम बी, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है।
1: हमारा प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है?
7: माउंट एवरेस्ट।
1: टीम सी आपका जवाब बिल्कुल सही है। वाह भाई, बिना विकल्पों के भी प्रतिभागियों ने जिस आत्मविश्वास और ज्ञान का परिचय दिया वह सचमुच सराहनीय है। और अब समय है दूसरे चरण के स्कोर जानने का। टीम ए ने प्राप्त किए हैं 3 अंक, टीम बी ने दोनों राउंड में मिला के प्राप्त किए हैं 6 अंक और इसी के साथ टीम सी ने दोनों राउंड में मिला के प्राप्त किए हैं 9 अंक। अंक तालिका लगातार बदल रही है और प्रतियोगिता अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है।
0: क्योंकि अब बारी सबसे तेज, सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे निर्णायक दौर का जो

0: की है बजर राउंड।
1: क्योंकि सही जवाब दिलाएगा 3 अंक, लेकिन गलत उत्तर पर कटेगा 1 अंक, यानी सावधानी हटी और अंक कटी।
0: तैयार हो जाइए और बजर पर अपने हाथ टिका लीजिए, क्योंकि अब हर सेकंड महत्वपूर्ण है। तो टीम्स, आप लोगों से बजर राउंड का पहला सवाल ये है, पाई का मान क्या होता है? ये पहले बजर टीम ए ने दबाया है। टीम ए, अपना जवाब दीजिए।
2: 22/7।
0: बिल्कुल सही जवाब है साथियों। अगला सवाल, तैयार हैं आप लोग? बजर पर हाथ टिका लीजिए। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? ये बजर टीम ए ने दबाया है। जी, अपना जवाब बताएं।
2: कॉर्निया।
0: बिल्कुल सही जवाब टीम ए। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि ये प्रतिस्पर्धा का खेल है भाई। तो देखिए, टीम ए निराश नजर आ रहे थे, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही थी, लेकिन वही टीम ए अब आगे बाजी मारते दिख रही है।
1: इस राउंड का अगला सवाल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? टीम ने सबसे पहले बजर दबाया है। टीम सी, अपना जवाब बताइए।
2: HCl।
1: बिल्कुल सही जवाब है आपका टीम सी। हमारे पेट में उपस्थित गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो भोजन को पचाने और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायता करता है। और इसी के साथ अब बारी है हमारे इस राउंड के अगले प्रश्न की, जो कि है, UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है? टीम बी ने सबसे पहले बजर दबाया है। टीम बी, अपना जवाब बताइए।
3: यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन।
1: अफसोस टीम बी, आपका ये जवाब गलत है। और कोई ट्राई करना चाहेगा बाकी की टीम्स में से? अफसोस, इसका जवाब आप में से किसी को नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसका जवाब बता देते हैं। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। UNEP का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण, जैव विविधता की रक्षा और प्रदूषण को कम करने के लिए विश्व देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।
0: अब अगले सवाल के लिए तैयार हैं आप सभी टीम्स? HTTP का फुल फॉर्म क्या है? पहले बजर दबाया है, आप जवाब देंगे, बताएं।
3: हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
0: बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों, हम आपको बता दें कि HTTP एक प्रोटोकॉल है, जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर टेक्स्ट यानी कि वेब पेज को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। के लिए तैयार हैं आप सभी? सवाल ये है, URL का फुल फॉर्म क्या है? टीम सी ने बजर दबाया है, आप बताएं।
3: यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर पता निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है।
1: टाउन का हमारा अगला प्रश्न है, एम्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सबसे पहले टीम ए ने बजर दबाया है, अपना जवाब बताएं टीम ए।
2: दिल्ली।
1: आपका जवाब बिल्कुल सही है टीम ए। अब इस राउंड का हमारा अगला सवाल है, मल्टीमीडिया में GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? सोर्स, इसका जवाब आप में से किसी को नहीं पता है, हम इसका जवाब बता देते हैं। इसका सही जवाब है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF आकार में छोटे और जटिल होते हैं, आप उन्हें किसी भी प्लेटफॉर्म पर आसानी से साझा कर सकते हैं। और इसके साथ ही GIF एक डायनेमिक इमेज है, जो बिना किसी ध्वनि के वीडियो की तरह होता है। के साथ समाप्त होता है आज का सबसे रोमांचक और निर्णायक चरण, बजर राउंड,
0: जहां प्रतिभागियों ने न केवल अपनी तेजी दिखाई बल्कि दबाव के बीच सटीक उत्तर देकर शानदार प्रदर्शन भी किया।
1: तो आइए अब नजर डालते हैं अंतिम स्कोर बोर्ड पर। तो दोस्तों, फाइनल स्कोर्स इस प्रकार हैं। टीम ए ने अर्जित किए हैं 14 अंक, टीम बी ने प्राप्त

किए हैं 5 अंक और टीम सी को मिले हैं 15 अंक। और इसी के साथ आज की हमारी विनर टीम बन गई है टीम सी।

0: विजेता प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई और अन्य सभी टीमों ने भी बहुत अच्छा खेला और कांटे की टक्कर दी। आप सभी को उत्साहपूर्ण सहभाग के लिए हार्दिक सराहना।
1: जी हाँ साथियों, क्योंकि असली जीत केवल अंकों की नहीं होती बल्कि सीखने, भागीदारी और आत्मविश्वास की होती है। दोस्तों, किसी भी कार्यक्रम की सबसे खूबसूरत बात होती है उससे जुड़ी आपकी भावनाएं, आपकी यादें और आपके अनुभव। आकाशवाणी ने पिछले 90 वर्षों में न जाने कितनी पीढ़ियों के जीवन को अपनी आवाज से छुआ है।
0: तो अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे यहाँ उपस्थित प्रतिभागियों, शिक्षकों और सभी श्रोताओं को कि यदि आपके मन में आकाशवाणी से जुड़ी कोई विशेष स्मृति, कोई प्रेरणादायक अनुभव या आज की इस क्विज प्रतियोगिता से जुड़ी कोई भावना हो जो आप यहाँ पर आकर हमारे साथ साझा करना चाहें।
1: क्योंकि आकाशवाणी केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं और यादों का हिस्सा रही है, तो आइए कुछ खूबसूरत यादों और अनुभवों को शब्द देते हैं। ये करके हम सारे टीम्स के पास जाएंगे और जो भी प्रतिभागी बताना चाहते हैं वो बताएं।
2: आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के युग में आकाशवाणी समय के साथ बहुत आगे बढ़ा है।
3: मौर्य फ्रॉम क्लास 8। आज के प्रतियोगिता में बहुत ही हमें अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया और इससे हम लोग बहुत कुछ सीख भी सकते हैं।
4: माय नेम इज श्वेता विश्वकर्मा, आई स्टडी इन क्लास 8। मुझे आज इस क्विज गेम में बहुत मजा आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। थैंक यू आकाशवाणी।
5: माय नेम इज आकाश विश्वकर्मा, आई स्टडी इन क्लास 8। आज के आकाशवाणी क्विज गेम में आज जो यहाँ पे प्रश्न हुए हैं उनके लिए पहली बात तो ये हमेशा हर जगह होना चाहिए। इससे हम लोगों के दिमाग की जो नॉलेज है वो हम लोग की बढ़ती है और साथ ही साथ ज्ञान तो मतलब जीवन में हमेशा काम आने ही वाला है, इतना तो है ही, ज्ञान ज्ञान होता है। और मैं यही कहना चाहूँगा जो बच्चे लोग हैं मतलब घर पे गेम खेलते हैं, वीडियोस खेलते हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए। थैंक यू आकाशवाणी।
6: वन माई नेम इज शांभवी दुबे फ्रॉम क्लास 6। आज मुझे बहुत अच्छा लगा इस गेम में और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू आकाश।
7: माय नेम इज निखिल सुनकर। और सर, आज आप लोग ने जो भी क्विज गेम खेला है, हम लोग ऑडियंस थे, फिर भी हमें देख के अच्छा लगा और जो टीम्स नहीं बता पा रही थी वो हमें बताने का मौका मिला।
8: डॉक्टर सरोज राय, गगन मेमोरियल के प्रधानाचार्य। आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आकाशवाणी से जुड़े सभी शुभचिंतकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज स्कूल में जो 90 वर्ष के उपलक्ष्य में प्रोग्राम हुआ, सुपर विजेता रही टीम सी को बधाई देती हूँ। ए और बी ग्रुप ने शानदार प्रदर्शन किया। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रोग्राम बहुत ही सराहनीय रहा, मैं सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहती हूँ।
9: Hello everyone, my name is Zainab Shahzad. I am an assistant teacher here at Gagan Memorial School. It's an honor to be here and to see कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं, and this Akashvani has been a great experience for us because ये experience एक ऐसी चीज़ है कि हर किसी को experience करना चाहिए। Every school should organize some kind of things and activities that you are conducting, and ये quizzes round are excellent actually. मतलब बच्चों को एक मौका मिलता है कि हाँ ये लोग सीखें, पढ़ें, समझें। तो आप लोग की जो इन्फॉर्मेशन थी, जो क्वेश्चंस थे, बहुत थ्रू थे एंड देवर इजी इनफ टू कि आप बच्चे गेस कर सकें। तो एवरीथिंग वाज रियली गुड एंड आई रियली होप कि नेक्स्ट ईयर आप लोग से फिर मुलाकात हो एंड कीप कमिंग बैक एंड कीप डूइंग योर वर्क, यू आर ग्रेट।
10: माय नेम इज प्रीतम, आई एम टीचर फ्रॉम गगन मेमोरियल स्कूल। पिछले 90 सालों में आकाशवाणी जिस तरीके से हमारे साथ न्यूज और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में जो प्रचार किया है वो काफ़ी अद्वितीय है और आज का ये जो क्विज कंपटीशन था इससे हम लोगों को काफ़ी प्रेरणा भी मिली, बच्चे भी

0: काफी खुश रहे, बच्चों को भी काफी कुछ सीखने का मौका मिला। थैंक यू आकाशवाणी।
1: और श्रोताओं, अगर आप भी आकाशवाणी वाराणसी के किसी भी कार्यक्रम या फिर क्विज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी महमूदगंज वाराणसी। श्रोताओं, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है youth_AIR वाराणसी या फिर AIR_वाराणसी।
2: आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ थी मैं जयशालिनी
1: और मैं सौरभ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।
3: दोस्तों, फटाफट रेडी हो जाइए कॉपी और कलम लेकर, क्योंकि अब बारी आ गई है शब्दों के ज्ञान को बढ़ाने की और जानने की कि क्या है हमारे आज के नए शब्द। तो आज का हमारा हिंदी का शब्द है अधिनिर्णय, जिसका मतलब होता है पंच, न्यायाधीश, मध्यस्थ या किसी अधिकृत पदाधिकारी द्वारा कानूनी तौर पर दिया गया अंतिम फैसला। और अगर आप इस शब्द से वाक्य प्रयोग करना चाहते हैं तो इस प्रकार कर सकते हैं। लंबी बहस और सबूतों को देखने के बाद न्यायाधीश ने अपना अंतिम अधिनिर्णय सुना दिया।
4: और इसी के साथ आज का हमारा अंग्रेजी का शब्द है nefarious, which means describes an action, activity or a person that is extremely wicked, villainous or criminal. It refers to a deeply immoral behavior, often done secretly. और आप इस शब्द में सेंटेंस फॉर्मेशन इस प्रकार कर सकते हैं। द हैकर्स डिवाइज्ड अ नेफेरियस प्लान टू स्टील द बैंक्स यूजर डेटा। और इसी के साथ दोस्तों, जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतज़ार, वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की।
3: बिल्कुल, लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कि हमने आपसे कल क्या पूछा था और उसका सही जवाब देकर विनर्स कौन बने हैं।
4: तो हमारा कल का क्वेश्चन था, आकाशवाणी का सिग्नेचर ट्यून किसने कंपोज किया था, और इसका सही जवाब था वॉल्टर कॉफमैन।
3: और इसका सही जवाब देकर जो विनर्स बने हैं उनके नाम है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुमबाई और सुरज कुमार ढाक से।
4: हाँ, और ग्राम खोंगवा से, तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वैदिका वंश, निकेश, धर्मेंद्र मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा।
3: वहीं रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से हैं सूरज वर्मा, धीरज, शिवम, चिंता वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा। वहीं प्रवीर चौहान खरगोव मध्य प्रदेश से हैं, मुकेश प्रजापति सिग्रा वाराणसी है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। इसी तरह हमारे क्वेश्चंस का जवाब देते रहिए और विनर्स बनते रहिए।
4: और साथ ही, और आज का हमारा क्वेश्चन आपसे है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है।
3: मैं क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर दे रही हूँ। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, और इसका सही जवाब आप हमारी इंस्टा आईडी youthairvaranasi पर या हमारी मेल आईडी youthairvns@gmail.com पर भेज सकते हैं।
4: तो दोस्तों, हमारा इतिहास सिर्फ घटनाओं की एक सूची नहीं होती जिसे सिर्फ जाना जाए या पढ़ा जाए, यह हमारे आने वाले भविष्य की नींव भी होती है। इसीलिए इसे जानना, समझना और उससे सीख भी लेना जरूरी होता है।
3: इसीलिए तो हम हर रोज कोई न कोई इतिहास से जुड़ी जानकारी आपको जरूर देते हैं। तो आज ही के दिन 1607 में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने वर्जीनिया के जेम्स टाउन में अमेरिका की पहली स्थायी अंग्रेजी बस्ती स्थापित की थी।
4: और साल 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी शांभाजी महाराज का जन्म हुआ था, और 1908 में पहली बार किसी व्यक्ति ने यात्री के रूप में हवाई जहाज में उड़ान भरी थी। और अब वक्त हो गया है आपके मन पसंदीदा सेगमेंट का, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, रोजगार सूचना का।
3: तो दोस्तों, आज की रोजगार सूचना में ये है कि रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि RRB ने असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP के 11,127 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 मई से शुरू हो गई है और आवेदन की आखिरी तारीख है 14 जून 2026।
4: और आयु सीमा की बात करें तो आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है, जो 1 जुलाई 2026 तक मान्य होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.government.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
3: और दोस्तों, फिलहाल वक्त है मेरी पसंद के सेगमेंट में, ये मेरी पसंद का गीत सुनने का।

0: दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफर की जो हमारे देश के अल्पसंख्यक समुदायों के हुनर को नई उड़ान दे रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम और उसके सबसे मजबूत स्तंभ पीएम विकास यानी प्रधानमंत्री विरासत का सर्वधन योजना की।
1: हमारा देश विविधताओं का देश है। यहाँ हर कोने में एक से बढ़कर एक हुनरमंद कारीगर और शिल्पकार बसते हैं, लेकिन कई बार सही मंच और ट्रेनिंग न मिलने के कारण यह हुनर कहीं पीछे छूट जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय लेकर आया है पीएम विकास योजना। यह सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि देश के 6 अल्पसंख्यक समुदाय जो कि हैं मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समाज के युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक महान अभियान है।
0: अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है, तो आपको बता दें कि सरकार ने 5 पुरानी योजनाएं, उस्ताद, हमारी धरोहर, सीखो और कमाओ, नई मंजिल और नई रोशनी को एक साथ मिलाकर इस नई योजना का रूप दिया है।
1: बिल्कुल, तो ये हमारे अल्पसंख्यक समुदाय वाले जो हमारे साथी हैं उनको आगे बढ़ाने का एक अच्छा जरिया है।
0: वैसे मोनी, एक बात बताइए, आज लंच में क्या था?
1: अरे मत पूछिए, जल्दी जल्दी में बस समोसा और कोल्ड ड्रिंक लेकर काम चला है।
0: अरे बस यही तो आजकल ज्यादातर लोगों की कहानी है, पेट भर जाता है लेकिन शरीर को सही पोषण नहीं मिल पाता।
1: सही कहा, कई लोग ऑफिस, कॉलेज या काम की वजह से लंच स्किप कर देते हैं या फिर बाहर का जंक फूड खा लेते हैं।
0: जबकि दोपहर का खाना हमारे दिन का सबसे जरूरी मील माना जाता है। अगर लंच पौष्टिक हो तो पूरे दिन शरीर में ऊर्जा बनी रहती है।
1: तो दोस्तों, अपने लंच में दाल, हरी सब्जियां, रोटी, सलाद और दही जैसे चीजें जरूर शामिल करें।
0: और हाँ, सिर्फ मोबाइल स्क्रॉल करते हुए खाना मत खाइए, खाने खाने पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए।
1: बिल्कुल, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते थे। मैं मोनी,
0: और मैं निशा,
1: स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों के कार्यक्रम यूवाणी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार, जिसे हम अपने गोरखपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। गृहमंत्री अमित शाह आज गाजियाबाद में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में हिस्सा लेने हैं। इस मौका पर अपने संबोधन में वहां के कहने की एनडीआरएफ दो दशक के कम समय में देश के 140 करोड़ लोगों का भरोसा जीत ले हवे।
1: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात।
2: ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित डिफाइनिंग 9 ईयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोग्रेस टू प्रॉस्पेरिटी उत्तर प्रदेश लीड्स अहेड कॉन्क्लेव में शामिल भेल हैं। ए मौका पर वहां के कहने की प्रदेश के अंदर अब कौनहू सेक्टर में, चाहे वो सुरक्षा हो है, रोजगार हो है, आ चाहे एग्रीकल्चर ग्रोथ, विकास का एगो नया मॉडल देखे के मिल रहा बा।
3: अब विकास केवल लखनऊ में या वाराणसी में या गोरखपुर तक सीमित नहीं है। 75 के 75 जनपदों में विकास एक साथ प्रारंभ होता है, एक साथ चलता है। बिजली अब केवल लखनऊ, प्रयागराज या किसी एक जनपद में नहीं, सभी 75 जनपदों में और सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में समान रूप से मिलती है। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काल ही लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल का पहला बैठक कैलें। इस दौरान मुख्यमंत्री मितव्ययिता, ऊर्जा संरक्षण आ उत्तरदायी कार्य संस्कृति के बढ़ावा देवे बदे महत्वपूर्ण निर्देश देने। वहां के कहने की यह समय का वैश्विक परिस्थिति के देखत ईंधन संरक्षण खाली आर्थिक जरूरत नहीं बा, बल्कि राष्ट्रीय दायित्व हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ईंधन बचत को अपील आ प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल का असर दिखाई देवे लागल बा। प्रस्तुत बाई को खास रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से प्रभावित होकर लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर राधाकृष्ण धीमन आज अपने आवास से कार्यालय तक साइकिल चलाकर पहुंचे। वहीं अयोध्या नगर निगम ने फैसला लिया कि अब सप्ताह में प्रत्येक सोमवार को महापौर, पार्षद और अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के जरिए नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे। इस बीच कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने भी सार्वजनिक परिवहन और ई वाहनों के उपयोग किए जाने और विश्वविद्यालय की बैठकों को अधिक से अधिक ऑनलाइन आयोजित करने का निर्देश दिया है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा आज नई दिल्ली में बतौलिन कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद सरकार के कई गो पहल के नाते देश में ईंधन का पुरहर स्टॉक उपलब्ध बा।
5: एशिया क्राइसिस के लगभग 75 दिन हो चुके हैं और इसके चलते हमारे क्रूड, एलपीजी और एलएनजी इंपोर्ट अफेक्ट हुए हैं, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं।
0: मौसम विभाग बिहने से मौसम

0: रहले का संभावना जतौले हो। विभाग प्रदेश के पूर्वी या पश्चिमी जिलन में बिहने से दिन के समय कहीं कहीं लूहो चलने का येलो अलर्ट जारी कैले बा। ए बीचे पछिला 36 घंटा में आंधी पानी या बिजली गिरले के घटना में प्रदेश भर से करीब 60 जने का मौत आ सैकड़न लोगिन के घाही भैले का समाचार बा। एगो रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम में भइल बदलाव के नाते होखल जन धन के हानि के देखत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीनियर अधिकारियन के साथे बैठकी कई के प्रभावित लोगिन के मुआवजा देहले का निर्देश देहले हमें। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे गायन। कलाकार होंगी शिप्रा बोस। आपकी पसंद कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 10:00। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। रात्रि 8:00 सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे चंदन दास। शाम 7:00 संस्कृत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता, विषय होगा साहित्य लालित्यम। वार्ताकार होंगे डॉक्टर संजय त्रिपाठी। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम हेलो कृषि जगत में गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं के प्रबंधन विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सिर अली। साथी किसान भाई मोहन सिंह यादव व साथी के गाए लोकगीत भी सुन सकेंगे। फिल्म संगीत के कार्यक्रम शाम 6:10 पर। शाम 7:31 पर कार्यक्रम रसरंग में और रात्रि 8:15 पर कार्यक्रम रसमाधुरी में आप सुन सकेंगे। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब सुनिए कल यानी दिनांक 15 मई 2026 दिन शुक्रवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे बांसुरी वादन। कलाकार होंगे पंडित रोनू मजुमदार। दोपहर 12:45 और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे एकल तबला वादन। कलाकार होंगे श्रुतिशील उद्धव। उर्दू कार्यक्रम का समय होगा सुबह 9:30 पर, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर कलाकार होंगी स्मृति शुक्ला और रात्रि 8:00 कलाकार होंगे अनूप जलोटा।

कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन का समय होगा रात्रि 9:30 पर, शाम 6:30 पर। कृषि जगत कार्यक्रम में सब्जियों में कीट नियंत्रण की जैविक विधि विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर संदीप कुमार, और साथ ही किसान भाई शैल बाला सरकार के गाय लोकगीत भी सुन सकेंगे। इन्हीं के गाय लोकगीत आप सुबह 9:50 पर और दिन में 1:45 पर भी सुन सकेंगे। सुबह 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में दलहनी फसलों की देखभाल विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना का समय होगा सुबह 6:10 पर। सुबह 6:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गांधी चर्चा, बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ, वाचन और प्रस्तुति होगी अरुण पांडे की। श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ आप सुनेंगे सुबह 6:40 पर। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस का समय होगा सुबह 7 बजे। व्हाट्सएप आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुबह 11 बजे। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 12 बजे। दिन में 1:15 पर महिलाओं का कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में फोन इन कार्यक्रम के साथ साथ महिलाएं गीत संगीत का भी आनंद ले सकेंगी। शाम 5:15 पर युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी में होगी आज की बात, सीने दर्पण, यूथ डायरी।

0: इतिहास में आज का दिन रोजगार सूचना और साथ ही युवा साथी गीत संगीत का भी आनंद ले सकेंगे। फिल्म संगीत के कार्यक्रमों में सुबह 8:45 पर मधुरिमा, झंकार सुबह 10:00, एक ही कलाकार दिन में 2:30 पर, रसरंग शाम 7:31 पर और रसमाधुरी का समय होगा रात्रि 8:15 पर। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत, पहले ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।

प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहला गीत है फिल्म आदमी से, आवाज मोहम्मद रफी, गीतकार शकील बदायनी और संगीतकार नौशाद।

0: राहों से।
1: हमारा अगला गीत है फिल्म वैराग से, आवाज मोहम्मद महेंद्र कपूर की, गीतकार आनंद बख्शी और संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: आरम्भः सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। वैश्विक अनिश्चिततायाः आर्थिक समाह्वानानां च मध्ये ब्रिक्सदेशाः रचनात्मिकां भूमिकां निर्वहन्तीति भारतेन दृढतया प्रतिपादितम्। श्वः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः आबुधाबी यात्रायाः समये भारत UAE देशौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धान् अग्रिमस्तरे नेतुं सज्जते स्तः। कांग्रेस दलस्य नेता VD सतीशन वर्यः केरलम् राज्यस्य मुख्यमन्त्री भविष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पंचो राम राम। सुधु भैया।
4: हाँ भैया,
3: देखा हो आज अपने कार्यक्रम में ना भाई, हमने का सजीव फोन इन लेके आए लेन जा हेलो कृषि जगत।
4: हाँ हो, और पतवार का दिन बाज
3: एकदम भैया। और आज अपने कार्यक्रम में डॉक्टर मुदस्सिर अली जी आयल हम, जे की पशु चिकित्सा अधिकारी हम चहनिया चंदौली में। और आज भैया लोग कहल जाओ कि रूबरू हो यहाँ हमनी से, डायरेक्ट बातचीत करिए अपनी पशु की समस्या के लेके। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ का फोन नंबर बता दिया जाए।
4: यहाँ का फोन नंबर हो भैया, दिखाए ध्यान दे, 0542 यहाँ का कोड हो, और 222-1050 और दूसर का नंबर हो 0542-222-1052। नंबर से भैया लोग अपने पशुओं से संबंधित अगर कोनो समस्या, जो दुधारू पशु हो, खास करके देखा गर्मी में जो है ना दूधे का कमी हो जाले है, तो ये तरह का अगर कोनो समस्या से अवगत हुआ हूँ उनके आवत हो, तो हमरे जो आज के विशेषज्ञ हुआ डॉक्टर मुदस्सर अली साहब से बातचीत कर सकना और अपने समस्या का समाधान पा सकना। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे पंचायती में बहुत बहुत स्वागत हो।
5: धन्यवाद।
4: तो हम आपसे ये जानना चाहब कि जौन हम पशु चौवा धैले है दुधारू, तो गर्मी में कुछ परेशानी आवेले कि दूध उनकर कम हो जाला, तो उनकी राह बदे कि कैसन स्थान, कैसन खान पान हुए कि

0: चाहिए, जैसे कि दूध उनका गर्मी में प्रभावित न हो।
1: जी, पशु जो पशु गर्मियों का जो मैनेजमेंट होता है, जो हमारे आज पशु हैं, आजकल के जो गर्मी टेम्परेचर जा रहा है 45 डिग्री 46 डिग्री,
0: जी
1: तो पशुओं को मैनेजमेंट करने के लिए किसान भाइयों को हमारे बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ये पशु जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इनका एक RHI होता है जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ये बहुत
0: अच्छा।
1: बढ़ जाता है। जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है और गर्मी बढ़ती है तो उसमें हाँफना शुरू हो जाता है। अमूमन पशुओं का जो टेम्परेचर होता है वो 102 तक होता है, लेकिन इस टाइम में 104 तक हो जाता
2: डॉक्टर
1: है।
2: साहब, तनि हम आपके रोकब, एगो फोन कॉल आवत है, अपनी भैयालों से देखल जा का समस्या उन लोगों का।
1: जी
2: हेलो हेलो हेलो हेलो, भैया आप
0: लगा तो
2: नाम बताएं।
1: जी जी बोलिए।
2: हेलो,
0: लगा था संपर्क ना हो पावत हो।
2: हाँ
0: हाँ,
2: लगा था कि
0: अरे आनी पानी आयल भैया, देखा कर तो तार और गड़बड़ायल हुई, यही वजह से लगा था संपर्क ना हो पावत हो।
2: अच्छा
0: हाँ तो डॉक्टर भैया बताओ तो जोन
1: जी,
0: कि
1: मैं बता रहा था कि जो पशुओं में हाँफना जो 104 डिग्री तक हो जाता है टेम्परेचर, पशु जिससे हाँफने लगता है तो उसका शरीर का पानी
0: जी,
1: लॉस हो जाता है।
0: कुछ लार भी टपका लगा
1: हाँ,
0: हुआ है।
1: लार भी टपने लगता है, पशु का जो पानी होता है शरीर का।
2: एगो फोन आवा था भैया। हेलो
0: हाँ
2: हेलो भैया, आप नाम बताएं। हेलो हेलो, लगा था कि संपर्क ना हो पाओ था सुद्धू भैया।
0: हो
2: हेलो,
0: सत्तू भैया, ये बतौली ना कि आनी पानी की वजह से कुछ दिक्कत आवत हो, मौसम भाई खराब बा, और ई मौसम पर देखा निर्भर बा, कुल तकनीकी जौन नई नई विकास बने है कुल। तो डॉक्टर भैया जौन बतावत रहना, आप हमन के
1: जी
0: बक्के
1: जी
0: चलत
1: फिर
0: रहना।
1: मैं इसमें किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि आजकल जो गर्मी के मौसम में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि पशुओं में इलेक्ट्रोलाइट की कमी जो हो जाती है हाँफने की वजह से, पानी की कमी की वजह से, उसको
0: जी
1: मेंटेन किया करें।
0: अच्छा।
1: जो पानी की मात्रा यानी सुबह दोपहर दो टाइम देते हैं उसको 3 टाइम कर दिया करें, पानी जल्दी जल्दी उसको पिलाया करें जिससे शरीर में उसका पानी मेंटेन रहे। अमूमन अगर अच्छा पशु है, 400-500 किलो का पशु है, तो उसको ये मान के चलिए कि 40 से 50 लीटर पानी
0: हाँ,
1: प्रति गर्मी के मौसम में हमको उसको दे देना चाहिए।
0: माने पशु के वजन के हिसाब से पानी का मात्रा
1: जी,
0: निर्धारित करे
1: वजन के
0: चाहिए।
1: हिसाब से पानी का मात्रा निर्धारित होता है, मौसम के हिसाब से भी होता है। अभी गर्मी में पशु ज़्यादा वाटर लॉस करेगा तो उसको ज़्यादा पानी चाहिए, तो
0: अच्छा।
1: उसका दूध उससे वो मेंटेन रहेगा, नहीं तो दूध भाग जाता है। किसान भाइयों की अक्सर शिकायत रहती है कि हमारा पशु गर्मियों में तो 2 लीटर 3 लीटर दूध प्रतिदिन कम कर देता
0: कम
1: है।
0: हो ज़्यादा।
1: इसके साथ में उनको थोड़ा ऊर्जा की भी ज़रूरत होती है जिससे वो अपना गुड़ भी दे सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रोलाइट होता है जो रेडीमेड आता है मार्केट में मिलता है, इलेक्ट्रोलाइट पानी में मिला के घोल के मिला सकते हैं, ORS का घोल, ये सब सारी अगर किसान भाई थोड़ी छोटी छोटी चीज़ करें तो
0: खाड़ या गुड़
1: इनका
0: भी मिला सकें ना।
1: बिल्कुल मिला सकते हैं।
0: अच्छा।
1: वो जितने भी उसको, जैसे हम लोग भी जो करते हैं शरबत पीते हैं, बाहर से आए शरबत पिए, तो जैसे इलेक्ट्रोलाइट है और एनर्जी को मेंटेन करते हैं, वैसे ही पशुओं में भी करना होता है। खाड़ का रस दे दिया, गुड़ दे दिया, इलेक्ट्रोलाइट दे दिया,
0: जी
1: तो
0: जी
1: इससे पशुओं की एनर्जी मेंटेन रहती है, पानी का लॉस कम हो जाता है और दूध मेंटेन रहता है।
0: डॉक्टर साहब एक बात जानना
2: डॉक्टर
0: चाहब।
2: साहब, एगो फोन आओ तो उठावल जाए। हेलो हेलो हेलो हेलो, हाँ भैया अपना नाम बताएं। हेलो
0: हाँ, तो डॉक्टर साहब जो पानी के मात्रा पर बात होता रहा रहमान का,
1: जी
0: तो एक बात आपसे जानल चाहब चुप्पे चुप्पे, कि पानी ढेर पीले से ऐसा तो ना हो कि ग्राहक कहे कि भैया पानी के जो वजह से जो हो दूध पतला आवत हो, जो हो ओकर स्तर गिर गल हो, गुणवत्ता में कमी आ गई हो, ऐसा तो ना
1: नहीं,
0: हुई
1: ऐसी
0: कि ग्राहक खराब हो जाए
1: चीज़
0: हमार।
1: नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गुणवत्ता जो आपका जो फैट डिसाइड करता है वो पानी के ऊपर डिसाइड नहीं करता कि पशु कितना पानी पी रहा है, तो उसका जो फैट होगा कम होगा या ज़्यादा होगा। तो
0: अच्छा।
1: ये पानी का अगर यह मिथ होती भी है या किसान भाई ऐसा सोचता है तो बिल्कुल नहीं है। पानी
0: अच्छा
1: एक अलग चीज़ है, वो डेली रिक्वायरमेंट है उसकी, पशुओं की, उसको चाहिए चाहिए। ठीक है, फैट का जो है उसका खान पान पर निर्भर करता है कि हम क्या खिला रहे हैं। अगर अच्छा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का राशन दे रहे हैं, हरा चारा दे रहे हैं, तो
0: हाँ
1: फैट उसका बढ़ जाता है।
0: जी
1: ठीक है, उसको मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसको हीट का इन्वायरमेंट का मैनेजमेंट कर रहे हैं।
0: हाँ।
1: ठीक है, बहुत गर्मी है उसको।
0: हेलो
1: जी
0: हेलो हेलो हेलो हेलो,

0: हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, संपर्क ना हो बहुत हो तो हम ये जानल चाहब कि जैसे इस समय इतनी प्रचंड गर्मी बा और आगे वाले दिनों में जैसे संभावना हो कि
1: जी
0: देखते हुए कि
1: जी
0: और भी गर्मी पड़ी, तो इनके आवास के व्यवस्था कैसन हो चाहिए? पक्का हो के चाहिए कि छान छप्पर हो के चाहिए या टीन शेड हो जाए? कौन तरह का आवास रहे जेमन पोष माने ढेर?
1: अगर पशु को सबसे पहली चीज़ हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो उसकी ऊंचाई होती है, जो छत की ढलान होती है, कम से कम 20 से 40 फीट रखना चाहिए।
0: ये पक्के छत के बात कर रहे
1: हाँ,
0: हो?
1: पक्के छत की बात कर रहा हूँ
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: उससे वेंटिलेशन पशुओं के जो बाड़े में होता है वो अच्छा बना रहता है और थोड़ा ठंडा हो जाता है।
0: अच्छा।
1: दूसरा, अगर कच्चा उसका बनाता है, अगर वो जैसे पुआर का वो डाल दिया या छाल डाल दिया, तो उस पर हम लोग पानी वगैरह का वो छिड़काव करके उसको ठंडा कर सकते हैं।
0: माने वो
1: तो
0: छत के ऊपर भी पुआल से
1: हाँ, उसको
0: ढक करके
1: बना
0: पानी
1: के,
0: का
1: और
0: छिड़काव
1: थोड़ा
0: करें।
1: कच्चा अगर वो रहता है तो छत वो गर्मी के लिहाज से अच्छी हो मानी जाती है।
0: अच्छा।
1: तो और अगर वो एबेस्टॉस शीट भी लगा रहा है छत पे तो भी ठीक है। टीन का छत जो होती है वो गर्म करती है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो भी बढ़ जाती है, तो बहुत गर्म हो जाता है, तो उसको किसान भाइयों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए।
0: अच्छा।
1: और बाकी अगर एबेस्टॉस शीट लगा रहा है या कच्चा भी बना रहा है
0: जी
1: तो वो भी ठीक रहता है।
0: अच्छा। ये पशु को जो आवास हो तो कितना मतलब क्षेत्रफल होवे के चाहिए एक पशु के हिसाब से, जिससे कि उसे गणना कह के लकल जा सके कि इतना पशु हमारे रखे के तो इतना बड़ा उकर बाड़ा होवे के चाहिए, ऐसा कुछ हो
1: जी
0: निर्धारण?
1: जी उसका, हाँ, उसका मानक तय होता है। अगर
0: जी
1: एक पशु है
0: हाँ
1: तो कम से कम जो है उसको 12 से 15 फीट स्क्वायर फीट हम लोग जगह लेते हैं। अगर
0: अच्छा।
1: वो मतलब एक बड़ा कर रहा है ऐसे, तो अगर डेयरी वगैरह बनाते हैं तो ओपन एरिया का भी लिया जाता है, फिर उसको कवर्ड एरिया, लेकिन 10 से 12 फीट
0: हाँ
1: स्क्वायर फीट की जगह उसको होना चाहिए एक
0: हाँ
1: पशु के हिसाब से।
0: वही हिसाब से जितना पशु उमन रखे के हो उतना बड़ा बाड़ा होकर हुए
1: जी, और जितना
0: चाहिए।
1: पशु रखना है, अगर 10 रखना है तो 10 से गुणा कर ले, 15 रखना है या 20 रखना है, वैसे वैसे तो बड़ा हो जाएगा
0: जी
1: उसका।
0: जी जी तो ये तो बात हो गई उनके पानी की व्यवस्था का, कि पानी की ज़्यादा आवश्यकता है इस समय मौसम में पड़े ले। खाए में उनकर का तब्दीली होएक चाहिए? गर्मी के मौसम में का देवे के चाहिए?
1: खाने में देखिए, खाने का पशु का जो मैनेजमेंट है उसके दूध पे, अगर कितना लीटर का दूध वाला पशु है आपका, अगर 10 लीटर का है, 15 लीटर का है, तो अमूमन
0: डॉक्टर साहब लगा था एक फोन आवा था कि
1: जी।
0: को श्रोता भैया का। हेलो हेलो हेलो। संपर्क ना हो पता डॉक्टर साहब। हाँ
1: जी
0: बताओ।
1: तो
0: जी
1: जो पशुओं का चारा मैनेजमेंट है, इसको प्रतिदिन जो है उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ये किसान भाई इसमें बड़ा चूक कर जाते हैं। तो किसान भाइयों को ये देखना चाहिए कि पशु को जो बैलेंस डाइट हो, जिसे हम बोलते हैं कि उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर, जैसे जो भूसा है, तो अब जो कार्बोहाइड्रेट वाली चारा है उसको, जैसे हरा चारा हम दे रहे हैं उसको, हरे चारे में जो है आज के मौसम में अगर चरी बोए हैं तो चरी दीजिए, कुछ घास दीजिए, नहीं है तो आजकल कुछ गुणवत्ता के ग्रास आ रही है, नेपियर ग्रास वगैरह आ रही है, उसको भी हम हरे चारे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जो साल भर कटान ले सकता है। फिर
0: अच्छा।
1: उसके बाद में अगर प्रोटीन की डाइट है तो उसमें खली वगैरह मिलाए, ठीक। फिर उसके बाद फाइबर के लिए हम भूसा देते हैं, तो ये तीनों चीज़ का मिश्रण मिलाकर उसको दे। तो हरा चारा क्योंकि गर्मियों में कम हो जाता है, लेकिन किसान भाई इसको मेंटेन करेगा, कोशिश करें कुछ ना हो तो, जो मैं नेपियर ग्रास बता रहा हूँ, सरकार का बहुत जोर है और बहुत अच्छी होती है, हम लोग भी इसको गौशाला के लिए प्रमोट करते हैं और खिलाते हैं,
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: दूध की गुणवत्ता कम नहीं होती है। तो इसको बनाने के लिए एक पशु है तो उसको एक डाइट प्लान होता है कि उसको अगर एक पशु उसको लगभग 10 से 15 किलो का राशन देना है, तो उसमें इतना 5 किलो उसको हरा चारा देना है, उसको 3 किलो जो है उसका दाना देना है, और बाकी उसको भूसा देना है। ये हम
0: अच्छा।
1: निकालते हैं उसके वजन के हिसाब से, उसके दूध के हिसाब से। जैसे अगर गाय है तो एक अगर लीटर दूध, 3 लीटर दूध पर 1 किलो राशन उसको दिया जाता है,
0: अच्छा।
1: और आधा किलो उसके बॉडी मेंटेनेंस के लिए। तो उसके बाद में जितना भी लीटर दूध है आप उसका दाना निकाल लीजिए। इसी तरीके से भैंस है तो 2.5 लीटर पर 1 किलो दाना उसको दिया जाता है, ठीक है। हरा चारा भी वैसे कैलकुलेट होता है। तो किसान भाई जो निकटतम पशु चिकित्सक हो, जो भी पशु उनके पास हो, जितना दूध हो, एक डाइट प्लान बनवा लिया करें और उसके हिसाब से अपना बैलेंस डाइट अपने पशुओं को दें।
0: डॉक्टर साहब बड़ा गुणा गणित आप बतावत हुआ, इतना तो हम पढ़ ली लिख ली ना, यही वजह से लगा था कि हम महन के जो हो धंधा जो हो बहुत फायदे का नहीं रहा, लेकिन बाकी आप जो बतावत हुआ विधि अब हम एक पालन जरूर करब,
1: जी
0: और यही हिसाब से समीकरण बैठाए के हम ओके जो हो दाना और पानी दोनों देवे। तो डॉक्टर साहब एक बात और जानल चाहब आपसे, कि ये हरा चारा जोन हो
1: जी,
0: ऐसे का दूध का गुणवत्ता पर भी असर पड़ा ला?
1: बिल्कुल पड़ता है। हरा चारा तो पशुओं के लिए, एक तो मैं आपके यहाँ से माध्यम से मिथ एक तो निकालना चाहता हूँ कि किसान भाई हमेशा सोचता है जैसे उसका बच्चा कोई गाय बच्चा दी या भैंस बच्चा

0: दी तो उसको 15-20 दिन तक हरा चारा नहीं देते।
1: जी
0: ये थोड़ा सा वो लोग, मैं भी फील्ड पे जाता रहता हूँ तो लोग कहते हैं,
1: हाँ, हमन के
0: लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
1: हाँ, हाँ।
0: स्वस्थ पशु है, आप उसको हमेशा आप हरा चारा दे सकते हो, किसी भी कंडीशन में मनाही नहीं होती है। और वक्त तक कोई उसको एसिडोसिस, उसको पेट की कोई बीमारी है, पशु चिकित्सक उसको मना कर दें कि हरा चारा कुछ दिन के लिए मत दे, वो अलग बात होती है, लेकिन कभी भी हरा चारा किसी भी स्टेज में मना नहीं होता है। उसमें गुणवत्ता, उसमें जो बैलेंस डाइट की मैंने अभी बताया, तो 5 चीज होती है, जैसे उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और उसको कुछ एंजाइम, ये सारी चीज़ें हरे चारे में उसको मिलती है। और दूसरा उसकी भूख, कुछ जो उसके पेट में माइक्रोफ्लोरा होते हैं, जो भूख वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो बढ़ जाते हैं।
1: अच्छा,
0: नहीं तो नॉर्मल जो चारा पशु आहार दे रहा है उसमें टॉक्सिन वगैरह आ जाते हैं, जो घास दे रहा है उसमें टॉक्सिन होते हैं, कुछ दिन के बाद में पशुपालक को लगता है कि उसका भैंस जो है कुछ खा नहीं रही है, तो कुछ नहीं होता, ना उसको कुछ बीमारी होती, लेकिन उसका चारा देने में ही वो टॉक्सिन उसके पेट में ज़्यादा हो जाते हैं, जिसका उसकी भूख कम हो जाती है।
1: जी जी
0: लेकिन हरा चारा अगर वो देता रह रहा है तो ये दिक्कतें उसकी नहीं आती हैं। तो किसान भाइयों को हमेशा अपने चारे में हरा चारा मिला देना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, टॉक्सिन का आप बात कहना, तो टॉक्सिन कम करे बदे के का पुआल वगैरह के कोनो कुछ शोधित वगैरह करके, जैसे कहीं कहीं पुआल का भी लोग खियावो ना,
0: तो देखिए हम लोग के अच्छा? हम लोग जो रिकमेंड करते हैं, हम लोग तो धान गेहूं का भूसा ज़्यादा अच्छा मानते हैं। पुआल का भूसा में कुछ टॉक्सिन ज़्यादा होती है और अच्छा नहीं होता है, तो हम लोग से कोई अगर सलाह लेता है तो हम हमेशा कहते हैं कि गेहूं का भूसा ही देना चाहिए। कभी नहीं मिले अगर किसी टाइम, जैसे ठंडी वगैरह में जब नहीं कटान होती है, उसके नहीं होता किसान भाइयों के पास, तो अलग बात है, लेकिन अगर अवेलेबल है तो गेहूं का भूसा ही देना चाहिए।
1: गेहूं के भूसा के कुछ प्रोसेस करके दे,
0: प्रोसेस करके उसको यूरिया ट्रीटमेंट करते हैं, उसको प्रोसेस कर देते हैं, जिससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है।
1: कैसे करें? ओके,
0: उसको यूरिया के साथ में 1% यूरिया लेके, जितना अच्छा। भी भूसा है उसको पॉलीथीन में रैप करके 21 दिन तक रख दिया जाता है।
1: 21 दिन
0: तक में वो थोड़ा अंदर
1: धूप में रखें कि छाए में?
0: उसको छाए में रखा जाता है, पैक कर दिया जाता है। तो रेडीमेड पॉलीथीन वगैरह भी आ रही है, कुछ रिलायंस वालों की और कुछ कंपनियों के बना के वो रेडीमेड दे रहे हैं कि उसमें आप रख के और उसमें अब 1% उसमें लिखा होता है कि इतने क्वांटिटी में इतना यूरिया मिला के आप इतने दिन के लिए, 21 दिन के लिए रख दीजिए पैक, और फिर उसको तैयार करके निकाल लीजिए। अच्छा। तो उसकी उसकी वैल्यू बढ़ जाए, जैसे उसका प्रोटीन बढ़ जाएगा।
1: हाँ।
0: उसमें जहाँ पे कम मिल रहा है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, प्रोटीन बिल्कुल नहीं होता भूसे में, ये फाइबर के लिए खाली यूज होता है, उसका पेट भरने के लिए भूसा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम यूरिया ट्रीटेड कर देते हैं तो थोड़ा सा उसका DCP बढ़ जाता है, प्रोटीन वैल्यू बढ़ जाती है भूसे की।
1: जी जी, जो आप मिनरल का भी बात कहना, तो मिनरल में का चीज़ देवे चाहिए होने अलग से, कितना कितना?
0: मिनरल तो ऐसे अगर किसान भाई देता है तो मिनरल के पैकेट भी आते हैं,
1: अच्छा,
0: बना बनाया बना। हाँ, और हम लोग के यहाँ उसको कुछ कॉपर सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम ऑक्साइड, ये सब वगैरह मिलता है, तो हम लोग बना के किसान भाइयों को दे देते हैं कि एक पुड़िया में बना के उसको 1 किलो के हिसाब से दे दिए, तो अगर
1: चारा में मिला के दे,
0: तो चारा में मिला के जैसे चोकर में मिला दिया उसको, और 50-50 ग्राम उसको मिनरल बहुत थोड़ी जरूरत होती है बॉडी में,
1: अच्छा,
0: लेकिन जरूरत बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उसको डेवलपमेंट के लिए और दूध मेंटेन करने के लिए वो बहुत जरूरत होती है। क्योंकि हम लोग जो चारा देते हैं गाय को या भैंस को, वो एक ही चारा रोज दिया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा हम लोग नहीं दे पाते, जैसे हम लोग जो बता रहे हैं मिनरल्स है या विटामिन है, तो इसको देने के लिए हमको अलग से उसको कुछ ना कुछ देना ही है, जिससे उसकी इनफर्टिलिटी है यानी बांझपन वगैरह की शिकायत जल्दी ना आने पाए।
2: भैया एगो फोन आवत है, तनी उठावल जाए। हेलो
3: भैया।
2: हाँ भैया, आपका नाम बताएं, के बोला था?
3: भैया हम देवरिया से बोला थे, नीरज।
2: अच्छा, हाँ नीरज जी, क्या समस्या है अपने यहाँ?
3: भैया हमारी गाय है लेकिन दूध होकर कम हो जाता।
2: अच्छा डॉक्टर,
0: जी जी मैं सुन रहा
3: हूँ। एक आध दो दिन दे, एक आध दो दिन बंद हो जाएगा दूध होकर।
0: तो दूध बंद, जैसे बाकी सब कुछ ठीक है, सब खाना पीना सब सही है?
2: गाभिन है आप, आपके गैया
3: ना? भैया गाभिन तो ना। अच्छा। ओके, नूनवा भी लाके नादे में सान के दे दी जाला कि दूध दे, लेकिन एक दो दिन दे ले के बाद से फिर
0: उसके जो बाली है उसका वो बंद हो जाता है, जो जहाँ से दूध निकाल रहा है वहाँ से ब्लॉक हो जाता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ऐसा आपका नीरज जी, ऐसा है कि जो आपकी समस्या है ये इसको बोलते हैं टीट स्टेनोसिस, ठीक है, ये टेक्निकल वर्ड में होता है, इसके ब्लॉक हो जाता है वहाँ पे, तो कुछ दवाएं मैं बोल रहा हूँ आप इसको नोट कर लीजिए, और इसका छोटा सा एक अगर जो आपके पशु चिकित्सक होंगे वो थोड़ा छोटा सा ऑपरेशन भी करके इसको निकाल देते हैं, वो फाइब्रोसिस कर जाता है, हल्का सा मांस होता है उसको काट के बाहर निकाल दिया जाता है, और एक ट्यूब

0: लिख लीजिए, पेंडिस्टिन एसएच करके आती है, उसको आप थन के अंदर डाल दीजिए तो वो भी गला देगी। और सोडियम साइट्रेट एक साल्ट आता है, किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाके उसमें कंपनी का नाम आप पूछ लीजिए, अलग अलग होता है, लेकिन मैं साल्ट बता रहा हूँ, सोडियम साइट्रेट, उसको आप 50 ग्राम तक उसको डेली उसको खिलवा दीजिए, आपका पशु ठीक हो जाएगा। कब
1: तो
0: ठीक
1: डॉक्टर साहब, हमारे को बातचीत चलत रहा खनी लवण पर
0: जी?
1: जी, तो बताओत रहना आपकी कुछ जोन हो।
0: हाँ, तो पशुओं में जो जो बाँझपन की शिकायत होती है, हम उसको, क्योंकि किसान भाई क्या है कि जब वो हमारा पशु गाभिन हो जाता है तभी वो सोचता है कि अच्छा अब ये तैयार हो गया, अब इसको बढ़िया देना है।
1: जी जी
0: तो हम
1: जी
0: सबसे मेन टाइम पे जो उसको 1.5 साल तक में, यानी जो हमारा देसी जो नस्ल है वो 2 साल में तैयार होती है, जर्सी वगैरह हमारी 1.5 साल में तैयार हो जाती है, उस वक्त हम उसको मिनरल नहीं देते हैं, तो उससे जो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जैसे नांग वगैरह है वो थोड़ा सा कम डेवलप हो पाता है। तो उसके वजह से फिर किसान भाइयों का जो पीरियड होता है हीट आने में और कंसीव करने में वो बढ़ जाता है,
1: जी
0: वो उसको
1: जी
0: समझ नहीं पाता, वो 1 साल भी बढ़ गया तो 1 साल का हमारा खिलाना पिलाना ज़्यादा हो गया।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: इसको समय से लाने के लिए उसको शुरू से ही मिनरल मिक्सचर वगैरह अगर दिया जाए तो ये समस्या समय से गर्म होती है और समय से टिकाई होती है उसकी, कि उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिल्कुल बढ़िया डेवलप हो जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि इस समय कहीं कहीं देखे में आवला कि नमक ढोका भी रख देना लोग पशु के आसपास में, तो जैसे उस समय समय पर वो चाटत रह लेते, का ये उचित हो?
0: बिल्कुल उचित है।
1: अच्छा।
0: नमक बहुत, नमक में आपका सोडियम क्लोराइड है, ये भी एक मिनरल है और ये बहुत ज़रूरी है आपका हीट लॉस के लिए। आज के गर्मी के मौसम में तो उसको देना ही देना चाहिए।
1: अच्छा।
0: ऐसे भी जो भी हम बैलेंस डाइट की मैंने बात की थी, अगर हम उसको एक चारा बनाते हैं उसको रेशियो, तो हम लोग 1% उसमें नमक भी डालते हैं उसके बैलेंस डाइट में।
1: अच्छा
0: तो अगर वो मिनरल मिक्सचर खिला रहा है तब भी हो सकता है, अगर नहीं दे पा रहा है तो अलग से दे दे उसको, या
1: अच्छा
0: उसका एक ढोका लगा के
1: हाँ
0: उसको रख दे, वो अपना चाटती रहेगी तब भी उसको पहुँचता रहेगा
1: अपनी ज़रूरत के हिसाब से।
0: अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अगर नहीं दे रहा है तो कुछ जो खड़ा नमक आता है इस
1: हाँ
0: टाइप से सूखा हुआ, उसके
1: जी
0: चारे में पीस के डाल दे।
1: अच्छा, उचित तरीका का होकर।
0: अच्छा ये है कि थोड़ा चाटती है पशु तो उसका डाइजेशन जो है थोड़ा बढ़ जाता है, तो लोग क्या होता है उसको शीरे में डिप करके उसको रख देते हैं, तो पशु बैठे बैठे और मिट्टी चाटना वगैरह भी उसका छूट जाता है। तो अच्छा तरीका यही है कि उसको एक ब्रिक बना के, एक ईंट के बना के उसको शीरे वगैरह में, उसको मोलेजेस बोलते हैं हम लोग, डुबा के डिप करके पशु के सामने रख दिया जाए।
1: अच्छा। डॉक्टर साहब, ये तो खान पान का बात हो गई, आहार विहार उनकर। अब एक बात और जानना चाहब कि ये मौसम में कौन ऐसा रोग होने जो उन्हें प्रभावित करना, और जैसे कि दूध प्रभावित हो जाला, कम हो जाला, और का एक बदे कोनो टीका वगैरह भी उपलब्ध हो, लगवावल जाला तक अलग नहीं?
0: अब देखिए गर्मी है, अब जून के बाद से बारिश का मौसम स्टार्ट होगा, तो हमारी एक बहुत पुरानी बीमारी है, लोग सब किसान भाई जानते हैं
2: डॉक्टर साहब,
0: जी।
2: एगो फोन आओ था, उनसे पूछल जाए का समस्या। हेलो हेलो, हाँ भैया अपन नाम बताएं, के बोलो था? अरे हाँ श्रवण भैया, बताएं क्या समस्या है आपके यहाँ?
3: भैया कायदे से खाद की अपना गाभी में छाप लेकर
2: हाँ
3: कि काई से नहीं कि दूध बढ़िया दे।
2: अच्छा, मतलब कि गाभी नहीं, 6 महीना
0: जी
2: का
0: जी
2: गाभी नहीं डॉक्टर साहब?
0: जी।
2: आ इका खियाओ उसकी बच्चा दिया के बाद बढ़िया इनका दूध दे।
0: अच्छा, अभी आपने उसका दूध छुड़वा दिया है कि अभी दूध ले रहे हैं उससे?
3: अभी 6 महीना गाभी डॉक्टर साहब दूध नहीं दे रहा है।
0: अच्छा, अभी दूध नहीं दे रहा, पहली बार है?
3: तो उसको जिसे कायसन क्या और क्या जाएगी, मतलब दूध अच्छा दे जब
0: ठीक
3: बच्चा दे तो।
0: ठीक है ठीक है ठीक, बता
2: डॉक्टर साहब
0: जी,
2: इनकर समस्या का निदान करी
0: जी। ऐसा है देखिए, जो पशु 6 से 9 महीने में जब गाभिन के स्टेज में पहुंच जाता है तो उसका थन का विकास इसी अवस्था में होता है, तो इसमें इसको विटामिन ए और विटामिन एच की बहुत ज़रूरत होती है, विटामिन ए, विटामिन D3 और एच। तो इसकी कंपनियां आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाके पूछ लेंगे, रेडीमेड कई चीज़ें मिलती हैं, आप पता करके उससे आप ले कर रोज़ 20 ml उसको रोज़ डेली दीजिए, जिससे उसका थन का विकास हो जाए और उसकी भूख भी यह बढ़ती है। लीवर टॉनिक अब आती है, बहुत से लीवर टॉनिक लीवर का भी दे सकते हैं, क्योंकि स्टेज में थोड़ा सा एनिमल का, क्योंकि फीटस का वेट बढ़ जाता है तो भूख वगैरह थोड़ा कम हो जाती है पशुओं में, थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, तो लीवर के लिए आप जो है जो भी मार्केट में आप पता करके ले सकते हैं। और विटामिन A, D3 और एच, इसका जो भी कंपनी से नाम है उसको 20 ml आप प्रतिदिन दीजिए, आपकी समस्या का निदान हो जाएगा।
1: तो देखा सत्तू भैया, डॉक्टर साहब देखा इनके समस्या का निदान तो कह देना। और डॉक्टर साहब बात कही चलत रहा है कि जो पशु हुआ उनके जो टीका लगाओ वाली बात होगी, कौन कौन रोग का टीका है
0: जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि अभी मई का समय चल रहा है, इसके बाद जून आएगा, जून हमारा 15-20 जून के बाद से बारिश।
2: एक और ही फोन आओ था, हम तनी आपका रोकल चाहब। तो

0: भैया से बतिया लिया जाए कि इनकर का समस्या है। हेलो हेलो, हाँ भैया, के बोलो था, अपना नाम बताएं।
1: भैया सोनभद्र से बोलो थी मंगरू।
0: अरे हाँ मंगरू भैया, बताएं, या सोनभद्र से बोलते हैं,
1: हाँ भैया,
0: का समस्या है अपने यहाँ?
1: भैया गर्मी के मौसम में जितना दुधारू पशु होलन ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा रखा दूध वगैरह पे, या क्या

0: मैं अभी आपका समस्या का निदान बताता हूँ। ठीक, जैसे कि मंगरू भैया आपका जो बात है डेयरी है 10 फीट, अभी मैंने शुरू में ही बताया था कि कम से कम 20 से 40 फीट का अगर होता है तो
1: जी जी
0: वेंटिलेशन अच्छा हो जाता है। जैसे इन्होंने बताया 10 फीट है, तो जाहिर तो बात है कि इससे वेंटिलेशन नहीं है और गर्मी के टाइम ही ह्यूमिडिटी बढ़ जाती होगी, तो जिससे इनका वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होगा पशुओं में डेयरी में। और जाहिर तो बात है जब वाटर लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो इनका दूध कम हो जाता है। तो आप अभी छत के ऊपर तो काम थोड़ा सा कम करिए कि वो छत को ऊपर उठा के 10 फीट कर सके तो बहुत अच्छा होगा।
1: जी
0: उसके अलावा अभी इमिडिएटली करने के लिए तो आप उसको पानी बढ़ाइए, दो तीन टाइम करिए, इलेक्ट्रोलाइट मिलाइए उसमें, जो भी कई इलेक्ट्रोलाइट आते हैं मार्केट से, ORH हम लोग के भी आदमी वाले भी होते हैं, उसको भी मिला के पानी में आप दे सकते हैं। और विटामिन ADH3H का एक सीरप आता है, उसको लेके 20-20 ML सारे पशुओं को दीजिए, तो आपका फौरी बहुत जल्दी असर दिखाई देगा, दूध में इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। इतना करिए, फिर अगर आगे होगा तो यहाँ नंबर है या संपर्क कर लीजिएगा,
1: जी
0: निकटतम जो आपके पशु चिकित्सक हो उनसे बात कर लीजिएगा।
1: हाँ, तो डॉक्टर
2: डॉक्टर
1: टीका वाली बात करते रहना, हाँ बताओ।
0: जी टीका तो अब जो जून का महीना आएगा बारिश का, उससे हमारा 15 दिन पहले गलाघोंटू का टीका लगता है,
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: ये स्टार्ट होगा। हम किसान भाइयों से कहेंगे, हालांकि हम किसान भाइयों की मेहनत बहुत अच्छी थी और हमारे सरकार की लगातार टीकाकरण की वजह से अब हम गलाघोंटू बहुत कम कर दिए हो गए हैं।
1: अच्छा
0: बहुत आपको कम सुनाई देता होगा, लगभग हमने 90% इस बीमारियों को हटा दिया है, बस 10% ही सुनाई देता है, और आने वाले 5-10 साल में हमको लगता है ये इरिटिकेट कर जाएगी।
1: तो ये टीकाकरण का अब ही लगवा सकल ना?
0: अभी नहीं, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, टीका थोड़ा सा जैसे
1: अच्छा
0: फीवर
1: मौसम
0: लाता है, तो इतने गर्मी में टीका इसलिए हम लोग अभी ये नहीं लगाते हैं। ये सरकार के भी कोई प्लानिंग नहीं आती है, ये हमारा जून में स्टार्ट हो जाएगा बारिश से पहले,
1: अच्छा अच्छा
0: तब किसान भाई भी अलर्ट रहें और जब टीम जाया करेगी तो ये टीका लगवाएं गलाघोंटू का।
1: अच्छा एकरे अलावा और कोनो समस्या जो गर्मी के समय में होत हुए पशुओं के?
0: सबसे बड़ी समस्या तो हाँफने की ही रहती है, जो सारे अभी जैसे इन्होंने भी बताया कि हमारा दूध कम हो रहा है, जो हाँफता है पशु दूध कम होता है, तो दूध कम होने के लिए हम किसान भाई से कहेंगे कि उसके एनर्जी ऊर्जा का स्रोत को मेंटेन रखें, जैसे उसको गुड़ वगैरह दें, ठीक है खाड़ दें, ठीक है, और थोड़ा अगर हरा चारा वगैरह क्योंकि नहीं मिल पाता अभी गर्मी का समय है, तो एक घास आती है बहुत अच्छी है, ये बाजरा से क्रॉस करके किया गया है और पूरे साल भर लगती है, हम लोगों ने लगाया है बहुत, उसका खिलाया भी है तो बरसीम से कम नहीं आता है, उसको नेपियर NB ग्रास कहा जाता है,
1: अच्छा
0: उसकी वैरायटी होती है ये यहाँ पे आपके वाराणसी में अराजी लाइन में एक सेंटर है, वहाँ पे जड़ मिल जाती है, तो वहाँ से भी किसान भाई लाए मात्र 2 रुपए में वो जड़ देते हैं, तो अगर आप ला के 100 जड़ भी लगा देंगे तो अपने आप वो फैलने लगती है। और
3: डॉक्टर साहब एगो हमारो प्रश्न रहा कि देखे में आवला कि इस समय गर्मी का समय है और खेत वगैरह सब कट गई रहेला, तो किसान भैया लोग क्या करें ना कि अपन पशु छोड़ देना चरे बदे, चाहे वो दोपहर होखो सुबह होखो शाम होखो, तो हमके ई जाने के रहा कि का दोपहर में भी लोग जोन खोल के ओके चरावे ना, तो का ई सही चीज है कि का सुबह सुबह शाम का ही उन लोगों के ध्यान रखे के चाहे या सुबह शाम ही अपने पशु चौबा के गर्मी के समय में खोले के चाहे बाहर?
0: नहीं, अगर इस वक्त गर्मी में तो सुबह और शाम करना चाहिए, दोपहर का टेम्परेचर 45 डिग्री तक जा रहा है इस वक्त, तो इतने गर्मी में फिर अगर उसको हीट वेव लग जाएगी, हीट स्ट्रोक लग जाता है, तो पशुओं का टेम्परेचर 106-107 जाता है, और कभी कभी ब्रेन स्ट्रोक की वजह से आकस्मिक डेथ भी हो जाती है, तो पशुओं को ख्याल रखते हुए और टेम्परेचर वगैरह का सुबह और शाम में हो पशुओं को चराना चाहिए।
1: जैसे भाई सापन है तो उन्हें तो जो उन्हों की तालाब वगैरह में
0: जी जी
1: नहाए का आदत रहे, तो इस समय क्या करना चाहिए, नहावक चाहिए कि नहीं?
0: बिल्कुल नहलाना चाहिए।
1: अच्छा।
0: भैंस का ये एक जो तालाब में नहाती है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है उससे,
1: अच्छा
0: तो ये उनके लिए बहुत अपने आप को रिकवर करने के लिए हेल्थ करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो किसान भाई नदी हो नदी में ले जाए, जो तालाब हो पोखरा हो, नहीं होता है तो लोग उसको थोड़ा सा खुदवा देते हैं अपने घर के आंगन में ही, और उसको दलदली मिट्टी करके पानी डाल के उसी में ही उसको बेलोइंग के उसको बोलते हैं उसको करवा के भैंस को छोड़ देते हैं, तो ये भैंसों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि भैंस की चमड़ी मोटी होती है और काले रंग की होती है, इसलिए इनको जो है गर्मी ज्यादा लगती है।
1: सत्तू भैया,
3: हाँ भैया,
1: भैया डॉक्टर मुदस्सर अली भैया दिखाए, इतनी अच्छी जानकारी देना और समस्या जो फोन आया उनको समाधान भी कहना है ना, तो हम कहे कि अब कार्यक्रम का समय भी हो तो
3: भाई
1: डॉक्टर भैया के धन्यवाद देता।
3: बिल्कुल धन्यवाद दिल जाए, तो डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सर अली जी आप हम लोग के कार्यक्रम कृषि जगत में आनी है एक बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए मुझे।
1: हाँ दिलीप यादव भैया,
3: हाँ
1: है ना,
3: और हम सत्तू भैया और आप सुद्धू भैया, अब चलो हम अपने किसान भैया से विदा लिया जाए।
1: हाँ, अगले कार्यक्रम में फिर भेंट हुई।

0: अनेन प्रकारेण प्राचीन काव्यात् अर्वाचीन काव्य पर्यंतम साहित्य लालित्य सिद्धि भवति इति शम।
1: अभी आप संस्कृत कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता सुन रहे थे। विषय था साहित्य लालित्यम। वार्ताकार थे डॉक्टर संजय त्रिपाठी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। थाना भीलपुर कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार गोल्डी कुमारी सुपुत्री अखिलेश दुबे जो गली नंबर 15 मकान नंबर 1030 यानी मकान नंबर 1030 पटियाला पंजाब की निवासिनी है। ये दिनांक 25 फरवरी

2025 से लापता हैं। गोल्डी कुमारी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 20 वर्ष, कद 5 फीट 8 इंच, रंग गोरा, आंखें काली, चेहरा सामान्य, काले बाल हैं। ये लापता होने के समय सफ़ेद सलवार सूट पहनी थी। गोल्डी कुमारी के बारे में जिस किसी सज्जन को जानकारी हो, कृपया वो अपने निकटवर्ती थाने या थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार, थाना लालपुर पांडेपुर कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना अनुसार, सोनम चौरसिया सुपुत्री कल्लू चौरसिया, जो मकान नंबर S9/166A नई बस्ती पांडेपुर थाना लालपुर वाराणसी की निवासिनी हैं। सोनम चौरसिया के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र लगभग 21 वर्ष, रंग गेहुआ, लंबाई 5 फुट, जो हिंदी भाषा जानती हैं। सोनम चौरसिया के बारे में जिस किसी सज्जन को जानकारी हो, कृपया वो अपने नज़दीकी थाने पर या थाना लालपुर पांडेपुर कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करने की कृपा करें। थाना दशाश्वमेध कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, चंद्रकला देवी ठाकुर पत्नी जगदीश ठाकुर, जो कमला नगर पालिका वार्ड नंबर 1 मगरहा धनुषा जनकपुर जनकपुर धाम नेपाल की निवासिनी हैं। ये 11 फरवरी सन 2025 दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे गंगा स्नान के बाद गौदौलिया वाराणसी के पास से लापता हैं। चंद्रकला देवी ठाकुर के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र लगभग 60 वर्ष, रंग सांवला, लंबाई 5 फुट 2 इंच, चेहरा हल्का गोल है, काले हल्के सफ़ेद बाल हैं। ये हिंदी और नेपाली भाषाएं जानती हैं। चंद्रकला देवी ठाकुर के बारे में जिस किसी सज्जन को जानकारी हो, वो कृपया अपने निकटवर्ती थाने या थाना दशाश्वमेध कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 7:20 पर आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। हमारा अगला कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।

स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।

0: मुख्य समाचार। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत। 24 घंटे में सर्वे पूरा कर मुआवजा जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने का आह्वान। गाजियाबाद में NDRF के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 7 क्षेत्रीय रिस्पॉन्स सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और आगरा में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन। पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, पशुपालक समितियों को 1 महीने में ही भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर तत्काल सर्वे पूरा कराने का निर्देश दिया है, जिससे मुआवजा जारी किया जा सके। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने, पेड़ गिरने और बिजली के खंभे गिरने की घटनाओं से हुई हैं। इनसे बिजली आपूर्ति और सड़क तथा रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: वहीं मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जिलों में प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। चंदौली के अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व राजेश कुमार ने बताया कि नुकसान का आकलन करने के लिए संबंधित अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में तेजी से कार्य कर रहे हैं। जनहानि के प्रकरण में मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को आपदा राहत कोष से लाभ दिलाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
2: हम लोग सभी अवयवों पर, सभी कंपोनेंट्स पर काम कर रहे हैं और जो पोल इत्यादि टूटे हैं उनके मरम्मत, उनको लगवाने जाने का काम जारी है। इसके अलावा जो पेड़ इत्यादि गिरे थे उनको भी हटवाकर जो है यातायात सुचारू कराया गया है। जो मानव मृत्यु के केस हैं उनको भी नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जा रही है और इसी प्रकार जो मकान क्षति हुई है, मकान क्षति में भी नियमानुसार जो भी आर्थिक सहायता बन रही है उसको भी दिलाया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से ईंधन की बचत की अपील के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ईंधन की बचत के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, कार पूलिंग के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने 7,700 से अधिक गो आश्रय स्थलों में संरक्षित 15 लाख से अधिक गोवंश के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट आधारित सामूहिक किचन मॉडल विकसित करने की बात कही, जिससे LPG पर निर्भरता हो सके। लखनऊ में निजी मीडिया संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। हर नागरिक का दायित्व है कि वो राष्ट्र के साथ खड़ा होकर अपना योगदान दे।
3: अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए या अपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वह सुविधा है, हम उसका उपयोग करें तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं, तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने, काफिला कम करने की अपील के मद्देनजर विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने परिषद की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है। वहीं कानपुर स्थित छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में पेट्रोल डीजल वाहनों के प्रयोग पर कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने आदेश जारी किए हैं। अब विश्वविद्यालय के कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक और दूसरे अधिकारी परिसर में आधिकारिक कार्यों के लिए ई कार्ट या इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करेंगे। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय की बैठकों को अधिक से अधिक ऑनलाइन आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
4: हमने अपने स्टूडेंट्स को भी कहा है कि जो साइकिल या ई कार्ट का प्रयोग, हम लोगों ने ये भी एक नियम निकाला है कि जो लोग शहर में जा रहे हैं तो ई व्हीकल चाहिए, तो पेट्रोल बचाना।

0: मीडिया को बरकरार या विश्वविद्यालय का अपना दफ्तर।
1: इसी क्रम में अयोध्या नगर निगम ने तय किया है कि अब सप्ताह में एक दिन यानी हर सोमवार को महापौर, पार्षद और अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के जरिए नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे। इसके साथ ही महापौर का एस्कॉर्ट वाहन भी बंद कर दिया गया है। वाराणसी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल बचाओ जागरूकता अभियान चलाया। नई सड़क स्थित कोदई चौकी से इलेक्ट्रिक स्कूटी रैली निकाली गई और पेट्रोल की बचत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गाजियाबाद स्थित 8वीं एनडीआरएफ बटालियन में राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वीर जवानों को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया और 6 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई शिलान्यास और 1 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि एनडीआरएफ ने 2 दशक के कम समय में ही देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से न केवल जोखिम को न्यूनतम करने के लिए कार्य किया गया है, बल्कि प्राकृतिक आपदा को कम करके उससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
2: आज देश भर में कहीं पर भी जाते हैं, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, इस घोष वाक्य के साथ काम करते हुए एनडीआरएफ के जवानों के प्रति न केवल समग्र देश, जहां जहां दुनिया में गए वहां आपने प्यार भी अर्जित किया है और लोगों का भरोसा भी अर्जित।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में आज स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम थीम पर डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि निराश्रित गोवंश सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश की सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है और प्रदेश सरकार पशुपालक समितियों को मजबूत करते हुए 1 माह में ही भुगतान करने का काम करेगी।
3: निराश्रित गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है और इसको उत्तर प्रदेश में हम सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और भारत का हिस्सा उत्तर प्रदेश में दूध का सबसे अच्छा है। आज हम दुग्ध महोत्सव के माध्यम से पशुपालकों को, दुग्ध समितियों को मजबूत करते हुए महीने के अंदर ही हम दुग्ध उत्पादकों का भुगतान कराने का काम करेंगे और ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसमें दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी हो।
1: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का लखनऊ के बैकुंठ धाम में आज अंतिम संस्कार किया गया। उनकी पत्नी अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सपा नेता शिवपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव और सैफई परिवार के सदस्यों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि अब 17 मई कर दी गई है। परिषद के अनुसार 11 मई तक कुल प्रवेश क्षमता 271,093 सीटों के सापेक्ष 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जा चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत, 24 घंटे में सर्वे पूरा कर मुआवजा जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने का आह्वान। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और आगरा में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन, पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा पशुपालक समितियों को 1 महीने में ही भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यही आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम में पहला गीत है फिल्म वचन से, आवाजें किशोर कुमार और श्रद्धा रंजन की, गीतकार शैलेन, संगीतकार शंकर जयकिशन।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म उपासना से, आवाजें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, शब्द रचना है इंदीवर का और संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म अभिलाषा से, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे का, मजरू सुल्तानपुरी की गीत रचना और आर डी बर्मन का संगीत।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म अभिनेत्री से, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।
1: हंसो मत, बोलो।

अगला गीत है फिल्म सारे गामा से, मजरू सुल्तानपुरी का ये शब्द रचना और गणेश के संगीत में सुनिए गीत।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम रसरंग यहीं संपन्न होता है। यही आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं चंदन दास।
1: जनाब इब्राहिम अश की गजल मुलाजा फरमाइए।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं चंदन दास। चंदन दास की ही स्वर में सुनिए ये नगमा।

इसी नगमे के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज के कलाकार थे चंदन दास, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रस माधुरी, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम रस माधुरी। कार्यक्रम में पहला गीत है फिल्म एक दिल 100 अफसाने से, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, गीतकार शैलेंद्र और संगीत से सवारा है शंकर जय के संग ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म कहीं और चल से। आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म अनोखी रात से, आवाज लता मंगेशकर की और शब्द रचना है इंदीवर कैफी आजमी का और संगीत से संवारा है रोशन ने।

अगला गीत है फिल्म मेरी भाभी से, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत है। मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: अगला गीत है फिल्म मिलन से, आवाज मुकेश की, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म हकीकत से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, कैफ़ी आज़मी के बोल हैं और मदन मोहन का संगीत।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म आपकी परछाइयां से, आशा भोसले की आवाज, राजा मेहदी अली खान की शब्द रचना और मदन मोहन का संगीत।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम रस माधुरी यहीं संपन्न होता है। यही आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना

0: होंगे जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: भारत के यूएई को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
2: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल

0: बिल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
2: एन इंडियन डो
3: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
4: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
5: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाए। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
6: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
5: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए शित कुमार वैद्यान।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: वकील और न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम

0: चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमरीका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Revision Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kilogram at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance

0: राजधानी खत्ता चंडीगढ़ और दादर नागर हवेली नीज दमन और दीव शामिल हैं। SIR मरहला तीन के दौरान 3,94,000 से ज्यादा तादाद में बूथ लेवल अफसरान 36,73,00,000 वोटरान से घर घर जाकर मालूमात हासिल करेंगे। अपनी मालूमात अज खुद फराहम करने के मरहले के दौरान सियासी पार्टियों के जरिए मुकर्रर करदा 3,42,000 बूथ लेवल एजेंट उनकी मदद करेंगे। इसके साथ ही वोटर फहरिस्तों के SIR में मरहला तीन में पूरे मुल्क का अहाता किया जाएगा। इसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल नहीं है। इन तीन रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मरदमशुमारी के मरहला दो की तकमील और बालाई इलाकों या बर्फबारी वाले इलाकों में मौसम पर गौर करने के बाद इन तीनों रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए SIR के शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। वोटर फहरिस्त की नजरसानी के अमल में ये एक अहम कदम है। इसका मकसद मुल्क भर में अपडेटेड और दुरुस्त इंतखाबी फहरिस्तें तैयार करना है। केरलम में कांग्रेस कानून साथ पार्टी ने आज थिरुवनंतपुरम में मुनक़िदा मीटिंग में VD सतीशन को अपने लीडर के तौर पर बाकायदा मुंतखब किया। बताया जाता है कि पार्टी के एक और सीनियर लीडर रमेश चेनीथाला पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में मौजूद नहीं थे। मजीद तफसील थिरुवनंतपुरम के हमारे नामानिगार से।
1: केरलम में सीनियर कांग्रेस लीडर VD सतीशन ने आज शाम गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आरलेकर से मुलाकात की और उन्हें रियासत में नई सरकार तश्कील देने का अपना दावा पेश किया। इससे कबल आज नई दिल्ली में कांग्रेस की कौमी क्यादत ने कानून साज पार्टी के लीडर के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया था। 4 मई को इंतखाबी नतीज के बाद गुज़िश्ता 10 दिन से ज्यादा तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में जारी तबादले ख्याल के बाद इस फैसले का ऐलान किया गया है। तवक्को है कि हलफ बर्दारी की तकरीब पीर के रोज होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लूर्थी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीब रहमान।
0: तमिलनाडु में AIADMK के जनरल सेक्रेटरी एडापड्डी पलानी सामी ने आज रियासती गवर्नर विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और SP विलुमनी के जेर क्यादत AIADMK के अरकान कानून साज असेंबली में फूट पड़ने से मुतालिक एक उज्रदारी पेश की। साबिक वजीर आला ने गवर्नर से अपील की कि वो इस मामले को स्पीकर JCD प्रभाकर के साथ उठाएं। मामला ये है कि SP विलुमनी के जेर क्यादत धड़े में AIADMK के 25 अराकीन कानून साज असेंबली ने TV के सरकार को वोट दिया, जो कि TV के सरकार के खिलाफ वोट न देने के OC मैनियन के जरिए जारी की गई व्हिप की खिलाफ वर्जी है। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से ज्यादा अफराद जहां भाग हो गए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों और मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर से जाए वकूफ पर पहुंचकर सर्वे करें। उन्होंने उनसे ये भी कहा है कि वो हर 3 घंटे में मुआवजे की सूरत हाल के बारे में भी अपडेट फराहम करें। पेश है एक रिपोर्ट।
2: तकरीबन 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज तुंद हवा ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। पटना राजधानी समेत बहुत सी ट्रेनें पटरियों पर दरख्तों के गिरने और OHE वायर को नुकसान पहुंचने के बाइस मुख्तलिफ स्टेशनों पर रुकीं। बारिश के साथ साथ गर्दोगुबार के तूफान ने फसलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। तेज हवाओं ने मकानों की छतों को उड़ा दिया, बिजली के खंभों को उखाड़ फेंका और बड़े पैमाने पर बिजली की फराहमी में खलल डाला। बहुत बड़ी तादाद में मकानात तबाह हो गए और बड़े बड़े दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बहुत से लोग जिन्होंने दरख्तों के नीचे पनाह ली थी इस खराब मौसम का शिकार हो गए। सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों में प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, फतेहपुर और वाराणसी शामिल हैं। प्रयागराज में 21 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि भदोही में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9 अफराद, बदायूं में 5 और बरेली में 4 अफराद ने अपनी जानें गंवाईं। 200 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं और उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: ये आकाशवाणी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी हममनसब शी जिनपिंग ने आज बीजिंग में मुजाकरात किए। दोनों लीडरों ने कशीदगी के बावजूद महाज आराई के बजाय तिजारत, टेक्नोलॉजी और इलाकाई सिक्योरिटी के मामले पर तआवुन पर जोर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों लीडरों ने इत्तफाक किया कि आबनाए हुरमुज को हर हाल में खुला ही रहना चाहिए ताकि तवानाई की आजादाना आमदोरफ्त में मदद मिल सके। व्हाइट हाउस के मुताबिक जनाब ट्रंप के की सदर शी जिनपिंग से मुलाकात खुश आइंद रही। मीटिंग के बाद वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए चीन के सदर शी जिनपिंग ने महादाराई के बजाय तआवुन को फरोग देने पर जोर देते हुए कहा कि चीन और अमरीका को एक दूसरे का हरीफ नहीं एक दूसरे का शरीक होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों मुल्कों में इख्तिलाफात से ज्यादा मुश्तरक मफादात पाए जाते हैं और उन्होंने बाहमी ताल्लुकात में एक नए बाब की जरूरत को उजागर किया। अमरीका के सदर 3 रोजा दौरे पर चीन गए हुए हैं। चीन के इस दौरे पर उनके हमराह अमरीका के कुछ बड़े कारोबारी लीडरान भी हैं, जिनमें निविडा के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेस एक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक शामिल हैं। इधर अमरीकी वजीर खारजा मार्को रियूबियो ने आज चीन को मुतनब्बे किया है कि ताइवान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल एक फाश गलती होगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सदर ट्रंप और सदर जिनपिंग की मुलाकात के बाद भी ताइवान के तई अमरीका की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। मरकजी तहकीकाती ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 से मुतालिक पेपर लीक के मामले में मुबैना खिलाफ वर्जियों के सिलसिले में दो मजीद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने पिछले 24 घंटे में मुल्क भर में 14 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की। एजेंसी ने बताया कि दो मुश्तबा अफराद की पहचान अहलिया नगर के धनंजय लोखंडे और पुणे की मनीषा वाघमारे के तौर पर हुई है। CBI ने बताया कि इस सिलसिले में कल 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए तमाम 5 मुलजिमीन को दिल्ली में आज एक अदालत के सामने पेश किया गया और अदालत ने उन्हें पूछताछ की गरज से 7 दिन के लिए पुलिस हिरासत में दे दिया। दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान मुहिम का आगाज करेगी। ये मुहिम वजीर आजम की अपील के मुताबिक शुरू की जा रही है। दिल्ली सेक्रेटेरिएट में मीडिया से खिताब करते हुए वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि मुहिम के तहत लाजमी खिदमात के अलावा दिल्ली सरकार के तमाम दफ्तर हफ्ते में 2 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
3: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे। तो मेट्रो का उपयोग हर मंडे, उसे मेट्रो डे के नाम से हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे और उसका पूरा उपयोग करेंगे। ऑफिस टाइम को थोड़ा हमने सेग्रीगेट किया है ताकि सड़कों पे वाहन ट्रैफिक कम हो। हमने दिल्ली सरकार का अपना ऑफिशियल टाइमिंग है सुबह 10:30 बजे से शाम को 7 बजे तक का किया है और इसके अनुसार ही दिल्ली सरकार के सभी ऑफिस काम करेंगे।
0: एशियन सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के अजीत नारायणन ने गुजरात के गांधीनगर में आज मर्दों के 71 किलोग्राम के जुमरे में क्लीन एंड जर्क और मजमूई खेल में अपनी काबिले जिक्र कारकर्दगी की बिना पर कांसे के 2 तमगे हासिल किए हैं। एशिया के चंद बेहतरीन वेटलिफ्टरों से मुकाबला आराई करते हुए अजीत ने गैर मामूली मजबूती का मुजाहरा किया। आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सदारत में ब्रिक्स का मकसद सबकी शमूलियत वाला आलमी निजाम है। इंतखाबी कमीशन ने ऐलान किया है कि 16 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 3 इलाकों में वोटर फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी का 3रा मरहला शुरू होगा। कांग्रेस लीडर VD सतीशन ने गवर्नर से मुलाकात की और केरलम में हुकूमत की तश्कील के लिए दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बारिश, आंधी और बिजली गिरने के वाकयात में 70 अफराद हलाक हुए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी हमनसब शी जिनपिंग ने बीजिंग में मुजाकरात किए। दोनों लीडरों ने आबनाए हुरमुज खोले जाने पर जोर दिया। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
4: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, DTH DRM 1233 किलो हर्ट्स, वेब्स OTT और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30:25 हो रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन। कार्यक्रम में पहला नगमा है तलत महमूद की आवाज़ में।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम अंजुमन यहीं समाप्त होता है। आज के कलाकार थे तलत महमूद, गुलाम अली, जगजीत सिंह, भूपेंद्र सिंह और सोनू निगम। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है आपके पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम में पहला गीत है फिल्म सीमा से। मन्ना डे की आवाज, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। इस गीत के लिए फरमाइश भेजा है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। इसी गीत के लिए तिवरता डबरी पारा छत्तीसगढ़ से भेजा है महेंद्र प्रताप मरकाम, श्रीमती जया मरकाम, जागेंद्र सिंह मरकाम, गजेंद्र सिंह मरकाम, जयंती मरकाम, ममता मनीषा, सुरेंद्र मरकाम, मोहन सिंह, सहेद्रीबाई मंजू मानसी, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम। एकता कॉलोनी रोहतक से फरमाइश भेजा है सीताराम कांगड़ा, श्रीमती बबीता कांगड़ा, निखिल कांगड़ा, बबीता बोध, अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, एसआर कांगड़ा और कांगड़ा परिवार ने। जतुका किशन पुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, पिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम और चांदनी नाज ने इसी गीत के लिए अपनी फरमाइश भेजी है। तो लीजिए सुनिए अपनी प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश आई है भिलाई छत्तीसगढ़ से, मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा का। इसी गीत के लिए कच्ची सराय दालमंडी वाराणसी से मोहम्मद नसीम, मोहम्मद सैफी, मोहम्मद हसन, तबस्सुम बानो, नजिया रहनुमा, चौरहट नई बस्ती पड़ाव से रेशम अली, सिराज आलम और मोहम्मद अली सा। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से इसी गीत के लिए फरमाइश आई है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहाँ का। इसी गीत के लिए बक्सर बिहार से सफरुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और असमा नाज अंसारी, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा, सारिमपुर बक्सर से राज एस जी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी का इसी गीत के लिए मैसेज आया है, पत्र आया है। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धा नंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित, राम जी आर्य।

का इसी गीत के लिए ये पत्र आया है, तो लीजिए सुनिए ये गीत फिल्म गहरा दाग से। आवाज मोहम्मद रफी की, गीतकार शकील बदायूनी और संगीतकार रवि।

अगला पत्र आया है फिल्म दोस्ती के लिए, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मजरू सुल्तान पुरी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा इस गीत के लिए पत्र आया है। नई सड़क वाराणसी से शाहिद सद्दू, मलका मुमताज, इंशा इली तारिक, धरसीवा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा अल्पना यादव, दुर्गापारा रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग अभिषेक, अलका अनामिका, बलदाऊ यादव, रानू खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव का, चांडूर बिस्वा तालुका नांदुरा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से पत्र आया है। नारायण भाऊ खड़से, रक्षाताई खड़से, ललिता संजना खड़से, गणेश और कार्तिक खड़से, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी का, छत्तीसगढ़ देवरी से के आर साहू, भाटापारा से हिमकेश्वर, लिवई से गुलाब दास और लेवाखेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से नारायण भाऊ विठल राव खर्चे, ललिता रानी खर्चे।

अगला पत्र आया है भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा और ललिता का। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा का। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रितिका मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज व साहिल का। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय दुबिहा। नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय का इस गीत के लिए पत्र आया है। फिल्म दो रास्ते का मुकेश की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में। लीजिए सुनिए आप अपना ये प्यारा सा गीत।

अगला पत्र है तकिया मढ़िया हूँ जौनपुर से, जमील अहमद शाह, मोहम्मद अल्तमश शाह, मोहम्मद दानिश शाह, मोहम्मद साजिद शाह का। पद्मा टाकिज नेपाल नगर से, सुदर्शन शाह, तविश शाह, कुन शाह, पल्लवी शाह, सुरभि शाह, मंगला बेन शाह, राजेंद्र शाह का। और इसी गीत के लिए पत्र आया है खजरी खास महागौरी मंदिर दिल्ली से, पृथ्वी सिंह नेगी, सौरभ सिंह नेगी, गौरव सिंह नेगी और मिट्टी कुहू का। तो लीजिए सुनिए फिल्म कालीचरण से अपनी फरमाइश का ये गीत, अनुराधा पौडवाल कंचन की आवाज़ में, इंद्रजीत सिंह तुलसी की शब्द रचना और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

कार्यक्रम में अगला पत्र है कलेवर बिहार से मोहम्मद आसिफ खां बेगम निकहत प्रवीण सदक आरजू साहिल अरमान शमा परवीन सादिया नसनीम और अलीशा का गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी शोभा भूपेंद्र रघुवंशी बबीता सुरेंद्र रघुवंशी पूजा विक्की रघुवंशी स्वाति प्रयाग चौधरी मालती चौधरी ललिता और रघुवंशी परिवार का कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार से ये पत्र आया है मुकेश बत्ता का नीलम बत्ता नितिन पलक करण जीतू निहारिका और बसंत बत्ता का ये सुनना चाहते हैं फिल्म लोफर से महेंद्र कपूर की आवाज़ में आनंद बख्शी की शब्द रचना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में ये गीत।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी पसंद यही संपन्न हुआ। यही आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 10:30 और 35 सेकंड हो रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में शिप्रा बोस का राग चंद्रकौंस में गायन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं जेरी मेसी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप शिप्रा बोस का राग चंद्रकौंस में गायन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत किए थे जेरी मेसी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनपिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS Foreign Ministers' meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers' meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In this session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the group supports change and reforms, reflects a multipolar world, helps countries reduce the risks by expanding partnerships, and believes in mutual respect and equal rights for all nations. Prime Minister Narendra Modi will arrive in United Arab Emirates capital Abu Dhabi tomorrow on the first leg of his five-nation visit. He will later visit the Netherlands, Sweden, Norway and Italy. Our West Asia correspondent reports India and the UAE are preparing to further expand one of Asia's fastest growing economic partnerships during high-level discussions between Prime Minister Modi and President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The talks are expected to focus on trade, investment, energy security and emerging technologies. India-UAE trade crossed the $100 billion mark in the financial year 2024-25.